ओम शं शनैश्चराय नमः। कलियुग में न्याय के देवता शनि देव भगवान जो सबको कर्म फल देते हैं, इसीलिए तो कहते हैं शनि की बुरी दशा से बचना हो तो हमेशा अच्छे कर्म करो। एक बार रावण भीषण तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को बोले। इस पर रावण ने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने रावण को कहा कि ये तो मेरे वश की बात है ही नहीं, ये तो सिर्फ शनि देव ही कर सकते हैं। शनि देव शत्रु नहीं है, शनि देव मित्र हैं, तुम उन्हीं की पूजा करो।

अमर ने सोचा कि मैं अमर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने आप को अमर न कर सका तो क्या हुआ, मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं अपने होने वाले पुत्र को अवश्य ही अमर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसा सोच विचार कर रावण ने सभी ग्रह और नक्षत्रों पर चढ़ाई करके सबको पराजित करके सबको बंदी बना लिया, सभी ग्रह नक्षत्रों को अपने अधीन कर लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि रावण ने सबको अपने वश में कर लिया था।

महान तपस्वी रावण जो अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर चुका था, उसने अपने पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रह और नक्षत्रों को ज्योतिष के हिसाब से अमरत्व के निश्चित स्थान पर बैठाकर अमर योग बना दिया, ताकि उसका होने वाला पुत्र अमर हो, उसके होने वाले पुत्र को कभी कोई मार न सके।

बनने से सभी देवता चिंतित हो गए और न्याय के देवता शनिदेव से मदद की गुहार करने लगे। तब शनिदेव सभी देवताओं की करण पुकार सुनकर न्याय करने की बात सोचने लगे और जन्म का शुभ मुहूर्त आने के सही वक्त पर उन्होंने अपना एक पांव आगे बढ़ा दिया, जिससे अमर योग समाप्त हो गया। और अमर योग के समाप्त होने पर रावण ने क्रोध में आकर शनि देव के पैर पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे एक पैर सदा के लिए लंगड़ा हो गया।

सच में न्याय के देवता हैं। वो अन्याय को दूर करने के लिए स्वयं समस्या में चले जाते हैं, मगर अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। इसीलिए तो कहते हैं, सुखी रहना है, चिंता से दूर रहना है तो शनि देव की पूजा करो, शनि देव की आराधना करो। जय शनि देव।

0: 31 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070555।
4: निर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
5: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
6: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
7: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
6: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
4: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
8: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने

0: निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉ जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
5: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
6: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा एआई कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says gap between cities and villages in India has narrowed significantly over past 12 years. Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: कहा मेरी कसम?
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय
7: बिंदास मॉर्निंग।
4: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी सुबह की शुरुआत अच्छे से कर चुके होंगे। हेलो जी, आज का मौसम बहुत औसम हो गया है। कल रात को ही अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से भी कि आज की जो तारीख है ना, ये भाई साहब बारिश के साथ होने वाली है आज की सुबह की शुरुआत, आज की तारीख की शुरुआत। और आज बच्चे भी घर पर है, छुट्टी है, मुझे पता है बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। वेरी नाइस, कोई जल्दी नहीं है आज सुबह, सुबह लोड नहीं लेनी है आपने। मुझे पता है सब लोग आराम से लेट लगा रहे होंगे, कुछ लोग जो ऑफिस जाने वाले हैं ऑफकोर्स वो मेरी तरह रेडी हो रहे होंगे, कुछ लोग निकल भी चुके होंगे अपनी मॉर्निंग शिफ्ट में। एनीवेज, वेलकम बैक है आप सभी का, आप सुन रहे हैं राधा 89.6 आरजे आनंद के साथ। इतनी झमझमाती बारिश में भी आपके लिए आ गया हूँ आपके रेडियो पर, बिकॉज आपकी फैमिली का हिस्सा जो हूँ यार। हाय, कैसे हाल चाल है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कारम, सत श्री अकाल, की हाल चाल सब बढ़िया है ना, जिंदगी में अच्छा ही होना चाहिए। फिलहाल दिन है आज शनिवार का, प्रभु का नाम लेकर कीजिए अपने दिन की शुरुआत। जो भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उन प्रॉब्लम को एक बार ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, पूरे मन के साथ पूरे खुद को मतलब भगवान पे समर्पित कर दीजिए, उस वाहेगुरु पे, उस खुदा पे, उस अल्लाह पे, उस सुप्रीम पावर पे जिसको आप बिलीव करते हैं। यकीन मानिए आपका वो सिचुएशन, जो भी वो प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली दूर होगा। और कभी कभी कुछ चीजें ना आपके टाइम पे अगर ना हो तो समझ लीजिएगा उसमें भी ईश्वर ने, खुदा ने कुछ अच्छा सोचा है। आज बहुत ही खूबसूरत तारीख है, आज के दिन की आपको ढेरों मंगल शुभकामनाएं देते हैं। आज 26 सितंबर है, बहुत ही स्पेशल तारीख। आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे और अभी लौट के आऊंगा तो ढेर सारी बात करूंगा। आप क्या कर रहे हैं इस बारिश के मौसम में, आप मुझे बताओ यार। और आज की सुबह कैसे गाने होने चाहिए रेडियो पे हमारे मॉर्निंग शो में, मौसम इतना अच्छा है, या आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे आज कौन से गाने बजने चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे। 9837896896 पे व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सुबह ये जिम्मेदारी आपकी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पे, नंबर मैंने आपको बताया 9837896896 पे, ठीक है जी। फिलहाल एक अच्छा गाना मैं अपनी तरफ से आपके रेडियो पे भेज रहा हूँ, आज की वार्म वेलकम करेंगे आज की वाइब की, यू नो फुल ऑन शुरुआत करेंगे इस गाने के साथ। सच में दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग ट्रैक। आज सैटरडे है, आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप, 10 बजे तक आपके साथ रहूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां ढेर सारी बातें होंगी दिल से दिल तक। डोंट गो एनीवेयर, ट्यून इन रहिए मेरे साथ, लौट कर आता हूं जरा सी देर में। और हाँ, वक्त मिला लो यार, वक्त हो गया 8:22। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मुरादाबाद, कैसे हालचाल, फटाफट से अपने हालचाल मुझ तक पहुंचाओ, मैं पहुंचाता हूँ ये फैंटास्टिक गाना। हाँ, बारिश हो रही है बाहर, जरा छाता लेकर जाना।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वेलकम बैक है जी, वेलकम बैक है, स्वागतम अभिनंदन। आप जहाँ भी जा रहे हैं गुड लक, ऑल द वे बेस्ट। बहुत सारे लोग सुबह सुबह अपनी बाइक को लेके निकल पड़ते हैं रैपिडो चलाने के लिए, है ना। क्योंकि यार देखिए, कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी चीज़ ही कर रहे हैं कि भाई चलो लोगों को इधर से उधर फॉरवर्ड करना बहुत अच्छी बात है। एनीवेज अभी आगे बढ़ते हैं। आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, 26 सितंबर की तारीख है। मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं आज के दिन की। किसी का बर्थडे है तो ढेर सारी बधाइयां, किसी की शादी की सालगिरह है तो मुबारक है। और आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे संदेश मेरे पास आज की सुबह पहुंचे हैं आप लोगों के, उसके लिए दिल से थैंक यू करना चाहता हूं आपका। देखिए हमारे पास शीतल जी का मैसेज आया है, सुबह सुबह लिखती हैं, आनंद जी सुप्रभात, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और आज तो बच्चे भी घर पर ही हैं, कुछ अच्छा बनाने का प्लान कर रही हूं। वेरी गुड मॉर्निंग, आपके गाने सुन के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच श्रुति जी एंड शीतल जी, आप हमारे साथ जुड़ी। एक मैसेज और पहुंचा है हमारे पास, हेलो आनंद भाई, गुड मॉर्निंग, बारिश में भी आप चले आए हो यार, क्या बात है, हैंड्स ऑफ आपको। अरे सर थैंक यू सो मच, बिकॉज दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आपके हम आपके लिए नहीं आएंगे तो किसके लिए आएंगे यार, हमें आपसे मोहब्बत जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और संदेश पहुंचा है, सर कल करे सो आज, आज करे सो अब। जिंदगी में किसी भी काम को हमें कल पर नहीं टालना चाहिए, जो भी कुछ करना है हमें आज ही करना है। जीवन बहुत खूबसूरत है और इस जीवन को ऐसे ही एंजॉय करना है। दैट्स वेरी लवली, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपको सुबह का प्यार भरा सलाम, जुड़िए ना मेरे साथ 9837896896। आपको बताते चले, मुरादाबाद में खराब मौसम और भारी बारिश की तकनीकी कारण को देखते हुए आज जो है स्कूल की छुट्टियां हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है 12th तक के स्कूल बंद रहेंगे। इनफैक्ट अपने मुरादाबाद में नहीं, आसपास के तमाम सारे जिलों में जो है आज छुट्टियां बच्चों की अनाउंस कर दी गई हैं। इसी मौसम की खराबी मौसम के कारण ये जो घर पर अचानक से बारिश का अलर्ट आया, इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है तमाम सारे जिलों में बारिश को देखते हुए जो है स्कूल की आज छुट्टियां घोषित कर दी हैं। इनफैक्ट ये भी आपको बता दें कि 36 घंटों तक जो है भारी बारिश बताई जा रही, थोड़ी रुक रुक के भी हो सकती है, और कुछ जिलों में तो बाढ़ का भी अलर्ट जारी किया गया है। बाकी हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर आप पानी वाले इलाकों के आसपास रहते हैं तो प्लीज़ ज़रा अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर के बुजुर्गों का स्पेशल ख्याल रखें। और बाकी हम आपसे यही कहना चाहते हैं, सुबह है, अच्छी मॉर्निंग है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह। कोई अच्छा गाना सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं आज की मॉर्निंग कैसे गाने आप सुनने का आपका मूड है। सोच रहा हूँ मौसम इतना अच्छा है तो कुछ गाने आपकी फेवरेट हो जाएं अच्छे से, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर 9837896896 पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह। जो भी आप सुनना चाहते हैं, जो भी अभी ये चाचा आपको गुड मॉर्निंग बोलने आ रहे हैं स्टेशन पे, इसीलिए वो आपको सुनाई दे रहा था, लेकिन चलिए कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में गुड मॉर्निंग बोलेंगे। फिलहाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी प्यारी प्यारी संदेश, प्यारे प्यारे मैसेज पहुंचा सकते हैं 9837896896। सुबह सुबह अगर आप गर्म पानी पीकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ये गर्म पानी पीना आपकी हेल्थ के लिए मॉर्निंग में क्यों जरूरी है, इसके विषय में अभी बात करेंगे जब लौट कर आएंगे। तो आप ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, ट्यून इन रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाता रहिए। भैया गुनगुनाना बहुत जरूरी है, मन मूवी का ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, आमिर खान एंड मनीषा कोयराला, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल गाना, उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी की आवाजों में मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। लौट कर आके बताऊंगा ना, आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही आनंद को सुनते जाओ।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
5: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग,
3: बिंदास मॉर्निंग, बिंदास।
8: कीजिए, और इसके अलावा आपको बता दीजिए।

क्या बात है यार, देखो बदलना ना बदलना वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में है सिर्फ आपको मोटिवेट करना, मेरे हाथ में है सिर्फ आपको अच्छी वाइब और अच्छी एनर्जी देना। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? वंस अगेन वेलकम बैक है, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। मेरा नाम आनंद है। श्रोताओं मुझे फटाफट व्हाट्सएप करके बताओ कौन कौन से एरिया में आज की सुबह लाइट नहीं है और कब से लाइट नहीं आ रही है, मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके प्लीज़ मुझे पहुँचाओ। अगर आप लाइन पार में हैं, आप बुद्धि बिहार में हैं, आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं मुरादाबाद में, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके पहुँचाओ आपके एरिया में लाइट है या नहीं, क्या आपके यहाँ पर लाइट आई है या नहीं, उसके बाद इसका क्या सोल्यूशन होने वाला है वो भी बताऊंगा। आप मुझे पहले अपनी वॉइस नोट में पहुँचाओ। हाय आनंद गुड मॉर्निंग, मैं सूर्यनगर से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पर लाइट कल रात से इतने बजे से नहीं आ रही है या अभी आ चुकी है या नहीं आई है, जो भी करंट अपडेट है प्लीज डू लेट मी नो। मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज करो 9837896896 पे, अपनी वॉइस नोट भेज सकते हो तो वेरी गुड, नहीं तो टाइप करके भेज दो आपके यहाँ लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। कितने लोगों को जो है कल रात से लाइट ना आने का सामना करना पड़ रहा है और कितने लोगों की जिनके घर पे लाइट आ गई है, जरा मुझे मैसेज करके बताओ कहाँ कहाँ पर आप मुझे सुन रहे हो, ये आप मुझे बता सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ हमारी एरिया की लाइट गायब है या सच में पूरे मुरादाबाद की लाइट गायब है, ये आप मुझे मैसेज करके बताना आज की सुबह। फटाफट से व्हाट्सएप करो 9837896896, इसके पीछे भी कुछ रीजन हो सकता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फटाक से अपनी एक वॉइस नोट पहुँचा सकते हो। हाय नमस्ते आनंद या फिर गुड मॉर्निंग आनंद, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं मुंडा पांडे से या मैं जहाँ से भी आप जहाँ के आप रहने वाले हैं, मंझोली मंझोला या फिर आप पुतली घर रोड से हैं या आप लाइन पार से ही हैं या आप सूर्यनगर से हैं या आप जयंतीपुर से हैं, जहाँ भी आप हैं बताओ मुझे लाइट आ रही है या नहीं आपके। व्हाट्सएप करो, फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज की सुबह। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:50, बात करते हैं आज 26 की तारीख क्यों स्पेशल है, ये तारीख क्यों खास है। ठीक है जी, अभी लौट कर आता हूँ आपको, मतलब मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ फिलहाल, ये छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक है, मतलब आई मीन ये छोटा सा अंतराल।

चलिए दोस्तों, हम वापस आ गए हैं फाइनली, और अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज की तारीख क्यों खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के दिन का इतिहास। हर दिन की तारीख बहुत खास होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो श्रोताओं, आपको बताते चलें, आज ही के दिन न्यूयॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना था सन 1872 में। एग्जैक्टली न्यूयॉर्क सिटी में आज ही के दिन यानी कि 26 सितंबर को पहला मंदिर बना था न्यूयॉर्क के अंदर। इसके अलावा आपको बताते चले, संयुक्त राष्ट्र सैनिकों ने उत्तर कोरिया के सैनिकों से सोल को अपना कब्जे में, मतलब उनकी सोल को अपने कब्जे में लिया था सन 1950 में। और आज के दिन इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता जो है वो ग्रहण की थी सन 1950 में आज ही के दिन। इसके अलावा आपको बताते चलें, आज ही के दिन एक और खास चीज़ हुई, अमेरिका में राष्ट्रपति

को दो उम्मीदवारों जॉन एफ कैडी और रिचर्ड नेक्सस के बीच बहस का जो पहली बार टीवी टेलीविजन लाइव प्रसारण था वो हुआ था आज के दिन। इसके अलावा आपको बताते चलें, आज के दिन एक और बहुत ही खास चीज हुई थी श्रोताओं, जिसके बारे में बताना तो डेफिनेटली बनता है। और हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, मैं आपको डेफिनेटली शेयर करता हूँ हर दिन का इतिहास, क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ स्पेशल रहा। तो आपको बता दें, पूजा श्री विकेटिस ने जो है रश्मि चक्रवर्ती को हराकर ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जो है पंकज आडवाणी 76वें नेशनल स्कूनर ऑफ चैंपियनशिप में जो है बिल्डियस चैंपियन बनी थी वो आज के दिन सन 1909 में। एंड इसके अलावा आपको बताते चले, दिल्ली मेट्रो का दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना जिसने संयुक्त राष्ट्र से ग्रीन हाउस जो है गैसों में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट उसको दिया, मतलब। एंड ये सन 2011 में आज के दिन हुआ। एंड इसके अलावा आपको बताते चले, आज के दिन ईश्वर चंद विद्यासागर जी का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध समाज सुधारक शिक्षा शास्त्री रहे और सन 1820 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन। और इसके अलावा आपको बताते चले, आज के दिन TSG का जन्म हुआ, नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। एंड अमेरिकन इंग्लिश लेखक इनको कहा जाता है, इनका जन्म आज के दिन हुआ था सन 1888 को। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 1932 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन। तो ये आज के दिन से जुड़ा कुछ खास इतिहास मैं आपके साथ शेयर कर रहा था इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। बाकी दोस्तों आप भी अपने दिल के हालचाल शेयर कर सकते हैं 9837896896 पे। आपके एरिया में लाइट है या नहीं प्लीज बताओ यार, व्हाट्सएप करो, कसम है आज की सुबह की तुम्हें मैसेज करना है आपने मेरे को, मुझे व्हाट्सएप करके बताओ कौन कौन से मुरादाबाद की लोकेशन पे लाइट है, कौन कौन से एरिया में लाइट नहीं है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप करो, उसके बाद कुछ निकालते हैं सॉल्यूशन, है ना, बताते हैं भाई। आप मुझे पहले मैसेज तो करो यार। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और हाँ, आप मेरे साथ में अपनी दिल की बातें भी शेयर कर सकते हो। एंड अभी ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप करने के लिए। आप लोगों ने मैसेज भी कर दिए यार, थैंक यू सो मच। बस ये मौसम का जो हालचाल है वो तो मैं आपको बताऊंगा, ये भी आज का वेदर क्या कहने वाला है, लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा गाना चला देता हूं आपके लिए आज की सुबह। एंड इस गाने के बाद लौट कर आके जो आपने मैसेज किए हैं वो सब के मैं वापस पर सुनवाने वाला हूं। आप लोगों ने बहुत ही प्यारे मैसेज किए हैं। अब बारिश का मौसम हो रहा है तो थोड़े गाने बारिश वाले भी होने चाहिए। शानू दोहाल का याग्निक जी की आवाज, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन, स्टारकास्ट बहुत प्यारी, गाना बहुत खूबसूरत है। आप सुन रहे हैं आज की सुबह आनंद के साथ, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: और वही कहाँ गए थे घूमने?
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: क्या मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय।
4: बिंदास मॉर्निंग।
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
7: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
8: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: सुबह के 9 बज चुके हैं भाई साहब, 9:02 हो गए हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम अभी लाइट की बात कर रहे थे, तो देखिए लाइट आ चुकी है अपने घर के। जरा बल्ब ऑन करके देखिए, क्या पता आपकी लाइट आ गई है। मेरे यहाँ तो लाइट आ चुकी है, अगर आपके यहाँ आई है या नहीं। मैंने कहा था ना, मुझे वॉइस नोट पहुँचाओ आपके एरिया में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। और भाई साहब मैंने इधर बोला उधर लाइट आ चुकी है, मेरे AC चालू हो गए हैं। हाय, वेलकम बैक, सैटरडे की सुबह, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 9:03 हो गए, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी वापस हमें मिल गई है भाई। मतलब जब लाइट नहीं होती तो सारे मतलब सब कुछ सूख जाता है यार। मतलब मोबाइल डाउन है, मतलब घर की सारी चीज़ें जो हैं, जब ऐसा होता है ना कि डाउन हो जाती है, हम इतना यूज़ कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि सुबह लाइट होगी भी या नहीं। उसके बाद फिर हम बैठ के सोचते रहते हैं यार क्या करें क्या करें। फाइनली अगर आप रामपुर में हैं या आप आसपास के एरिया में हमें सुन रहे हैं, अमरोही में आप हमें सुन रहे हैं, चंदौसी में आप हमें सुन रहे हैं, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ आ रही है संभल में आप सुन रहे हैं, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं आपके एरिया का मौसम कैसा है। जरा बताओ मुझे फटाफट से आसपास के शहरों का मौसम भी तो जान लें मुरादाबाद। एंड फाइनली ढेर सारे व्हाट्सएप मेरे पास पहुंच चुके हैं एंड आई एम सो हैप्पी। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई देखो आनंद, मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है, मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है और आज यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है। संभल से मेरे पास मैसेज पहुंचा है ये बबलू जी का, इन्होंने पहुंचाया आनंद जी बहुत मौसम खराब है आज यहाँ पर भी एंड लाइट तो हमारे यहाँ पर भी नहीं आ रही है। ओके, एक मैसेज मेरे पास आया है जयंतीपुर से, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है। बढ़िया जी बढ़िया, इन्होंने अपना नाम सलीम साहब बताया, ये लिखते हैं सर इधर भी लाइट की प्रॉब्लम है। ओके जी, चलिए आप देखिए चेक करके, शायद आपके यहाँ लाइट आ गई हो। एंड बाकी और किस किस के मेरे पास वॉइस नोट पहुंचे हैं, हाय गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू डूइंग, आई एम एब्सोल्युटली गुड यार, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है, वेरी गुड मॉर्निंग, सुनते हैं।
1: गुड मॉर्निंग आर्य आनंद, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रात 1 बजे से लाइट अभी तक नहीं आई है। मेरा नाम सोनू कुमार, सेक्टर 10 बुद्धि विहार।
0: ओके सोनू जी, आपने बताया आपके यहाँ पर लाइट रात 1 बजे से गायब है, अभी तक नहीं आई, तो शायद अब आ गई हो, एक बार चेक करके देखो यार। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है, नमस्ते जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये मैसेज हमारे पास रामपुर से पहुंचा है, हेलो सर, आप रामपुर को भी प्लीज याद रखिए, बहुत सारे श्रोता आपको रामपुर में भी सुनते हैं। एब्सोल्युटली जी, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कौन जुड़ी है हमारे साथ। रामपुर से मैं रिहाना हूँ एंड आपसे कनेक्ट हो गई हूँ, क्या बात है रिहाना जी, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और बहुत अच्छा लगा। गुड वाली मॉर्निंग, हाउ यू आनंद, कैसे हो भाई, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये मैसेज हमारे पास आया, हेलो आनंद भाई, कैसे हालचाल हैं आपके, गुड मॉर्निंग, आई एम अक्षत, हाय अक्षत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई। एंड इन्होंने जो है सुबह सुबह मतलब मेरे को एक अपडेट दी है, वो मैं अपडेट डेफिनेटली बताऊंगा। हमारे साथ और भी बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं, मैं सभी लौट कर आता हूँ, अभी तो शुरुआत है यार, अभी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। इस घंटे की शुरुआत एक अच्छे से गाने से करते हैं, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ट्यून ही नहीं है आनंद क्यों, ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। मैं अभी लौट कर आता हूँ, उसके बाद ढेर सारी बातें करूंगा आपसे एंड एक छोटा सा सवाल भी है मेरे पास। स्टेशन ऑफ द नेशन पे डोंट गो एनीवेयर, ट्यून इन रहिए आनंद के साथ। 9:05 हो गए, ये सैटरडे की सुबह है, गुड मॉर्निंग।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.

हाँ जी, क्या हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। वक्त हुआ है 9:09। अभी वापस आ रहा हूँ इस गाने के उस पार। आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वे बैक।

0: पाचा। ओह कितना प्यारा गाना था ये।
1: अरे रे रे रे, इस गाने को सुन के तो मुझे भी मजा आ गया। कैसे हालचाल? गुड मॉर्निंग है जी। अरे पाजी गुड मॉर्निंग। वो कभी कभी अंदर के भूत बाहर आ जाते हैं, वो बहुत सारे भूत छुपा के रखता हूँ ना मैं। हाय वेलकम बैक, 9:13 हो गए, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद। कुछ चलिए काम की बात करते हैं भाई साहब। अगर आप काम की बात सुनोगे तो आप ही का फायदा है यार। आपको बता दें, अब फोन उठाने से पहले ही पता चलेगा सामने वाले का नाम और वो क्या करता है काम। वाव, इट इज वेरी वेरी अमेजिंग यार। ये तो बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी ना। सपोज दैट अगर आपको कोई कॉल आ रही है और वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो आपको वो भी पता चल जाएगा ना कि सामने वाले का नाम और काम। ये तो अच्छी चीज है यार। ताली बजाओ भाई, ताली। वेरी नाइस यार, ये एक बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है फिर तो यार, जिसको लेके हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे। अब अच्छा पूरी बात जरा ध्यान से सुनो जी। हाँ चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आप जैसे ही फोन उठाएंगे उससे पहले ही आपको पता चलेगा मतलब सामने वाले का काम और उसका नाम। एग्जैक्टली, ट्रू कॉलर पर एक नया फीचर आ गया है, मैं आपको बता दूं। जी हाँ, अभी ध्यान से सुनना है आपने। ट्रू कॉलर और लिंक्डइन जो है, ये ट्रू कॉलर मतलब एक नए फीचर के साथ जो है आने वाला है और यूजर्स को जो है अब काफ़ी राहत मिलने वाली है। जो कॉलर आईडी के साथ साथ है ना, उसका ये भी पता चल जाएगा कि भैया वो करते क्या हैं। हाँ जी, ये ट्रू कॉलर ने जो है लिंक्डइन के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है, जिससे अब यूजर्स को जो कॉलर आईडी के साथ साथ कॉलर का लिंक्डइन से जो वेरीफाइड अकाउंट है, उसका जो भी जॉब टाइटल है, वो भी आप देख पाएंगे। तो ये जो फीचर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से काम करने वाला है। एंड इसमें जो है, जो हमारे कॉलर्स हैं, जो कभी कभी होता है ना कि हम लोग रैंडमली कॉल्स उठाते हैं और हमें पता नहीं होता सामने वाला स्कैम कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्रॉड के लिए कॉल। तो बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं जो हमारे काम के नहीं होते बट हमें उठाने पड़ते हैं यार। तो ये एक अच्छी चीज़ आ जाएगी, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। यस, कॉल करने वाले की जो है लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकेंगे। इनफैक्ट जो आपको कॉल कर रहा होगा उसका काम लिखा हुआ दिखाई देगा एंड उसका नाम तो ऑफकोर्स आता है ये ट्रू कॉलर पे। तो आपके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा एंड ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इससे आपके लिए पहचानना बहुत ईजी हो जाएगा यार। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड फीचर के पूरी तरह ऑप्शनल जो है, मतलब ये एंड्रॉयड पे अवेलेबल बताया जा रहा है कि उपलब्ध है। हाँ जी, यूजर्स के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल से कनेक्ट करना और अपनी कंपनी में जॉब टाइटल दिखाना, मतलब जो है उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, हो सकता है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है जब आप सेटिंग्स करेंगे तो। एंड बाकी अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा तो वो जब आपको कॉल करेगा तो डिटेल्स आपको दिख जाएंगे उसके, थोड़े थोड़े नाम के साथ साथ उसका प्रोफाइल भी दिखेगा। सो मुझे लगता है ठीक है, इट इज़ वेरी अमेजिंग। एंड आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यूपी के कई शहरों में 36 घंटों से लगातार भारी बारिश के जो है बताए जा रहे हैं, अलर्ट लगाया जा रहा है, मान लगाया जा रहा है कि ऐसा रुक रुक कर जो है बारिश होगी। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज बिगड़ गए हैं भाई साहब। ऐसे में जो है भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि भैया पिछले 30 घंटों से 36 घंटों के एरिया में काफ़ी सारे जो है ज़िलों में लगातार बारिश हो रही है और करीब 50 शहरों में रुक रुक कर तेज़ बारिश हो रही है। इसके अलावा बारिश को देखते हुए कई ज़िलों में आज छुट्टी भी घोषित की गई है आपको, जैसे मैंने बताया। एंड इसके अलावा लखनऊ के अलावा गोंडा, कानपुर, गोरखपुर, शाहजहांपुर, अमेठी समेत कई ज़िलों में जो है आज स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 32 ज़िलों में अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। तो भैया देखिए, जहां बाढ़ की स्थिति है वहां के लिए तुम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। और बाकी मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी जरा भैया सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आजकल मौसम का भी पता नहीं चलता है बॉस। अगर आप सुबह उठते ही गर्म पानी से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, तो ये कौन कौन से फायदे आपको देने वाले ये मैं बताऊंगा अभी। 9:16 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में, आप सुन रहे हैं आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, बातें होती है वही वाली जो आपका दिल चाहता है। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑफकोर्स 9837896896 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आज की मॉर्निंग। एंड आपको अगर लगता है कि यार आनंद ये वाली चीज जो है ना रेडियो पे आनी चाहिए, ये वाली चीज आप रेडियो पे बताओ, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। आप बस मुझे मैसेज कर दो यार। यार आप ही का प्यार है जो मुझे खींचता है, सोचो बारिश में भी चलाया मैं।

0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वक्त मिलाओ, 9:17 हो गए, मैं अभी लौट के आता हूँ थोड़ी देर में, आपके मैसेज जो आए हैं वो डेफिनेटली शामिल करूंगा, और ब्रेक के बाद एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ।
1: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।
2: एग्जैक्टली आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आज की सुबह की किक स्टार्ट अच्छे गानों से हो गई है, लेकिन एक और गाना मैं आपके लिए लगा रहा हूं आज की मॉर्निंग।

0: पे गंगा।
1: चलो जी, जरा सी देर में ये भी आप तक पहुंचाएंगे, बहुत ट्रेंड में है। हनुमान अंश के बारे में एक कमाल की बात बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल सुनो यार, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा लो प्लीज। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने वॉल्यूम बढ़ा ली। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं, मतलब कितने नंबर होते हैं, क्या आपको पता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 14, इन तीनों में से कोई करेक्ट आंसर है? आप मुझे बताओ आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, हिंदी में पूछ रहा हूँ भाई। अब देखो गिनना मत, मतलब आधार कार्ड में चेक करने लग जाइयो, मतलब दिमाग लगा के बताओ, इतनी बार आप यूज करते हो, कम से कम कुछ तो पता होना चाहिए ना। पता क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है बट उतना ध्यान नहीं देते हैं हम। आप बताओ जरा मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज करो मुझे, अपना वॉइस नोट भी पहुंचा सकते हो। जो आधार कार्ड होता है वो कितने डिजिट का होता है, उसमें कितने नंबर होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, बताओ जरा। एनएसई सुनते रहो, फिलहाल एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि यह है आप ही के शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। प्या, प्या, प्या, प्या, प्या, प्या, प्या, प्या,

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: यू आर लिसनिंग टू द बिगेस्ट हिट्स, the biggest hits non-stop.

जरा सी भी बारिश होती है ना मुरादाबाद में, इतना हैवी वाटर लॉगिंग हो जाता है, कुछ एरिया में तो इतना पानी भर जाता है कि भैया गाड़ी गड्ढे गुड्ढों में चली जाती है, कहीं मुझे पता ही नहीं चलता है यार। वेलकम बैक, हाय गुड मॉर्निंग। हम स्मार्ट सिटी की तो बात करते ही हैं। आई नो मुरादाबाद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ है, बहुत अच्छा मुरादाबाद शहर अपना ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कुछ इलाके हैं ऐसे मुरादाबाद के, कुछ कुछ रूट्स हैं ऐसे जहां पर अभी भी बहुत हैवी वाटर लॉगिंग हो जाती है एंड उसके बाद बड़ी दिक्कतें होती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ अपनी ऑफिस के बाहर रामलीला ग्राउंड के आसपास में इतना ज्यादा हैवी वाटर लॉगिंग हो जाता है कि बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है कई बार। तो मतलब ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम होने की जरूरत है, अगर थोड़े से जो उधर भी ध्यान दे दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि काफी हद तक लोगों को राहत मिल जाएगी। वैसे आपके आसपास में तो कोई वाटर लॉगिंग नहीं होती है ना, क्योंकि अंदर जो है ना शहरों में ऐसे बहुत सारे रोड्स हैं, जैसे आप पुतलीघर रोड की तरफ चले जाओ सारा रोड इतना खराब है बॉस, मतलब ऑटो में अगर आप बैठ के जाओगे तो इतने झटके लगेंगे ना भाई साहब, शाम तक लगेगा कि आप ऑटो में घूम रहे हो। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं, 9:29 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। पैकेट वाले खाने पर अब दिखेगा लाल कलर का वार्निंग सिंबल। एग्जैक्टली, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है एक नया ये फंडा जो लोग पैकेट फूड्स ज़्यादा खरीदते हैं। भाई देखिए इस समय जो है आपको पता है कि लोगों के पास ज़्यादा नहीं है तो लोग फटाफट जाते हैं और जाने के बाद जो है जो उनको समझ में आता है वो लेकर आ जाते हैं। तो आपको बता दें चीनी नमक और फैटी जो ज़्यादा मात्रा में है जो इस तरह के पैकेट्स हैं, तो भैया उन पर जो है अब आपको साफ चेतावनी दिखाई देगी। यस, FSSAI ने जो है अभी एक नया एक सिंबल लॉन्च किया है कि भैया रेड कलर की एक वार्निंग जो है आपको दिखाई देगी, वो आपके लिए प्रोडक्ट कितना ज्यादा सही है, कितना ज्यादा आपके लिए आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो सारी चीजें जो है आपको उसमें दिखाई देंगी। नए प्रस्ताव के तहत जो है अगर किसी प्रोडक्ट के फूड में तय गए सीमा से, मतलब उसमें तय किए गए सीमा समय से ज्यादा उसमें अगर फैट है या फिर सॉल्ट है, मतलब ये सब चीजें जो है अब उसमें आपको दिखाई देंगी कि भैया इन इन चीजों पर जो है ज्यादा नमक है या इन इन चीजों में ज्यादा शुगर है जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो वो सब चीजें आप देख पाएंगे। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही बढ़िया होती हैं। और भाई साहब कल तो हम हॉलीडे में गए, बड़ा मजा आया। कल रितेश गुप्ता साहब के बेटे की शादी का रिसेप्शन था, बहुत ही ग्रैंड जो है सेलिब्रेशन था कल हॉलीडे रेजिडेंसी में, बहुत मजा आया वहां पर जाके एंड बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमने वार्तालाप की रितेश साहब से, बहुत अच्छा लगा। एंड शहर के विधायक कमाल के हैं यार, बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके एंड जब भी मैं उनसे मिलता हूँ मतलब बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी है यार। आई डोंट नो आप कितनी बार मिले बट मैं 2-3 बार मिला हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर से मिलके एंड मतलब बहुत ही अच्छा कल फंक्शन था, बहुत मजा आया, काफी लोगों से मिलने को मिला, काफी सारी चीजें जो है मतलब कल वहां पर हुई तो बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप कर रहे हैं। आज की सुबह मैंने आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं, कितने नंबर का होता है आधार कार्ड। एंड बहुत सारे लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, भाई जल्दी से निकालो, कुछ लोगों की जेब में होगा, कुछ लोगों के फोन में फोटो होगा, वो लोग देख के बता रहे हैं मुझे। हाँ बहुत चालू है भाई, पता है हमको। चलो आगे बढ़ते हैं, 9:31 हो गए, देखिए टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। आप लोगों ने जो व्हाट्सएप किए हैं वो मैं डेफिनेटली अभी शामिल करूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे एंड कल की वाइव आप चेक कर सकते हो हमारे इंस्टा हैंडल पे जाके, FM मुरादाबाद 89.6 ऑफिशियल हैंडल है मेरा, अगर आप ढूंढना चाह रहे हो तो मेरा इंस्टा हैंडल आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद के नाम से, सो यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट, बहुत सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी एंड ऑफकोर्स बहुत सारी कड़क अपडेट हम डालते रहते हैं बॉस, अगर आप वहां जाओगे तो आपको दिख ही जाएगा। फिलहाल के लिए जरा सी देर में आपको एक गाना सुनाई देगा आप ही के रेडियो पर, दोबारा क्या दो यार

0: सलमान खान पाजी ने बढ़िया कर दिया वरुण जी, आपसे तो हो नहीं पाया लेकिन कोई बात नहीं। खैर अच्छी बात यह है कि गाने बढ़िया चल गए इस मूवी के। मीत ब्रदर्स से नेहा कक्कड़ की आवाज जरा सी देर में आपकी रेडियो पर पहुंचेगा गाना। आ तो जाए शो में, आपको मजा आ जाएगा। चलो जी मेरी तारीफ करो, मैं लौट कर आता हूँ।
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं

0: ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल। तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: काफी ट्रेंड में है ये गाना अभी भी एंड बहुत ही अच्छी वाइब दी गई है इस गाने को, मतलब इतना बढ़िया। मूवी भी बहुत ही कमाल की थी हनुमान अंश, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखनी चाहिए। इसके बारे में एक कमाल की बात आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही कमाल की फिल्म है यार।
1: पार्वती पार्वती
0: क्या गाया इस सॉन्ग को, मतलब फील के साथ एंजॉय करो, वॉल्यूम बढ़ा।

बिना नेट के चलेगा डिजिटल रुपया, कुछ तो नया होने वाला है आपके लिए। भैया देखिए, जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है आज भी, और कभी कभी इंटरनेट होते हुए भी जो है हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता है और आपको इमरजेंसी में किसी को रुपये भेजने हैं या मंगाने हैं, तो बिना इंटरनेट के भी डिजिटल रुपया काम करेगा। ये तो अच्छा है, ये एक बढ़िया चीज़ है। और जो अच्छी चीज़ें होती हैं मैं उनको फटाक से कैप्चर करके फीचर करके आप तक पहुंचा देता हूं। ये मुझे सही लगा, तो मुझे लगा चलो आप तक ये अपडेट पहुंचाते हैं। और थोड़ी सी बात जरा कल के बारे में कर लेते हैं। पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ब्यौरा दे देता हूँ। देखिए क्या है ना कि इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने पर डिजिटल भुगतान में आने वाली जो भी दिक्कतें होती हैं वो जल्दी कम हो सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए से ऑफलाइन भुगतान की जो संभावनाओं पर है उस पर वो काम कर रहे हैं, और इसके लिए ब्लूटूथ एंड आपको बता दें NFC एक जो है एक नया फीचर लेकर आने वाली है, जिसके थ्रू आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपके पास कनेक्टिविटी नहीं भी है तब भी आप जो है बिना इंटरनेट के ये इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि डिजिटल। तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे भाई, बस आप जो है ऐसी नजरें रखो क्योंकि हर एक खड़क अपडेट आपको मिलती है अभी किसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। चलो फिलहाल मैं आपको अभी एक काम की बात और बता दूं। कल जो है गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ है अपने मुरादाबाद में, बहुत जोरों शोरों से विसर्जन जो है रामगंगा बिहार की तरफ काफी रश देखने को मिला, और कल जो है फाइनली बप्पा को हमने विदाई दे दी है। एंड अगले बरस तू जल्दिया के नारे जो है खूब गूंज रहे थे कल मुरादाबाद शहर में। आप कांट रोड की तरफ अगर निकल रहे थे, दिल्ली रोड पे बहुत जाम था, बड़े बड़े डीजे थे, आपस में बैटल चल रही थी मतलब, और इतना जाम इतना रश था भाई, और कल रात को भी बहुत जाम था। आजकल खैर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मुरादाबाद के अंदर बढ़ते जाम की समस्या काफ़ी हो रही है और लोग उसका काफ़ी सामना भी कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अब आप सोचिए यार, इसका जो मतलब रीज़न है वो क्या हो सकता है, मैं और आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकिन निकल जाते हैं यार। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिलहाल एक और खास बात आपको बता दूं। देखिए रामलीला ग्राउंड में जो है मेले की तैयारी होने वाली है, अब जो है अक्टूबर आने वाला है, अब ऐसे में जो है रामलीला दशहरा का मेला उसकी तैयारियां होंगी, तो उसको लेकर के जो है कुछ अपडेट आई है, मैं अभी बताता हूं आपको थोड़ी देर में। लेकिन आपके मैसेज की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा, बट एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद जल्दी से आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो अभी भी आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, 10 ऑप्शन ए, 12 ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी 14, इन तीनों में से कोई एक है राइट आंसर। अगर आपको पता है तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप 9837896896 पर, मुझे बता सकते हो मैसेज करके। फिलहाल के लिए अभी एक अच्छा गाना, इसी को सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मौसम इतना अच्छा है तो ऑफकोर्स गाने भी अच्छे होने चाहिए यार। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, बिकॉज आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो सुन रहे हैं यार आप आनंद के साथ। आई विल बी राइट बैक। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से गाना निकाल दिया मैंने, टाइगर श्रॉफ एंड अनन्या पांडे पर पिक्चराइजेशन गाना, बहुत ही सुंदर ट्रैक। विशाल ददलानी एंड पायल देव की आवाज, बहुत ही खूबसूरत गाना है। वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय करो और ऐसे ही सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
5: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.

0: क्या बात है, आपकी भी मस्त मस्त नैन जो है भाई साहब हमें बहुत कुछ बता देते हैं और बहुत कुछ जो है जता देते हैं। थैंक यू सो मच मुरादाबादीज फॉर पार्टिसिपेटिंग, इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया। सुबह सुबह आपकी मॉर्निंग को अच्छा बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, अच्छे गानों के साथ अच्छी बातें आपके लिए रेडियो पर लेकर आते हैं ताकि आपकी मॉर्निंग थोड़ी सी ब्यूटीफुल लाउड हो सके। एंड इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आए ना आपके, मतलब अनबिलीवेबल यार, सुबह सुबह इतना प्यार आप लोग दिखाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ताली बजाओ यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है यार इतने अच्छे मैसेज करना और सुबह सुबह इतना टाइम निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए। थैंक यू सो मच, आप अपनी अटेंडेंस लगाते हो मेरी क्लास में आके, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड बहुत ही सिंपल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आज आपसे, बिकॉज आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा यू नो ये एटीएम कार्ड, एटीएम पेटीएम, ये सब होते हैं ना हमारे पास, इनमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अक्सर हम उनको ध्यान ही देते भाई, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज आपका ध्यान दिलाते हैं। बड़े सारे लोगों ने गलत जवाब भी दे दिए भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज आगे बढ़ेंगे और अभी पता लगेगा कौन कितनी शुद्धत के साथ अपनी चीज़ों को देखता है और उसका ध्यान रखता है। चलो भाई घड़ी मिलाओ, सबसे पहले 9:54 हो गए, आप सुन रहे हैं आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और भैया बहुत सारी जगहों पर जो है मौसम विभाग ने 26 और 27 सितंबर को जो है उत्तर प्रदेश के आसपास के कई राज्यों में भारी बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना बताई है और तेज रफ्तार से हवाएं चलने की और साथ ही साथ बारिश की भी जो है अलर्ट जारी की है। तो भैया ऐसे में आप प्लीज सतर्क रहें, सावधान रहें, हमारी तो भैया यही आपसे रिक्वेस्ट है। और बाकी आपके एरिया में कहीं पानी वानी तो नहीं भरा है ना, ये आप मुझे बता सकते हो भैया, क्योंकि अपने मुरादाबाद में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर मतलब वाटर लॉगिंग हो जाती है कई बारी, तो आज मैं उस पर भी आपसे डिस्कस कर रहा था। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस किए हैं, थैंक यू सो मच। आज फोन ज़्यादा मत चलाना, अगर बीच में लाइट चली गई तो फिर देखोगे चार्ज कैसे करूँ। इन दिनों यार आजकल ना बड़ा रेंट वाला मामला चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, थोड़े दिन पहले सॉरी, कि भैया आजकल देखिए माहौल आने वाला है गरबा डांडिया नाइट का, तो ऐसे में रेंटल गरबा पार्टनर आप लेके जा सकते हो। कुछ उन्होंने अपने पैकेजेस सेट किए हुए हैं, प्रीमियम, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके से उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है। एंड अभी एक और बड़ी यू नो जेंजी का एक नया ट्रेंड आ गया है कि अगर आप मूवी देखने जाना चाह रहे हो तो आप मूवी के लिए एक पार्टनर जो है रेंट पे हायर कर सकते हो और ये आपके साथ 2,000 रुपये प्रति घंटा पे जाएंगे। मतलब व्हाट इज दिस यार, चल क्या रहा है देश दुनिया में, आप सोच रहे हो मतलब आजकल की जिंदगी कहां जा रही है यार। मतलब ये बढ़िया तरीका है यार पैसे कमाने का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आपको बता दूं एक और खास चीज़, अपने यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो में बाराबंकी की जो मिठाई है चंद्रकला, उसके जलवे काफ़ी चर्चा में है आजकल। मैंने आपको बताया था ना अपने मुरादाबाद की दाल को भी फीचर किया गया है यहाँ पे, एंड काफ़ी सारी जो है मतलब खूबसूरत बात ये, काफ़ी सारी वेराइटीज़ को वहाँ पर शामिल किया गया, जिसमें से अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो है अपने उत्तर प्रदेश की इस इंटरनेशनल ट्रेंड शो में जो बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, लोगों के दिलों में जगह बना रही है, वो है बाराबंकी की चंद्रकला मिठाई। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस टाइम, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा जो है जगह बना रही है। तो अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास ये बाराबंकी है जहाँ की एक चंद्रकला मिठाई है भाई, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। क्या बात है यार, हम चाहेंगे अपने मुरादाबाद की दाल भी जल्दी से ट्रेंड में आए और हम उसके बारे में आपको बताएं। चलो जी, तमाम सारी बातें हमने आपको बता दी हैं और जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब मैं अभी आऊँगा लौट के बताऊँगा आपको। उससे पहले एक और लोकल खबर फटाफट बता देता हूँ मैं आपको इमीडिएटली बिना किसी देरी के, नहीं तो आप बोलोगे आनंद जी आपने हमें ये जानकारी क्यों नहीं दी थी। तो देखिए भाई साहब, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था अपने रामलीला ग्राउंड में जो है बहुत मेला बड़ा वाला लगता है दशहरे का, एंड जिसको लेकर लाइन पार रामलीला मैदान में जो है उससे उसकी तैयारियाँ शुरू हो गई है। कल भूमि पूजन के साथ जो है रामलीला मंच का भी अब शुभारंभ होगा और भूमि पूजन तो जो है कि अब हो ही गया है, तो अब जो है वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। अब जैसे नवरात्रि आएंगे तुरंत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर में जो है ये बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, स्पेशली आपके एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर चीजें चेंज होंगी, यूपीआई पेमेंट को लेकर थोड़े से बदलाव होंगे। 1 तारीख को जो है मैं आपको सारी डिटेल शेयर करूंगा, सिर्फ अभी आपको छोटे छोटे हिंट दे रहा हूं। और अब आगे बढ़ते हैं, एक जो सवाल पूछा था उसका राइट आंसर क्या है बताता हूं भी थोड़ी देर में। 9:57 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मैडम बताओ
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
0: चलिए चलिए भैया नाचते रहिए, इसलिए तो देखो मैं गाने चुन चुन के निकाल के लेकर आता हूँ सुबह सुबह, मतलब जिसको सुन के आपको मजा आ जाए, मतलब एकदम दिन जो है गजब का हो जाए, कुछ ऐसी चीजें निकाल के लेकर आता हूँ। फिलहाल एक बहुत ही अच्छा गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ आज की सुबह, और इस गाने के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे और भी बातें करेंगे, इसे स्टेशन ऑफ द नेशन पे बताएंगे। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, लेकिन सही जवाब जिसने सबसे पहले दिया है उसको आज हम सुपरस्टार बनाने वाले हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही ट्यून इन रहो आरजे आनंद के साथ, सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6। और एक बड़ी कमाल की लड़की का आज हैप्पी वाला बर्थडे, मैं जल्दी से उसका बर्थडे विश करने वाला हूँ, अभी लौट कर आता हूँ तो उनका बर्थडे विश करूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अगर आपका बर्थडे भी है तो आप मुझे इमीडिएटली बता सकते हो 9837896896 पे मैसेज करके। फिलहाल आने वाला गाना एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ा के,
3: तुम्हारा बुरा
0: बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक।
3: मैं कहता हूँ जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी कर लेते।

भैया देखो, मैंने छोटा सा सवाल पूछा था आपसे, आप इसका जवाब देने में इंटरेस्टेड हो तो दे सकते हो व्हाट्सएप करके। हाउ मेनी डिजिट्स आर इन देयर इन आधार कार्ड, आप मुझे बता सकते हैं आपके आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं। मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 14, 14 की बात कर रहा हूँ। आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि आपके आपको बताएं आपके आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं, वो जो कोड होते हैं वो कितने नंबर होते हैं। आप मुझे जरा बताओ कितने नंबर का होता है आधार कार्ड, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, क्या लगता है? मैसेज करो फटाफट से, क्या लगता है आपको, जो भी लगता है अगर आप जानते हैं तो मुझे बताओ। अभी लौट के आते हैं, बताते हैं कौन है सही वाला विनर। वेरी गुड मॉर्निंग, आप जरा ये गाना सुनते हुए आगे बढ़ो, मेरे साथ वॉल्यूम बढ़ा लो।

0: चलिए भाई, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अभी आपको समय बताते हैं। सुबह के 10:03 हो गए हैं जी, और अभी कुछ लोकल अपडेट आपको बताता हूँ इमिनेट।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
2: आवश्यक सूचना, 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
0: चलो जी, थोड़ा सा एड ब्रेक, और जिनकी आवाज में भी आपने एड ब्रेक सुना, आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रगति जी, आपकी रेडियो वाली भाभी, जो कुछ टाइम पहले आपको एफएम मुरादाबाद में सुनाई देती थी। आज 26 सितंबर को उनका बर्थडे है। तो प्रगति जी, आई डोंट नो आप रेडियो सुन रहे हैं या नहीं, बट मेरी तरफ से यानी आरजे आनंद की ओर से आपको आपके जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको वंस अगेन, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो एफएम मुरादाबाद के साथ एक गोल्डन टाइम स्पेंड किया उसके लिए थैंक यू सो मच, और अभी हमारी तरफ से भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। और एक बार हम बोलेंगे बच्चों, मिलके बोलो जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको ढेरों ढेरों। आप ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए, और आपके लिए एक अच्छा सा गाना मैं यहाँ पर प्ले करने वाला हूँ जिसको सुन के आपको बहुत मजा आएगा। एंड बाकी गाइस, अगर आज की तारीख में आपका भी बर्थडे है तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, लेकिन एक बार मिलके बोलो। ये गाना ऑफकोर्स यार आप तक पहुंचेगा, बहुत ही अच्छा गाना है। लेकिन अभी आज हमारी प्यारी सी रेडियो वाली दोस्त का बर्थडे है, यानी प्रगति का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे प्रगति जी।
3: हैप्पी बर्थडे,
0: हैप्पी बर्थडे। चलो जी, हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और एक मैसेज आया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पारुल है एंड आज मेरी कजन का बर्थडे है। आनंद जी प्लीज रेडियो पे विश कर दो एक बार। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां जी, हैप्पी बर्थडे। एंड ऐसे ही आप लोग मस्त रहें, झकास रहें और सुनते रहें एफएम मुरादाबाद 89.6। बाकी अगर आज की तारीख में आप में से किसी का बर्थडे होता है तो आरजे आनंद की तरफ से जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल एक अच्छा गाना प्ले कर रहा हूं आज की सुबह, एंड जितने लोगों का बर्थडे है उनके लिए गाना है, एंड आप इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए, और बाकी ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए। वंस अगेन, जो लोग आज अपना बर्थडे मनाते हैं, धीरे धीरे शुभकामनाएं। बॉलीवुड के एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर का भी बर्थडे है आज।

चलो गाइस, फिलहाल हमने लकी कॉलर को कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो पाई। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी आज की सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुरादाबाद में रेड अलर्ट जारी है बारिश का आज भी और कल भी, तो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। आप हमारी तरफ से तो भैया आपको यही मैसेज है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जहां भी आप जा रहे हैं ख्याल रखिए अपना और अपनों का। पहले मैंने आपसे पूछा था आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है, ये आपको मेरे को व्हाट्सएप करके बताना था। बहुत सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबॉडी। आपके जो मैसेज आते हैं ना भाई साहब, ये कसम से बता रहा हूँ, मेरा दिल बना देते हैं और मेरा दिल भी खुश कर देते हैं। मतलब मेरे पास अभी शब्द भी नहीं आ रहे, लेकिन वंस अगेन आपके लिए एक बार बिगुल बजाना चाहिए यार। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप ट्यून इन रहिए हमारे साथ और बताते हैं अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है आज की सुबह कि आनंद जी ये है राइट आंसर, वो है राइट आंसर, तो क्या है राइट आंसर चलिए आपको बताते हैं फटाफट से।

0: मुझे आज की सुबह एक लकी कॉलर जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। हाय गुड मॉर्निंग, कहाँ से जुड़ी हैं आप, क्या नाम है आपका पहले ये बताएं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी रामपुर से रिहाना बोल रही है, क्या बात है? रामपुर का मौसम कैसा है रिहाना, पहले ये बताओ। गुड मॉर्निंग।
1: रामपुर का मौसम बहुत सुहाना है।
0: अरे वाह सुहाना, वेरी गुड वेरी गुड। बारिश हो रही है वहाँ पर? हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो रिहाना? हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में अगर आ जाओगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
1: सर हम तो सुन पा रहे हैं लेकिन
0: आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है रिहाना। कोई बात नहीं, चलिए जल्दी से बात करते हैं। रिहाना आज जो मैंने सवाल पूछा था फटाफट से उसका जवाब बताओ, कितने डिजिट का होता है आधार कार्ड? पक्की बात?
1: ऑप्शन बी, यस।
0: और आपने देखा तो नहीं था ना अपना आधार कार्ड सुबह सुबह खोल के, चलो चेक कर लेते हैं?
1: बिल्कुल नहीं।
0: आपने देखा क्या या फिर आपको पता था? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो जी गाना गाओ इनके लिए। थैंक यू रिहाना, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। और आपको कैसे लगता है हमारा प्रोग्राम?
1: सर हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम आपके सारे प्रोग्राम सुनते हैं बट कभी नहीं सुन पाते।
0: कोई बात नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं कह रहे आपको, बाकी
1: ज्यादातर कोशिश करते हैं आपके प्रोग्राम सुनने की।
0: बहुत बढ़िया, ओके ओके। तो सुबह में आपको अच्छा लगता है प्रोग्राम?
1: जी सर बिल्कुल।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: और आप?
0: जी जी जी जी।
1: आपका अंदाज बहुत अच्छा लगता है सर।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यही तो कोशिश करते हैं कि अंदाज भी अच्छा लगे, बस ऐसा ना लगे कि बहुत फालतू बातें हो रही हैं, कुछ काम की बातें भी होनी चाहिए ना, तभी मजा आता है गीत संगीत के साथ साथ।
1: सर ये है ना, हम कुछ मतलब घर में रहते हैं, ऐसे इस साइड से पढ़ाई करते हैं,
0: आपके
1: सारे प्रोग्राम
0: नहीं सुन पाते। समझ सकते, कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है रिहाना जी। बिल्कुल रिहाना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो, कुछ कहना चाहते हैं?
1: मुरादाबाद में सभी लोग कैसे हैं?
0: सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत मजे में हैं। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली में सब बढ़िया खैरियत?
1: जी हमारी फैमिली में सभी लोग अच्छे
0: हैं। चलो बहुत बढ़िया रिहाना, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा अपना खूब सारा।
1: अरे
0: बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली, अब आप बुला रहे हैं तो जरूर जरूर आएंगे जरूर आएंगे रिहाना, थैंक यू सो मच। हाँ जी जी
1: सर, आप रामपुर भूले हुए चल रहे हैं?
0: नहीं नहीं, हम जरूर जरूर आएंगे रामपुर, जब आएंगे तो आपको जरूर मिलेंगे रिहाना। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, ऑल द बेस्ट आज की सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी लिसनर्स के लिए भी भाई कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिए हैं, आपके लिए भी मेरी तरफ से गाना।

0: चलो चलो चलो चलो, फिलहाल अगले आरजे को आप एंजॉय करोगे, हम जा रहे हैं अभी, आपको बाय बाय करेंगे, लेकिन आपके मैसेज तो पढ़ लेते हैं यार फटाफट से। एंड बाकी जो लोग अपना बर्थडे शड्डे मना रहे हैं उनकी उनके लिए एक अच्छा गाना छोड़ के जा रहे हैं हम यहाँ पर। आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। देखो मेरे साथ कौन कौन जुड़े थे, फटाफट बता देता हूँ। शैलेंद्र जी बुद्धि बिहार से जुड़े थे, हाय गुड मॉर्निंग सर, 12 डिजिट के होते हैं आधार कार्ड। अरे वाह, आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं, बहुत बढ़िया यार। हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? देखिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मैसेज पहुंचे हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सुबह सुबह इतना अच्छा एंटरटेनमेंट देने के लिए। आरजे आनंद जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदवली जिला मुरादाबाद से सही जवाब पहुंचा रहे हैं, इन्होंने राइट आंसर दिया। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं इरशाद हुसैन अंसारी साहब, डॉक्टर सैयद शारिक अली, मेहराज अंसारी, बाबू अंसारी, ये भी मुझे सही जवाब दे रहे हैं। अलका वर्मा जुड़ी है बुद्धि बिहार से, इन्होंने एकदम राइट आंसर दिया था। इसके अलावा गुड मॉर्निंग सर, अफरोज फातिमा जुड़ी सही जवाब के साथ, गुड मॉर्निंग सर कैसे हालचाल है, इन्होंने राइट आंसर दिया है, इनका नाम शैलेश सिंह है, थैंक यू मेरे भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग। ये लिख रहे हैं स्टेशन रोड पे काफी ट्रैफिक है, ओ माय गॉड, तो भैया उस ट्रैफिक में बस आप रेडियो सुनो, यही आपके सफर का साथी है। मोहम्मद कामिल जुड़े हैं रामपुर से हमारे साथ, कश्मीर से महराजुद्दीन जी जुड़े हैं, मोहन स्वरूप जी रामपुर से जुड़ चुके हैं, लिखते हैं सुप्रभात आनंद जी गुड मॉर्निंग, लगता है ठंड आने वाली है इसलिए बारिश हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: कहना कुछ भी पहले ही दे दूं वार्निंग।
0: बाकी ये लिख रहे हैं आनंद सर आप कैसे आए हैं, छाता लगाकर आए हैं क्या? बिल्कुल जी छाता लगाकर ही आए हैं, इन्होंने अपने आधार कार्ड का नंबर मेरे को भेज दिया, भाई ऐसा मत किया करो। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज और पहुंचा है हमारे पास, गुड मॉर्निंग सर कैसे हाल है? चलो यार इनका एक वॉइस नोट आया है, जल्दी से देखते हैं क्या पहुंचाते हैं, वो सुन लेते हैं। ओहो इनकी आवाज ही नहीं आई, ऐसा वॉइस नोट पहुंचा है, चलो कोई बात नहीं, वेल मैंने सोचा कभी कुछ बोला हो। आनंद भाई गुड मॉर्निंग, आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं, बिल्कुल जी सही कहा, रिहाना ने राइट आंसर दिया था, थैंक यू सो मच। एक वॉइस नोट आया है जल्दी से ये सुनते हैं जी।
2: गुड मॉर्निंग,
0: गुड मॉर्निंग सर,
2: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया बढ़िया सर,
2: माफी से साधु अंसारी
0: जी। सर
2: जैसे कि आपने पूछा है आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं,
0: जी
2: आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं, 12।
0: अरे वाह क्या बात है, 12 नंबर होते हैं, 12 दो दो बार बताया भाई ने, इसी बात पे जरा एक एड्रिक लेता हूँ।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल करें 7060002430।
0: थैंक यू सो मच, ये ब्रेक हो गया खत्म। एक मैसेज आया, हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी, माय नेम इज अक्षत, हाय अक्षत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है? ये उमेश हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में उस्मान टेलर जुड़ चुके हैं, गोविंदपुर खुर्द से रजा हुसैन साहब जुड़े हैं, गुलाम जलानी पाशा जुड़ चुके हैं, सोनू जी जुड़ चुके हैं, बुद्धि बिहार सेक्टर 10 से चमन लाल जुड़ चुके हैं, बबली, गीता, अनजान और ये सब हमारे साथ जुड़े हैं, एंड साथ में लक्ष्मी भाभी एंड गीता कश्यप ये हमारे साथ जुड़ी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं चौधरी मुमताज, राकेश वर्मा, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं और बहुत सारे मैसेज, समय बहुत कम है गाइस, आप समझ सकते हैं इतने मैसेज आ रहे हैं कि मैं पढ़ना मेरे लिए भारी हो रहा है। गुड मॉर्निंग सना नाजिया, थैंक यू सो मच, मौसम बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल इस अच्छे वाले मौसम में अच्छा गाना छोड़ रहा हूँ, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, हैव अ गुड डे, एंजॉय करिए अपना वीकेंड, बाय।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। लता मंगेशकर जी की आवाज में, नितिन मुकेश जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना। क्रांति मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है, जिंदगी के ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।

0: चलिए, हम डेफिनेटली हम आपको ये गाना सुनवाने वाले हैं श्रोताओं। फिलहाल हमारा जो अगला गाना है बहुत ही शानदार है, जो कि जनकपुरी शहरन काठमांडू से ये गाना हमारे पास रिक्वेस्ट आया था, तो इस गाने को एंजॉय करेंगे और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो वो भी सुनना बहुत जरूरी है।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। आज जरीना के साथ आप कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है और फिर से हम आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे। और आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप मैसेज करते रहिए, नंबर है 9837896898।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

और बहुत से आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर रील्स से देख रहे होंगे कि ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख से जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दरअसल ये जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, ये गलत है। आप जब भी आपको सामने कुछ ऐसा रील्स आती है या फिर आप ऐसा न्यूज़ देख लेते हैं, तो एक बार गूगल पर जाकर आपको सर्च जरूर करना चाहिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है और आपका जो मोबाइल नंबर है उसको अपडेट करना चाहिए ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और वेदर की बात करूं भैया, तो वेदर यानी कि 26 जिलों में, यानी कि यूपी के 26 जिलों में बारिश की जो संभावना है बहुत ही जमकर बताई जा रही है। और नवाबों का शहर लखनऊ, यानी कि यूपी की राजधानी लखनऊ में 19 साल बाद ऐसा हुआ है कि वहां पर बारिश थमने का तो नाम ही नहीं ले रही है। मतलब इतनी तेज बारिश हो रही है वहां पर, लगातार कंटिन्यू बारिश है। और इस बारिश के चक्कर में बहुतों की तबीयत भी खराब हो गई है जो बाहर निकल रहे हैं, इस बारिश में भीग रहे हैं। तो आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि बारिश में मत भीगिए। अगर आप बारिश में आप भीग भी जाते हैं तो घर पहुंचकर आपने जल्दी से कपड़ा चेंज करना है और एक अदरक इलायची वाली चाय की चुस्की लगानी है आपने। बहुत ही शानदार, आपने लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और बाकी आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास किनका क्या मैसेज आता है।

हाँ जी, मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे साथ बनारस गली नंबर 3 से कनेक्ट होते हैं जादिद अली जी, और इनका कहना है कि सब खैरियत से हैं। हाँ जी, बहुत ही खैरियत से हैं, सब बहुत अच्छे हैं। जान के दुश्मन मूवी से गाना सुनना चाहते हैं। सर, मैं आप सभी से ये बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, क्योंकि जब भी मैंने आपके अभी मैसेज देख रही हूँ तो आप एक ही गाने की रिक्वेस्ट करते हैं। जरा गाना चेंज करके बताइए सर, तो हम आपका गाने है ना वो डेफिनेटली सुनवाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक गाने के साथ साथ नहीं, आपको और भी गाना सुनना चाहिए। और भी बहुत गाने हैं जो कि बहुत ही शानदार। अगले मैसेज की बात करूं तो ये मैसेज हमारे पास आता है बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी और संतोष कश्यप जी, इनके साथ कनेक्ट होती हैं। और मैम, आप बताइए कि मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी बताइए। और जो आप गाना सुनना चाहती है, डेफिनेटली हम आपको ये गाना सुनवाएंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जय श्री राम रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, गाना सुनना चाहते हैं। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। ओके, चलिए ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाने वाले, लेकिन उससे पहले आप सभी के साथ हम कनेक्ट रहेंगे और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं ना, बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9832378 9689। कुछ इश्यूज होने की वजह से मेरी आवाज़ आप सभी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन आई होप कि अब मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। तो आप मैसेज करिए, क्योंकि जब आवाज़ नहीं पहुंचती है ना, तो सामने से भी लगता है कि ये आज शायद रेडियो पर कोई है नहीं, क्या कोई बोल नहीं रहा है। तो नहीं, डेफिनेटली मैं यही थी, लेकिन कुछ इश्यूज होने की वजह से मेरी आवाज़ आप सभी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अब तो आपको पहुंच रही है, तो फटाफट मैसेज करिए और अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय करिए। फिलहाल समय की बात करूँ तो 11:14 हो चुके हैं। चलिए एक शानदार गाना सुनते हैं आप सभी के रिक्वेस्ट पर।

वो ख्वाहिश नहीं तेरी, जो मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी, एक गल तू पल्ले बन जानी, ये पल्ले बन मेरी, वो होर होणगे जिन्हां नूं तू पैरां विच रखदा है। मैं प्यार हां तेरा, तवायफ नहीं तेरी, तवायफ नहीं तेरी।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
3: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी। हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
2: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 11:22 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 26 सितंबर बहुत ही और बेहद खास है, क्योंकि आज मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। हमें याद दिलाता है कि हमारी सेहत सिर्फ दवाई और अस्पतालों से नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण से भी जुड़ी होती हैं। जो हम हवा में यानी कि एयर में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जिस जगह रहते हैं वहाँ की साफ सफाई और आसपास का प्रदूषण, इन सभी का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। इसी जगह को और इसी जागरूकता को बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ हवा, स्वच्छ हवा, साफ पानी और स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, वातावरण को साफ रखने के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण डे मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट हेल्थी रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो आज इस दिन एक छोटा सा संकल्प लीजिए, अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे, पानी और प्रकृति को बचाएंगे और अपने शहर को साफ रखने में अपना योगदान देंगे। याद रखिए, स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी होती है। और अपने आसपास कूड़ा देखें, कहीं भी आप कूड़ा देखें तो साफ करने में मदद ज़रूर करिए। और कहीं पर ज़्यादा देखते हैं कि टैब खुला रह जाता है तो उस को आपने सिर्फ देखकर छोड़ नहीं देना है बल्कि उसको बंद करना है, क्योंकि पानी वेस्ट हो रहा है। और पानी कहते हैं ना, जल है तभी कल है, जल है तो जीवन है, अदरवाइज जल नहीं है तो जीवन नहीं है। क्योंकि खाने के बिना आप रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मिलकर

करते हैं हम। गुड मॉर्निंग रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी। जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी हूँ। और इनका कहना है कि सैटरडे में आपका शो मॉर्निंग मसाला सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और इनका कहना है कि आज आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, यानी कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि मेरे फ़ोन में ही दिक्कत है, तो मैंने अपने फ़ोन को मतलब चेक किया तो सब ठीक था। फिर मेरे को समझ में आया कि आपकी तरफ से आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इधर ही प्रॉब्लम हो गई थी। बट आई होप कि अब मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर आ रही होगी। आप बता सकते हैं मुझे मैसेज करके, क्योंकि अब हमने ठीक कर लिया है। और इनका कहना है कि संडे भी आप ठीक रहे, ताकि मंडे में आपका जो शो है वो हम सुन सके, एंजॉय कर सके। और ये कहते कि इतना लंबा चौड़ा मैं मैसेज करता हूँ ना, इसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं है। और इनकी फरमाइश है, यानी कि सतेंद्र सरताज जी की आवाज़ में ये गाना सुनना चाहते हैं, बहुत ही शानदार वाला। सो ये गाना भी हम आपको डेफिनेटली सुनवाने वाले हैं सर। आप बस बिंदास रहिए, आज रीना के साथ यूं ही कनेक्ट रहिए। अगले मैसेज की बात करूं तो आर्जेरीना सिस्टर जी, राधे राधे, राधे राधे सर, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना, जिला मुरादाबाद लद्दावली से कनेक्ट होते हैं। तो चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, सतेंद्र सरताज जी की आवाज़ में ये गाना सुनते हैं।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, यानी कि मुकेश जी की आवाज में, साथ ही साथ लता मंगेशकर जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और मॉर्निंग मसाला शो आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। समय की अगर मैं बात करूं तो 11:39 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 26 सितंबर, और साथ ही साथ अपने हनुमान अंश जो मूवी देखी होगी ना, उसका एक जो गाना है पार्वती पार्वती, मतलब इस गाने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अब झूम रहे हैं, क्योंकि पार्वती वाला और हनुमान जी का जो गाना है बहुत ही फेमस, हर सोशल मीडिया पर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और मूवी तो भैया बहुत ही धाकड़ वाली मूवी है, बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है, मज़ा ही आ गया। फैमिली के साथ आप इस मूवी को देखकर आइए। जो ये पार्वती वाला गाना है, इस पर अब हर कोई झूम रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी झूम रहे हैं, क्योंकि गाना बहुत शानदार है। और साथ ही साथ आज बच्चों की छुट्टियां है तो आप एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, और अभी टेम्परेचर की बात करूं तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है, यानी कि बारिश के साथ हवाएं ठंडी ठंडी, और लग रहा है कि ठंड अब बहुत ही जल्द दस्तक देने वाली है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो नवरात्रि तक तो भैया अच्छी खासी ठंड हो जाने वाली है। और चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है। संजू जी कनेक्ट होती हैं। हाय दी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये मेरे लिए दो लाइनें भी लिखती है, रिम जी बरसात हो रही है, रीना दी तुम्हें देखे बिना आंखें तरस रही है, डर लग रहा है अकेले में ये बिजली जो जोरों से कड़क रही है वो सुनकर डर लग रहा है, लेकिन आपसे मिलने का मन कर रहा है। तो देखिए, अगर हमसे मिलने का मन है तो आपको स्टूडियो आना पड़ेगा, तभी हम मिल पाएंगे आप सभी से। और ये गाने की बंद कर गाना हमारे पास रिक्वेस्ट भेजती है, आंखें बंद करके जो तेरा चेहरा नजर आया, हाय बहुत ही खूबसूरत है जी, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी मैसेज करने के लिए। अगले मैसेज की बात करूँ तो अमरोहा से नेहा कनेक्ट होती हैं। कैसी हैं जी? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं, आपके घर में सब बढ़िया? हाँ जी बहुत बढ़िया है, आप बताइए। अगले मैसेज की बात करूँ तो सलमान जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बनारस से, और इनके गाने की रिक्वेस्ट है टिप टिप बरसा पानी, और इनके दोस्त है रिहान अली जी। ओके, इन्हीं के साथ आपको एक गाना हम डेफिनेटली सुनवाने वाले हैं सर, बस आप बिंदास होके आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। देखिए, बहुतों को पता नहीं चलता है कि हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम समझ जाते हैं कि एक तीर से दो निशाने कैसे आ रहे हैं। अब आप, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, अब आप समझ जाइए कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक तीर से दो निशाने तो गलत बात है ना, आप समझ गए होंगे, बाकी नाम लेना जरूरी नहीं होता है हर बार। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद सारी कली जी, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, रीना जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। आपका शो मॉर्निंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। और लता मंगेश और किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये गाना सुनना चाहते हैं, हम दोनों प्रेमी दुनिया को छोड़ चले। ओके जी, और इनका कहना कि अब आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर और बहुत साफ आ रही है, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए।

अमित यादव जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं लाइन पर, प्रकाश नगर चौराहे से कनेक्ट हो रहे हैं। शंकर लाल यादव जी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और जो आप गाना सुनना चाहते हैं डेफिनेटली हम ये गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले और गाना सुनते हैं। और यूं ही आप सब कनेक्ट रहिए, आप सभी के मैसेज जरूर हम शामिल करेंगे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
4: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
3: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया। बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया आपने उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में। और आर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में। गर्ड वाली मॉर्निंग है जी, प्यारी प्यारी गर्ड वाली मॉर्निंग।

और एक प्यारा सा अपडेट, कौन कहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद आईपीएस ऑफिसर नहीं बनता है, मैथ में गोल्ड मेडल नहीं जीतता है? क्योंकि देखिए, हर कोई आपको पुश कर सकता है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से पढ़ रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट से। टीचर्स हो, माँ बाप हो, सिर्फ वो पुश करते हैं। पढ़ना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे, किस चीज़ को कितना सीरियस लेते हैं। क्योंकि एक गुरु भी सिर्फ यही कह सकता है और पढ़ा ही सकता है कि ये चीज़ आज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे टेक ओवर करते हैं। सो यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद मैथ में गोल्ड मेडल और फिर आईपीएस ऑफिसर, यानी कि पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन। तो देखिए, ये लगन होता है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसको लेकर आप कितना सीरियस है और कितने सीरियस के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि पुश करने वाले इंसान से ज़्यादा जो इंसान उस चीज़ को फॉलो करता है और समझता है, जो उसके सपने हैं वो पूरा करता है, जब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर नहीं हो पाता, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिलहाल आप सभी के प्यारे मैसेज हैं, उनको शामिल करते हैं। रीना जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। विकी सागर जी कनेक्ट होते हैं, बरसात का मौसम है बिल्कुल जी, गाना सुनना चाहते हैं, घर से निकल आया हूँ दूर। ओके, ये वाला गाना सुनना चाहते हैं, डेफिनेटली हम आपको ये गाना सुनवाएंगे जी।

0: नफीस जी हर थले से कनेक्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं और गाना सुनना चाहते हैं, आज फिर तेरी यादों का मौसम आया है। ओके, और एक हमारे पास प्यारी वॉइस मैसेज भी हैं, तो कोशिश करती हूँ मैं प्ले करने की।
1: गुड मॉर्निंग रीना मैम, कैसे हैं आप?
0: गुड मॉर्निंग मैम,
1: शेर पर माफी से सालिम अंसारी। आपका शो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बरसात के मौसम में हम FM मुरादाबाद सुन रहे हैं, बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं प्रोग्राम और बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं। प्लीज़ हमारी पसंद का एक सॉन्ग चला दीजिए, आ फिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, उदित नारायण की आवाज में सॉन्ग।
0: ओके जी, हम ये गाना आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे, आप यूं ही कनेक्ट रहिए। अगले मैसेज की बात करूं तो हमारे पास अगला मैसेज आता है।

रीना मैम, प्यार भरा हमारा नमस्कार, आदाब, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए। और इनका कहना है कि क्या बात है, आप नाराज़ हैं हमसे कि हमारा फ़ोन नहीं उठा रही हैं। मैम, इस टाइम मैं कॉल नहीं अटेंड करती हूँ, आप सभी को पता है कि क्यों ये मैसेज वाला शो होता है, तो इस टाइम कैसे मैं फ़ोन अटेंड करूँ? बताइए, आप मैसेज करिए, आपका मैसेज है वो ज़रूर हम शामिल करेंगे, और जिस भी गाने की आपने रिक्वेस्ट करी है हम वो गाना डेफिनेटली प्ले करेंगे। बस आप सब पेशेंस थोड़ा रखिए, नंबर हर किसी का आता है यहाँ पे मैसेज शामिल करने के लिए, और जो आप गाना बता रहे हो उसको भी हम प्ले करेंगे, लेकिन इस टाइम आप सोचेंगे कि मैं कॉल उठाऊँ, तो ये तो मैसेज शो है ना, तो इस टाइम कॉल कैसे उठा सकते हैं? बस 3 बजे हम आपका कॉल उठाएंगे, आप ज़रूर कॉल करिएगा जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं। हम 3 बजे आप सभी से लाइव बात करेंगे, कॉल पर बात करेंगे, जब ढेर सारी बातें करेंगे और गाना भी सुनवाएंगे। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त, कल मिलेंगे हम, कल तो नहीं जी, आज ही मिलने वाले हैं दोपहर यानी कि हेलो फरमाइश शो में मिलेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाहर का वेदर बहुत ही औसम है, और आई होप कि आप सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और ये बारिश थमने वाली नहीं है, मैं ये बता रही हूँ। बीच बीच में रुक जाए, हल्की फुल्की हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये बारिश कल भी ऐसा ही जारी रहेगा, 2 दिन की बारिश अलर्ट जारी कर दी गई है। तो चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं आप सभी की जो रिक्वेस्ट वाली है, और इसी के साथ मैं लेती हूँ जाने की इजाज़त, बाय, मिलते हैं दोपहर 3 बजे।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: ऐ मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका परिचय करवाती हूं डॉक्टर एके सिंह से, जो कि चंबल फर्टिलाइजर के वरिष्ठ प्रबंधक है। डॉक्टर एके सिंह जी हमें खेती किसानी कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं उसके विषय से मैं हमारे सभी श्रोताओं को अवगत कराती हूँ। वह विषय है बदलते मौसम के अनुसार फसलों का चुनाव। इस संदर्भ में हम आपको आगे जानकारी दें, इससे पहले हम डॉक्टर सिंह से यह जानना चाहेंगे कि भारत सरकार व उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित PMKSK योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
2: भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रियाएं हैं, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें हैं या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो PMKSK है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हरेक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है। ये सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, DAP का कब इस्तेमाल करना है, NPK का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है, ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: ये जानकारी हमने डॉक्टर सिंह से सुनी पीएम केएसके योजना के संदर्भ में। डॉक्टर साहब, अब आप आगे यह भी बताएं कि उर्वरक उपयोग के विषय में प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है उसका क्या उद्देश्य है।
2: असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव है या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च ना हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमको, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो अंडा भी खा सकते हैं, और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के उसके अंदर जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल।
3: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है, इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के ऑडियो क्लिप सुनने के बाद अब हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि बदलते मौसम से आपका क्या तात्पर्य है?
2: हाँ, अगर हम देखें तो जैसे आज के समय में कभी आप सूचनाएं सुनती होंगी कि अब के लानिनो आ गया है, उसकी वजह से बारिश कम होगी या बारिश इस तरह से होगी कि कहीं पर ज्यादा हो जाएगी तो कहीं पर कम हो जाएगी, ये इस तरह का है। और अभी तो ये कह रहे हैं कि ये जो लानिनो है इसकी वजह से समुद्र की जो सतह होती है ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो जो मानसून की आवक है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो लानिनो है इस बार ये मार्च तक रहेगा, तो इसकी वजह से हमारा जो मतलब पूरा संसार ही कह लें एक तरह से, इसमें ठंड भी बहुत कम पड़ेगी। मतलब जो एक सामान्य ठंड होती थी, विंटर होती थी जिसकी वजह से स्नोफॉल होता था और सारा चक्र हमारा एक सामान्य रूप से जो

0: ज्यादा हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये स्थायी है, लेकिन हो तो रहे तो इनका खेती पर कहीं की असर तो पड़ता ही है। अब सपोज मान के चले कि हमने सामान्य सोच के कि भाई सामान्य इस बार रेनफॉल होगा, बारिश अच्छी होगी, हमने धान ही लगा दिया सारे में, अब बारिश नहीं हुई और आपके पास पानी का कोई साधन है नहीं, ट्यूबवेल नहीं है, तो क्या आपका धान हो पाएगा?
1: नहीं
0: हो पाएगा। अब इसी तरह से अगर आपने ऐसे में आपने ये चीज आपको आइडिया होती और आप कोई और का जो चुनाव कर लेते तो वो शायद आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहता। तो इसीलिए मौसम के हिसाब से या जो जो मतलब परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जो हमारे खेती करने का तरीका है उसमें भी हम उसके हिसाब से उसकी उसके साथ लय मिलाते हुए हम उसमें परिवर्तन करें।
1: तो डॉक्टर साहब, आगे हमारे श्रोताओं को यह भी बताइए कि ये जो बदलते मौसम की मार है उसका वो सामना किस प्रकार से करें?
0: हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको इतनी सारी बातें कही, इसका ही अगर हम तोड़ निकालें तो कैसे सामना करें। जैसे मान के चलिए कि कोई एक जो किसान है जिनका की 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ में वो एक जैसी फसल लगाती है, एक फसल लगा दी उन्होंने सपोज। अब जैसे रबी का सीजन आ रहा है, उन्होंने गेहूं लगा दिया, अब गेहूं लगाया, गेहूं के लिए ठंड ज्यादा चाहिए, लंबे समय तक होने वाली फसल है, अगर उसके आखिर में पकाव के समय पर ठंड नहीं पड़ी तो क्या होगा, वो फसल का जो उत्पादन उनको मिलता है वो नहीं मिलेगा और जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। तो अब क्या करें, गेहूं तो उगाएंगे लेकिन गेहूं का रकबा कम कर सकते, गेहूं आधा कर लें, आधे में थोड़े से आधे के आधे में सरसों कर लें, कुछ चना कर लें, कुछ ऐसी फसल कर लें जो कि हरी कट जाती है, जैसे सब्जी के लिए हरी मटर आती है ना, तो हरी मटर आती है, हरी मटर टाइम पे बिक जाती है, उसके लिए पकाने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चुनाव हैं कि उनमें हम, जैसे आपने एक जो कहावत सुनी होगी, एक टोकरी में सारे अंडे रखते हैं, तो क्या हुआ, टोकरी गिरी सारे अंडे फूट गए। अगर वो अलग अलग टोकरी में होते तो शायद जो अलग टोकरी में था जो नहीं गिरी उसके वो अंडे बच जाते आप। तो वही सीधा साधा फंडा है इस पर कि हम इसमें इसका सामना अगर हमें करना है तो हम जो पहली चीज ये कि जो फसल का चुनाव है वो मौसम की लय को देख के करें, और वो लय देखने का अभी तक तो जो साधन है वो यही है कि जो जो भारत सरकार का जो तंत्र है जो उसके बारे में कहता है हम उनकी सुने, है ना, क्योंकि और तो कोई तरीका हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कि हम जो जान सके मौसम कैसा रहेगा, लेकिन उन्होंने जो इसके बारे में कहा है, भविष्यवाणी दी है, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा चलें, तो इस तरह से सामना कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि संसाधन की बात है तो हम अपने जो खेतों में जो मतलब जो जैव तत्व होता है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, है ना, उसको बढ़ाने से क्या होता है, खेत की ताकत हमेशा अच्छी, वो जो ज्यादा समय तक पानी रोक सकता है, सपोज एक बार पानी दिया तो वो 1 महीने तक होल्ड कर सकता है, फसल सूखेगी नहीं, लेकिन अगर उसमें जैविक तत्व कम है तो वो 15 दिन में ही पानी वो सूख सकता है, तो ज्यादा पानी की आपको जरूरत पड़ेगी। तीसरा काम कर सकते हैं कि खेत में पानी के निकास की भी व्यवस्था करें, अगर ज्यादा बारिश कहीं होगी तो उससे आपकी फसल खराब हो सकती है, तो पानी की निकास की व्यवस्था करें। निकास की व्यवस्था के एक तो तरीके है खेत से बाहर पानी निकाल दो, दूसरा तरीका यह है कि जो हिस्सा आपके खेत का ढाल वाला है उसी हिस्से पे एक जो खड्डा खोद दे और वहां पानी इकट्ठा करते रहो। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपना के और खर्चा करें, सोच समझ के करें, बहुत ज्यादा खर्च न करें जिससे कि अगर कुछ घाटा होता भी है तो हम उसे संभाल पाए।
1: डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि जो हमारे फसल उत्पादक हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए फसलों के चक्रवार का क्या महत्व है?
0: हाँ, फसल चक्र आपने पूछा, देखिए फसल चक्र क्या होता है, लगातार एक जैसी जब हम जब वो उगाते हैं जो मतलब जो फसलें तो वो आपकी फसल चक्र में शामिल नहीं होती। जैसे कि अभी रबी का सीजन आ रहा है तो एक किसान अपने खेतों में रबी में हमेशा गेहूं उगाते हैं, तो अब उनको चाहिए कि गेहूं के अलावा कुछ और फसलें भी लें, जैसे सरसों है, चना है, और कुछ किसान है जैसे कि लगातार एक खेत में सरसों उगाते चले आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उसमें चना ले लें या गेहूं ले लें। मतलब जो फसल का क्रम है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आप हमेशा एक जैसे ही खाना खा रहे हो, थोड़ा चेंज करिए इसे। चेंज कैसे करिए कि भाई आज आप हरी सब्जी ज्यादा खाइए, अनाज खाइए, या आज आप दूध, मतलब दूध ही दूध पे आदमी रहे तो उसका स्टमक थोड़ा अपसेट हो सकता है,

0: एक ही तरह का जो चीज होती है उससे थोड़ा सा बचे। उसका कारण यह है फसल चक्र का कि एक तो क्या होता है जब आप फसलों का क्रम तोड़ते हैं तो जैसे एक जैसी फसल जहां होती रहती है ना तो वहां एक जैसा चक्र बन जाता है, वातावरण बन जाता है, वहां एक तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं, एक तरह का रोग पैदा हो जाता है। उनको पता होता है कि इस समय पर मेरे लिए ये भोजन आने वाला है, मेरे लिए जो मैं लाइक करता हूँ इस तरह की फसल यहाँ तैयार नहीं है। अगर आपने क्रम तोड़ दिया, वो गेहूं का इंतजार कर रहा और आपने उसमें चना कर दिया, तो फिर वो उसकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, उसको वहां के ऊपर जो फेत है वो वहां से हट जाएगा। जैसे मान के चलो आप हर रोज रोटी डालते हैं घर के आगे, कुछ एक दो दिन शायद कोई खाने वाला नहीं आएगा, न कुत्ता आएगा न गाय आएगी, लेकिन एक बार अगर वो आने लगी और आप 3 दिन फिर और न डालो तो वो 2-3 दिन आती है, लेकिन उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया ना फिर वो नहीं आएगी, उसे लग जाएगा पता कि भाई अब यहाँ कोई रोटी नहीं डालता। तो इसी तरह हर जीव का एक अपना एटीट्यूड होता है, उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है। तो जब हम फसल चक्र अपनाते हैं तो ये क्रम टूटता है, नंबर एक। नंबर दो क्या होता है कि हर एक जो होती है फसल उसकी जो रूट सिस्टम होता है जो कि मतलब खाना लेती है जो खेत के अंदर से या पानी लेती है, उसकी एक जो मतलब साइज होता है, गहराई होती है, कोई ज्यादा गहरी जाती है, कोई ऊपर रहती है, कोई फैलती ज्यादा है, कोई कम फैलती है। तो वो जितनी ज्यादा कोई अगर जो मतलब फैलने वाली है तो वो आपके मतलब जो आपका खेत की मिट्टी उसमें ज्यादा स्थान से लेगी भोजन, जो ज्यादा नीचे वाली है वो नीचे से लेगी और जो ऊपर रहती है ऊपर से लेगी। तो जब हेर फेर से आप इसको बोएंगे तो हर जगह से समान रूप से भोजन ले पाएंगी फसल। अगर एक ही तरह के तो वो एक ही जगह से भोजन लेगी तो वहां पर वो पोषण की कमी ज्यादा हो जाएगी, उस जगह पर हो जाएगी, लेकिन दूसरी जगह में है लेकिन वो फसल को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अदल बदल के बोने से, और जब आप अदल बदल के बो रहे हैं तो उसका जो रूट सिस्टम है वो और जगह से लेगा, जो दूसरी जो खाली जगह है वो रिचार्ज हो जाएगी, वहां जैविक क्रियाएं ज्यादा होंगी, भोजन तैयार होगा तो अगली फसल के लिए वो काम आएगा। इसलिए हेर फेर के बोइएगा, ये फसल चक्र है। और आज के समय में ये बहुत थोड़ा जो कम होता जा रहा है, लेकिन हम सभी किसानों को समझना होगा कि इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये हमें दोबारा फिर शुरू करना चाहिए अगर हम एक टिकाऊ खेती की तरफ जाना चाहते हैं। टिकाऊ खेती मतलब जो हमेशा उपयुक्त हो, लाभदायक हो, अच्छा उत्पादन इसके ऊपर हम भरोसा कर सकें, है ना। जैसे बोलते कि भाई टिकाऊ हिस्सेदार है ये हमारा, ये कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, रात को आवाज लगाओ आ जाता है, हमें जरूरत हो ये आता है या इसको जरूरत हो तो हम इसके पास जाते हैं, तो एक फेथ जो होता है ना टिकाऊ पर वो थोड़ा बढ़ता है।
1: यानी फसल चक्र अपनाना सही और अच्छा दोनों है।
0: हाँ, सही है, अच्छा है और समय की मांग है।
1: तो डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि बहुफसली खेती क्या हमारे किसान भाइयों के लिए ठीक रहेगी?
0: हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें तो अभी हमारी जो वार्ता हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं इसोरी इशारा था। बहुफसली से क्या होता है कि एक जैसी फसलें हम न लें। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर हमने आम का ही पूरा बाग है हमारा और आम की फसल में लगातार हम लेते चले आ रहे हैं, सडनली कोई ऐसी आपदा आ गई, एपिडेमिक आ गया, तो सारा बाग का जो हमें उत्पादन मिलना था वो अफेक्ट हुआ, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी थी वो पूरी की पूरी हमारी। लेकिन आम के साथ हमारे कुछ अमरूद के बाग होते, कुछ लीची के बाग होते, कुछ पपीते के बाग होते, तो क्या होता, आम में नुकसान हुआ ना, लेकिन पपीते में शायद कुछ मिल जाएगा, अमरूद में कुछ मिल जाएगा। तो एक जो मतलब आमदनी का वो है ना क्रम, वो एक फसल होने से पूरा टूट सकता है या पूरा फायदा भी बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपको एक बार बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है लेकिन 4 बार आपको नुकसान हो गया तो कौन सी अच्छी बात है, 4 बार का नुकसान भारी पड़ जाएगा ना। तो इसलिए एक से ज्यादा फसलें लें। जैसे आप पहले गेहूं ही गेहूं उगाते थे तो आप कोशिश करिए इस बार आपको सरसों भी लेनी है, थोड़ी सी चना भी लेना है, कोई और भी ऐसी फसल लेनी है, जैसे अलसी आपके अगर होती है, अलसी आपने देखा फ्लैक्सीड है, वो आप ले सकते हैं। अगर इस समय पर कोई और ऐसी फसल आपको लग रही है जो कि आपके लिए लाभदायक है या नई कोई चीज आई है जो किसी और किसान ने की है, उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बहुफसली मतलब ये एक से ज्यादा ठिकाने या एक से ज्यादा आमदनी के सोर्स आप एक ही जगह पर क्रिएट कर रहे हैं। किसी एक फसल के ऊपर या एक सोर्स के ऊपर आप भरोसा नहीं करें। जैसे मान के चलो, ये तो फसल की बात होगी, जैसे हम किसान हैं तो हम खेती पे आश्रित हैं, गांव में रहते हैं। अब हमारी आमदनी के साधन क्या है? खेती है। और दूसरा क्या है सोचिए?
1: दूसरा अन्य रोजगार।
0: अन्य रोजगार में क्या हो सकते हैं?
1: नौकरी, बिजनेस।
0: जी, और एक और जो बिल्कुल खेती के साथ साथ है वो मैं बताता हूँ, वो है दूध का काम हो गया, यानी मतलब पशुपालन का काम। आप अंडे पालन का काम कर लीजिए, मुर्गी रख लीजिए, बकरी रख लीजिए, तो वो अगर खेती में कोई फेल होता है तो ये हो जाता है। उनका भोजन सारा खेती से आता है, सारा उसी से संबंधित चीजें हैं, ये हो गया। तो मतलब एक से ज्यादा आमदनी के स्रोत जो कि आपके आसपास ही है। अगर आप कोई दुकान खोलते हो तो वो एक अलग अलग तरह का काम, आप नौकरी करेंगे वो एक अलग तरह का काम है। कोई किसान जो पूरी समय से खेती में नौकरी का कोई उसको चांस नहीं है तो वो क्या कर, उसको नौकरी थोड़ी मिल जाएगी बेचारे में एकदम, तो वो खेती में ही अगला बंदी कर सकता है। तो इस तरह से बहुफसली, एक से ज्यादा फसलें लेना हमेशा उपयुक्त रहता है। फिर इसी तरह इसी क्रम में आप अपने खेत बदलते रहिए, वो फसल चक्र में शामिल हो जाएगा, उससे खेतों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो इस तरह की आपदाएं आती हैं, इनसे कहीं ना कहीं हम खेती करते करते इनका कोई ना कोई हम समाधान खेती में ढूंढ लेंगे और आसानी से हम ये जो आपदाएं हैं इनसे थोड़ा पार पा लेंगे। क्योंकि प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों में हम कोई अपने यहाँ बैठ के जो परिवर्तन नहीं कर सकते, वो तो होनी है तो होनी है। अभी जैसे कोई कह रहे थे कि एक जगह 5% ज्यादा हुई है लेकिन 1% 40 एक जगह 40% रेंज कम हुई, तो कितना बड़ा अंतर है अगर आप देखें, बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर जहां 5% ज्यादा हुई है वहां जो फसल होती है 40% वाले ने भी अगर वही फसल उगाई तो उसको तो नुकसान होगा। तो ये कुछ इस तरह की चीजें इसमें, एक से ज्यादा जो मतलब फसलें अलग अलग तरह की उगाना हमेशा प्रासंगिक है और खेती के लिए अच्छा है। दूसरा इसका एक और सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब आप बेचने जा रहे हैं, सपोज एक जगह एक ही फसल होती है और सारे किसान वही लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, उसके रेट डाउन भी आ सकते हैं। वही प्रोडक्शन बहुत हो गया। अब जैसे जी एक टाइम पे तो आप देखो कि टमाटर आता है, सबके टमाटर हो गया, तो फिर क्या करते हैं, वो टमाटर फेंक के चले जाते सबको। देखा होगा आपने, किसानों की न्यूज सुनी होगी, क्यों, सभी ने देखा कि पिछले साल टमाटर के रेट ठीक रहे थे, इस साल सब में लगा। अच्छा, लहसुन होता है, लहसुन में भी कभी कभी ऐसा होता है, तो थोड़ा थोड़ा लगाओ। अगर लहसुन के रेट नहीं बढ़े, थोड़ा ही लगाया था मैंने, तो क्या दिक्कत, टमाटर के रेट नहीं बढ़े थोड़ा ही लगाया था, कुछ और लगा, ऐसा करके तो रेट के बारे में भी आपको मंडी भाव भी ठीक मिल जाते हैं। तो ये इसका फायदा है कि एक से ज्यादा फसलें लें। फिर आप ऐसा जो काम करते हैं तो आप अपने लिए चीजें उगा सकते हैं। सपोज आपने सौंफ लगा ली, आपने ठंड के टाइम पे एक एकड़ के एक चौथाई भाग में सौंफ लगा ली, 2 क्विंटल सौंफ हो गई, 8-10 किलो आपने अपने लिए रखी, बाकी बेची, बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, हो जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे परिवर्तन करके, पहले मैंने देखा है जब लोग खेती करते थे तो वो ये कोशिश करते थे कि जो जितने उनके यहाँ इस्तेमाल में होने वाली चीजें हैं वो ज्यादातर चीजें खेत में पैदा हो जाए, बाकी चीजें जैसे नमक है या कुछ और चीजें वो बाजार से लाती। आप देखिए कितनी बड़ी बात, ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये जो आत्मनिर्भरता का जो एक संदेश है जो हम अक्सर कहते हैं उसको एक तरह से मूर्त रूप देना हुआ, तो बहुफसली व्यवस्था हमारे भारतीय जीवन में हमेशा उपयोगी है। क्योंकि बहुत ज्यादा फार्म हाउस या लंबे रकबे वाले किसान बहुत कम होते हैं,
1: पादपों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके द्वारा दी गई जो समस्त जानकारियां हैं वो सभी किसान भाई और हमारे फसल उत्पादकों सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। डॉक्टर साहब से मिलने वाली समस्त जानकारियों के पश्चात अब हम कह सकते हैं कि मौसम के परिवर्तन का जो हमारे फसलों पर असर होता है, हम उस असर को नकारात्मक की जगह सकारात्मक की ओर मोड़ सकते हैं, चाहे वो आप फसल चक्र अपना कर करें या बहुफसली खेती के माध्यम से करें।
2: आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर ए.के. सिंह सर से सुनी कि बदलते मौसम के अनुसार हमको फसलों का चुनाव कैसे करना चाहिए। हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल आज के कार्यक्रम से हम इजाजत चाहेंगे। खेती किसानी कार्यक्रम के अगले अंक में हम नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। सेहत से लाभ कई के श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं। हम आज बहुत खास प्रोग्राम को लेकर आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं? इस सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में सेहत की बात पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
2: धन्यवाद आर्जेरीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब आपके साथ मिलकर समझना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
2: देखिए आर्जेरीना, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। अब आप सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और ये समझें कि हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
1: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
2: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल के दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ स्ट्रेंथ विद साइंस और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
1: भाभी, ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
2: अरे, इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्ट्रेंथ विद साइंस, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लेते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है ये घरेलू नुस्खा अपना लो, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
1: अरे भाभी, स्मार्ट स्वास्थ्य दिल्ली के 100 झंडे से चलाए जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाए और लोगों की जेबों पर से स्वास्थ्य का खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरत के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी, आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
2: ये बहुत ही जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास का वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा हो, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा, इसीलिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा।
1: भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
2: क्योंकि आज जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं। कई बार छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं गए। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसे वैक्सीन से नुकसान होता है या कुछ बीमारियों का इलाज घर में ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
3: भाभी, ये यूनिवर्स हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
2: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जांच, इलाज और बाद की देखभाल, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोग उन सेवाओं पर भरोसा करें।
3: आज के समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कौन कौन सी है?
2: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम सही खानपान और व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस बात पर ध्यान नहीं करते थे लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
3: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
2: बहुत गहरा संबंध है। जब मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है तो पानी की कमी हो जाती है, खाने दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं।
3: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
2: भारत ने बहुत प्रगति की है लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं लेकिन अभी भी टीवी जैसी बीमारियां भारत में बहुत ज्यादा हैं और जीवन शैली की बीमारियां तो 60% मौत का कारण बन रही हैं। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सुधार हुआ है लेकिन हर राज्य में समान नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।
3: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
2: बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहां मुफ्त जांच होती है, टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, रक्त शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इन सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
3: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या भूमिका होती है?
2: सबसे अहम भूमिका होती है, हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं जहां HO होते हैं, जहां रोज मर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त जाता है, बहुत सी दवाइयां मिल जाती हैं और बहुत सी जांच हो जाती हैं। इसके बाद प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहां अच्छे डॉक्टर, दवाइयां और जांच की सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा होगा तभी वो समय पर इलाज करा पाएंगे।
3: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे सच पाए?
2: RJ रीना, ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है, सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होती है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र। यही वो जगह है जहां

0: एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहाँ ANM आशा कार्यकर्ता और कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर करते हैं। इसके बाद आती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ थोड़ी ज्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की जरूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएंगी।
1: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की?
0: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगहों पर अभी भी डॉक्टर की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती, यहाँ जांच की सुविधाएं सीमित नहीं होती, लेकिन सरकार लगातार इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों के मन में पहले से ही एक धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता और वे बिना कोशिश किए ही वहाँ जाना बंद कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन भरोसा करने की जरूरत है।
1: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुविधा कर रही है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
0: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, के तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है, वो भी बड़े अस्पताल में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है जिसे दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहाँ और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहाँ सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जांच और सलाहें भी मिलती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो इस आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
1: आजकल डिजिटल चीजों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
0: हाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब आभा ID बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इससे फायदे ये होते हैं कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराने इलाज और रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा UWIN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिससे टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोगों को समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगना है।
1: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारी बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
0: हाँ, और ये बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार ये अफवाह फैल जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे जमाने में तो टीका नहीं लगाया फिर भी हम ठीक हैं, इसलिए आज के बच्चों को भी जरूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोस की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
1: तो इन बातों का सच क्या है?
0: सच ये है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और ये दिखाता है कि शरीर अंधे मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है तो उस समय बहुत से लोग बीमारियों से मर भी जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था। हाँ, या हमें सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें ये ताकत दी है कि हम बीमारियों से पहले ही बचाव कर सकें।
1: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
0: सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच न माने, पहले पूछें, समझें और फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति ही समझदारी पूरे गांव को सही दिशा दे सकती है।
1: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है अपने लिए, अपनों के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं और सबसे जरूरी है सही जानकारी पर ही भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना रहे होते हैं।
1: दोस्तों, आज की बात से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं तो सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत से लाभ गई और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। सुनना न भूले FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
5: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
4: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं सोच बदलो, जो कि अक्सर आप आनंद को और प्राची को ही सुनते थे, लेकिन आज रीना, खुशी और प्राची भी आप सभी के साथ है। हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सोच बदलो शो में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोच बदलो, और आज का सवाल है क्या आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या फिर उन बचपन बदल गया है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले, यानी कि देखिए अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो हमारा बचपन था और आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है। उनको अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई, इनको साफ करो जल्दी जल्दी, कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी अरे और खेलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची मैं तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी।
4: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे मिस कर रहे हैं। पेड़ों पर चढ़ना, और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में, और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि इसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी हमारी मम्मी कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें, नेचर के साथ जो हमारा लगाव था वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया, और भी बहुत सारी ऐसी पैंडेमिक होती ही रहती है। अब तो एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और नेचर से बच्चों का ही नहीं, हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय है। खुशी आपको क्या लगता है?
5: थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया। एंड आज के बच्चे, उनके पास तकनीक है, जानकारियां हैं, लेकिन क्या कहीं बचपन की वो सादगी, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है? दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी लाइक सोशल मीडिया, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए, हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं। लेकिन पहले के टाइम में प्राची, हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें, तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे, सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना, एक्टिविटीज। बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम प्राची से भी जानते हैं, प्राची आप क्या कहना चाहते
4: हैं? बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बस आजकल फोन चाहिए, और फोन ने जो उनके अंदर एक चीज उनके अंदर ये इवॉल्व हो गई है नई, कि उन्हें हर चीज एकदम चाहिए, एकदम क्विकली। उनके अंदर वेट और पेशेंस जैसी चीजें बहुत कम हो रही है। आप देख सकते हो जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जब से आ गई है, होम डिलीवरी सर्विसेज, तो बच्चों को क्या है कि अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अभी 2 मिनट में पिज्जा चाहिए, मुझे 2 मिनट में ये सामान चाहिए, ये ब्रिंग इट से। तो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया है। इवन यंग यंगस्टर्स में भी, और ये वो चीज है लाइफ में पेशेंस जो एक हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं, और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकल्केट करने की जरूरत है।
3: क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे। और पता है जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे, तो उससे खेलते थे, और उसमें ना एक अपनापन होता था। हम जैसे सारे बच्चे मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए।
4: आजकल तो पता है बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं, कुछ नहीं पता है हमें। बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हमको,
3: तो क्या होता था वो सूखने के बाद ना हम उसपे कलर करते थे बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
4: चीजें हमें इतनी अच्छी लगती थी।
3: और हम बच्चे खुद का मतलब अब क्या है इतना उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है पहली बात तो, और फिर हम पहले मतलब खुद का घर बनाते, ये इसका घर है वो उसका घर है, फिर हम सब छोटी मोटी कीर्तन करते थे।
6: मैं कहना चाहती हूँ रीना, जैसे प्राची भी बता रही थी कि पहले हम ईंट से हम घर बनाया करते थे और उस पर हम फिर हम उसे सजाया करते थे पत्तों से एंड फूलों से, तो कितना वो हैप्पीनेस वाला टाइम था ना। आगे आप प्राची क्या कहना चाहते हो,
3: तुम बताओ पहले तुम क्या बचपन में कैसे खेलती थी। मैं तो सच बताऊं मिट्टी के बर्तन बना के गली मोहल्ले में हम सब बहुत खेलते थे, और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं दिवाली वगैरह, तो हम वैसे बच्चों बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के ही मिठाइयां बनाते थे, फिर उनको बांटते थे, घर घर में जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली हैप्पी दिवाली मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे।
6: अमेजिंग टाइम था। आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं।
3: और साइकिल की जो टायर होती थी ना उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी। हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा,
6: चलाया प्राची ऐसा वाला,
3: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम। आजकल के बच्चों की हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
6: नहीं बढ़ती, और प्रॉब्लम्स कितनी है छोटे-छोटे बच्चों के अंदर, नई नई बीमारियां आ रही हैं,
3: वो एक्टिविटी नहीं करते ना, एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेकर जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं। अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी। मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रांग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं।
4: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया। तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरमेंट चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें

0: चांसेस लेते भी हैं, पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी अब यू नो अब ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं, तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम
1: से जुड़े, नेचर से जुड़े।
2: दोस्तों, एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं।

दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ना उन्हें चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, ना ही पेड़ों की ठंडी छाँव का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें, उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपनी प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, ग्रीन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं सिखाती बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और जीवन का असली संतुलन भी सिखाती है। याद रखिए श्रोताओं, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से जितना बाहर निकालोगे, वे प्रकृति की दुनिया से उतने ही जुड़ेंगे। और जो बच्चा प्रकृति के करीब होता है, वही मानसिक रूप से अधिक खुश, स्वस्थ और रचनात्मक बनता है। तो दोस्तों, अभी हम आपसे करेंगे और भी बातें, आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी हम मिलते हैं आपको कुछ और म्यूजिकल

0: हाँ जी, वेलकम बैक है। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। और देखिए, जैसे कि खुशी ने बताया है कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, फोन से दूर रखिए। जितना आप उनको प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, उतनी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो और भी सुखमय रहेगी और प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेगी। सोचिए, अब क्या है, बच्चों को ना हम सुबह सुबह उठते ही उनको फोन पकड़ा देते, या फिर बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि हमें फोन चाहिए, हमें गेम खेलना है। अगर वो खाना भी खाते तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून देख कर ही खाना खाते। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पूरी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कब टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब हर किसी के पास फोन है, अलग बैठा है, कोई इधर कोने में बैठा है, और टाइम का तो मतलब पता ही नहीं चलता। इसीलिए आजकल के बच्चों को भी चश्मे बहुत जल्दी चढ़ रहे हैं। एक तो खान पीन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, सो चश्मे भी चढ़ने शुरू हो गए। क्योंकि स्क्रीन जो टाइम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो पढ़ रहा है। जब वो खेलेगा तभी तो उसका माइंड है वो रिफ्रेश होगा, फिर वो कुछ नई चीजों को सोचेगा। और प्रकृति के बारे में अगर उनको कनेक्ट करते हैं तो वो हर चीज के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चों से पूछ लो कि ये किस चीज का पौधा है तो वो बता नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ये तोरी का बेल है या फिर किसी और फल का पेड़ है, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके पेड़ों के बारे में नॉलेज बढ़ाए, उनको बताए किस चीज का पेड़ है, ताकि उनको भी पता रहे। अदरवाइज आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता। खुशी,
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बच्चे आजकल प्रकृति में समय कहाँ बिता, उनको क्या पता, बस उनको सोशल मीडिया से मतलब होता है एंड कार्टून से मतलब होता है कि कौन सा कार्टून कब आने वाला है, कौन सा गेम है। एक्चुअली इस तरह के गेम्स आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि बच्चे जब गेम्स खेलते हैं ना तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमें खाना खाना है या नहीं खाना है। जैसे
0: कोई आवाज लगा रहा है कोई आवाज नहीं लगा रहा, बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जाते हैं।
1: हाँ, तो बस यही है, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में कि अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा बाहर लेकर जाएं, प्रकृति से कनेक्ट करें, उनको पार्क में लेकर जाएं इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, उनके साथ आप भी समय बिताएं। एंड जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घुलता मिलता है, बातचीत करता है, तो उनका मानसिक संतुलन भी स्ट्रांग होता है, वो हैप्पी फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है, हमें समझता है।
0: और दूसरी बात ये कि बच्चों को जब तक वो 12th पास आउट ना कर ले आप उनको फोन मत दीजिए। एक बार आपने उनको फोन की लत लगा दी तो फिर आप उनसे छुटा नहीं सकते हैं। इसीलिए

0: अभी हम लेते हैं ऐसे जाने की इजाजत। फिर मिलेंगे।
1: आज से एक छोटी सी शुरुआत करें और अपने बच्चों को फिर से पेड़ों, फूलों, तितलियों और खुले आसमान के करीब लेकर जाएं। मैं आपकी दोस्त आरजी खुशी और आप सुन रहे हैं सोच बदलो। सोच बदलिए, क्योंकि छोटी सी सोच का बदलाव ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।

0: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
2: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
1: UPI-TSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
2: सूचना सेक्टर होंगे शामिल।
1: UPI-TSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ जरीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का हमारा टॉपिक है भैया, बहुत ही खास है, डिफेमेशन टॉपिक हम लेकर आए हैं। आपने अक्सर सुना होगा मेरी मानहानि हुई है, लेकिन आखिरकार मानहानि होती क्या है? किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी झूठी या अपमानजनक बात कहना, लिखना या फैलाना जिससे उसकी इज्जत, प्रतिष्ठा या समाज में सम्मान को नुकसान पहुँचे, उसे आम तौर पर मानहानि कहा जाता है। यानी किसी की छवि को जानबूझकर खराब करना सिर्फ मजाक की बात नहीं हो सकती, इसे कानूनी पहल भी कह सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो पर।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, थैंक्स।
3: तो सर, हमारा सबसे पहले टॉपिक यही होगा कि मानहानि होता क्या है।
4: देखिए, सरल शब्दों में अगर हम मानहानि की बात करते हैं, यानी डिफेमेशन की बात करते हैं, तो जब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई झूठ या उसकी प्रतिष्ठा को या उसकी इमेज को नुकसान करने वाला कोई आरोप लगाया जाए या कोई बयान दिया जाए, उसको प्रकाशित कराया जाए कहीं, वो पब्लिशिंग फॉर्म में, या उसको संचारित किया जाए, यानी उसको प्रचार प्रसार करके उसको संचारित फैलाया गया हो जिससे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा हो, तो उस परिस्थिति के अनुसार जो भी उसकी रेपुटेशन का नुकसान होता है उसको हम डिफेमेशन बोलते हैं, यानी कि उसको मानहानि बोला जाता है कि उसकी डिफेमेशन, उसकी इमेज का डिफेमेशन हुआ है।
3: ओके, क्या किसी को बुरा भला कहना ही डिफेमेशन है?
4: देखिए, आमतौर पर मजाक में आजकल लोग आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, या नेता एक दूसरे को, आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में लोग आरोप प्रत्यारोप का एक जो है लोगों पे बयानबाजी होती है, राजनीतिक विश्लेषण हम लोग देखते हैं तो उसमें नेता एक दूसरे पे खूब आरोप लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर भाषा जो है वो डिफेमेशन के कैटेगरी में आए। अपमानजनक या अशोभनीय शब्द अगर आप डिफेमेशन मतलब उस पर नहीं बनता है, या कोई ऐसा वर्ड आपने यूज किया जो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार डिफेमेशन हो। मामले में ये भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति ने जो कथन किया है वास्तव में उस व्यक्ति की रेपुटेशन उससे हर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, और कानूनी अर्थ में नुकसान अगर पहुंच रहा है तो डिफेमेशन बनता है। और डिफेमेशन के साथ साथ कुछ ऐसे, कुछ हमारे कानून में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसी जो एक पैरामीटर दिए गए हैं, अगर उस पैरामीटर के अंदर वो उसने स्टेटमेंट दिया है तो वो तभी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
3: ओके सर, इसके टाइप्स कितने होते हैं?
4: देखिए, डिफेमेशन आमतौर पर समान सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन की बात की जाती है। सिविल एक्शन में कंपनसेशन और डैमेजेस मांग सकते हैं, और जबकि क्रिमिनल जो डिफेमेशन होता है क्रिमिनल लॉ में प्रेस्क्राइब उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। तो सीधे तौर पे मैं कहूंगा कि अगर आपका सिविल डिफेमेशन हुआ तो सिविल डिफेमेशन में आप सिविल कोर्ट में वाद दायर करके उसमें हर्जाना मांग सकते हैं, कंपनसेशन मांग सकते हैं। अगर क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ तो क्रिमिनल कोर्ट में आप जो है वाद दायर करके मजिस्ट्रेट से रिलीफ मांग सकते हैं कि इसकी वजह से ये क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ है, इस तरीके से जो है ये अगेंस्ट में इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए।
3: सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर किसी के खिलाफ गलत पोस्ट करना भी डिफेमेशन हो सकता है?
4: देखिए, ये तो आजकल बहुत ट्रेंड चल गया, हम देखते हैं, आप अगर मोबाइल उठा के देख लेते हैं, आप फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, आप ट्विटर देख लीजिए, या आप यूट्यूब देख ली, तो बाढ़ आई पड़ी है तमाम मैसेजेस की, सोशल मीडिया मैसेजेस की। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना

0: है कि कोई भी मैसेज अगर आप देख रहे हैं तो उसको बिना देखे बिना समझे आप फॉरवर्ड बिल्कुल मत करिए। अगर सपोज करिए कोई आपके पास कोई डिफेमेशन मैसेज आया और आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो आप भी उसमें बराबर के भागीदार बन जाते हैं, है ना। हाँ, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। परिस्थितियों के अनुसार सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी डिफेमेशन पब्लिकेशन मानहानि का आधार बन सकता है। ऑनलाइन होने से कानून समाप्त, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर चीजें ऑनलाइन हो गई है तो कानून आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर आपने ऑनलाइन भी किसी के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए या किसी ने कोई अपशब्द लिखा और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया दूसरे ग्रुप में, तो आप भी बराबर के भागीदार बन जाते हो।
1: ओके, तो मतलब शेयर करना भी
0: हो जाता है। पहले जो है हमारे कोर्ट में एक जो है क्वेश्चन था कि भाई किसी ने अगर अपशब्द लिखे और दूसरे ने फॉरवर्ड किया है तो उसको भागीदार नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर आप गलत चीज का साथ दे रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो और कंटिन्यूस डिफेमेशन कर रहे हो, तो आप भी बराबर के उसमें कल्प्रिट माने जाओगे, आप भी उसमें दोषी माने जाओगे। तो लिहाजा अगर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको सोच समझ के वहीं डिलीट कर दिए या उसको आगे फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं करना है।
1: सर, ये भी होता है ना कि जैसे हम केस दर्ज करवा रहे हैं तो आगे से भी पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है, इसकी कोई साइड?
0: देखिए, वो सब साइबर क्राइम जब होता है ना तो जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे लीगल जुडिशरी में और पुलिस के पास एक टीम होती है, वो सब ढूंढ लेते हैं कि कौन सी पोस्ट कहाँ करी थी। आईपी एड्रेस से पता चल जाता है, आपका सोशल मीडिया हैंडल से पता चल जाता है कि आपने कब कौन सी पोस्ट करी है, तो वो डाटा आप कितने डिलीट कर लें वो सब फाइंड आउट हो जाता है वो।
1: ओके, तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति के बारे में गलत आरोप लगाने पर क्या मामला बन सकता है?
0: यदि कोई लीगल उसमें जो एविडेंसेस हैं, लीगल कोई सब्सटेंस उसके अंदर है जो आपने कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप में किया है उससे किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पे आपके खिलाफ जो है डिफेमेशन का मामला बनता है और एज पर सिचुएशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन 100% हो सकता है। तो इसलिए व्हाट्सएप पे भी आप किसी के बारे में अपशब्द लिख रहे हैं या कुछ ऐसी अशोभनीय बातें लिख रहे हैं तो वो भी लीगल एक जो है डिफेमेशन की कैटेगरी में आती है। वो भी
1: मतलब वही ना सर, कि मजाक में भी बोल दिया और वो दिल पर ले गया तो ये बुरा ही है।
0: हाँ, तो सोच समझ के आपको कोई भी सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में भी आप चैट कर रहे हैं तो आपको किसी को डिफेम करने का राइट नहीं मिल जाता है, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: हाँ।
0: तो आपको सोच समझ के पोस्ट करना चाहिए और कोई भी अगर डिफेमेटरी कोई स्टेटमेंट किसी ने दिया है तो आपको उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना है।
1: सर, अगर कोई व्यक्ति किसी गलत पोस्ट को या सिर्फ फॉरवर्ड करे तो क्या वह भी जिम्मेदार हो सकता है?
0: देखिए, मैंने जैसे बताया अभी आपको, ये फैक्ट्स पर निर्भर करता है। फॉरवर्ड करने वाले की भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, कंटेंट नेचर ऑफ कंटेंट क्या है। अगर इन सारी चीजों में उसका इंटेंशन मैलाफाइड है और वास्तव में वो भी डिफेमेशन करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति की, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ भी एक्शन बनता है, इसमें डिफेमेशन का केस बनता है उसके खिलाफ भी।
1: तो सर, क्या किसी की फोटो लगाकर कैप्शन लिखना भी गलत है?
0: आपने देखा होगा आजकल खूब जो है एक डीप फेक नाम का वर्ड आपने सुना होगा।
1: जी जी।
0: तो डीप फेक वर्ड क्या होता है? देखिए, डीप फेक एक वर्ड जो आपने सुना होगा, डीप फेक में ये होता है कि लोग जो है किसी की भी फोटो से कुछ और फोटो बना देते हैं, उसकी वास्तविक फोटो को चेंज करके।
1: ये तो अब चला भी हुआ है।
0: हाँ, तो ये डीप फेक का जो आपने देखा होगा, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हमारे शिकार होते हैं, पॉलिटिशियंस शिकार होते हैं, बहुत सारे पॉपुलर जो पर्सनैलिटीज है उनके ऊपर उनकी डीप फेक जो है वीडियोज बना दी जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन प्रभावित हो रही है और ये गंभीर कानूनी मुद्दा है, तो फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट, यूआरएल और डेट वगैरह अगर सब आपका एविडेंस के रूप में फाइंड आउट हो गया कि आपने भी उस पार्टिसिपेट किया है उस कैटेगरी में, तो आपके ऊपर निश्चित तौर पर डिफेमेशन केस बनता है।
1: आजकल तो ये बहुत चला भी हुआ है सर।
0: हाँ, बिल्कुल बना हुआ है।
1: एआई का जमाना है।
0: एआई के कुछ नुकसान भी है
1: और कुछ फायदे भी हैं।
0: कुछ तो जो चीज अच्छी है वो अडॉप्ट करनी चाहिए।
1: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगला क्वेश्चन है, क्या व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट कोर्ट में एविडेंस बन सकता है?
0: हाँ, बिल्कुल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइडलाइंस भी आई हैं, अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एविडेंस हो सकता है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी एडमिसिबिलिटी कानून के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो तभी वो एडमिसिबल हो।
1: अगर पोस्ट बाद में डिलीट कर दी जाए तो क्या मामला खत्म हो जाता है या फिर ये मामला चलता ही रहता है सर?
0: देखिए, ऐसा है, आपने ये तो वही वाली बात होगी, पहले आपने अपराध कर दिया फिर उस अपराध का साक्ष्य मिटा रहे हो आप उसका एविडेंस, मतलब एक तरफ आपने अपराध किया फिर उसका एविडेंस आप मिटा रहे हो, तो इसमें कैसे माफी मिल पाएगी आपको, है ना। तो इसमें ये है कि अगर आपने उस चीज को पब्लिश कर दिया और उसका एविडेंस अभी भी उपलब्ध है, उसका साक्ष्य उपलब्ध है और आपने बाद में अगर उसको डिलीट भी कर दिया है, लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर समाप्त नहीं होता, क्योंकि आपने साक्ष्य मिटाया है।
1: ओके,
0: आपने अपराध तो कर दिया
1: ना,
0: और फिर आप अपराध करके बाद में उसको डिलीट कर रहे हैं, तो जब अपराध हो गया तो अपराध की तो सजा मिलनी चाहिए ना।
1: मतलब माफी मांगने से भी नहीं होएगा कुछ भी?
0: वो देखिए विक्टिम के ऊपर है, अगर विक्टिम माफ कर देता है ठीक है, या कोर्ट उसको माफ कर देती है, लेकिन अपराध तो हुआ है ना।
1: ये तो है सर, मतलब वही है ना, किसी के ऊपर पत्थर मार के सॉरी बोलो तो क्या ही फायदा।
0: तो अपराध आपने किया है, तो अपराध अगर करा है तो आपके ऊपर केस बनता है।
1: ओके,
0: ये विक्टिम का, विक्टिम के ऊपर है कि विक्टिम उसको माफ करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है या कोर्ट उसको कोई ग्रांट देती है।
1: अगर सर मान लीजिए उसने कोर्ट में भी मतलब बता दिया उसके बारे में और उसने खुद भी माफ कर दिया, तो फिर क्या कोर्ट तक?
0: देखिए डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ज्यादा बड़ा अपराध नहीं था तो वो हो सकता है कि उसको माफ भी कर सकते हैं, और लगता है कि वास्तव में एक कॉन्सिक्वेंसेस था तो उसमें पनिशमेंट दे सकती है कोर्ट, या उसपे पेनल्टी लगा सकती है, फाइन लगा सकती है, कंपनसेशन दे सकती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
1: अगर मैंने किसी के बारे में सच बात कही तो क्या ये भी मानहानि हो सकता है सर?
0: देखिए क्रिमिनल डिफेमेशन के संदर्भ में ट्रूथ जो होता है एक महत्वपूर्ण स्टैट्यूटरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके साथ अगर कानून में अनकंडीशन मतलब और दूसरी कंडीशंस भी लगी हुई है, जैसे कि सच है कह देना हर मामले का ऑटोमेटिक डिफेंस नहीं होता है, है ना। अगर आपने कह दिया कि भाई इस आदमी, ये आदमी ऐसा है और वो वास्तव में सच भी है, तो आप ये कह के कोर्ट को नहीं कह सकते साहब ये बात ठीक थी और इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, ये इसका नेचर ऐसा था, बदतमीज आदमी है, ये लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन अगर उससे डिफेमेशन हुआ है या उसका जो है कुछ लीगल इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उसके राइट्स का, तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस बनता है।
1: मतलब तारीफ करना भी गलत है सर?
0: तारीफ डिफेमेशन में नहीं आता ना, अगर आप उसकी रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हैं।
1: Okay.
0: उसकी रेपुटेशन हर्ट होने से अगर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके जीने का आप राइट जो है डिस्टर्ब कर रहे हो, लीगल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो आपके ऊपर इन डिफेमेशन का केस बनता है।
1: किसी व्यक्ति की आलोचना करना और मानहानि में क्या अंतर होता है सर?
0: देखिए फेयर क्रिटिसिज्म जो होता है और डिफेमेटरी एलिगेशंस होती हैं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट होती हैं। किसी काम, पॉलिसी या पब्लिक कंडक्ट की उचित आलोचना और किसी व्यक्ति के बारे में रेपुटेशन हार्मिंग फॉल्स एलिगेशन में अंतर किया जाता है। अगर आप उसकी उचित एक आलोचना कर रहे हो, फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, वो चीज अलग है, लेकिन आप उसका इंटेंशन ही आपकी उसको डिफेमेशन करने की है, जिससे उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़े, उसके काम पे इफेक्ट पड़े, उसकी इमेज पे इफेक्ट पड़े, तो निश्चित तौर पर आपको लीगल जो प्रोसीडिंग्स है फेस करनी पड़ सकती है।
1: क्या पब्लिक फिगर की आलोचना करना भी अपराध है?
0: नहीं, देखिए पब्लिक फिगर की फेयर क्रिटिसिज्म अगर आप कर रहे हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म और डिफेमेटरी एलिगेशन के बीच लीगल बाउंड्रीज का ध्यान रखना होता है कि लीगल बाउंड्रीज के अंदर ही अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो चीज तो समझ में आती है, लेकिन उस बाउंड्री से बाहर निकल के अगर आप कर रहे हो तो वो दिक्कत है थोड़ी सी।
1: तो क्या सर बिना किसी के नाम लिए भी बात करना मानहानि हो सकता है?
0: हाँ, यदि परिस्थितियों से लोगों को ये स्पष्ट हो जाए कि ये बात आपने इस व्यक्ति के बारे में कही है, ठीक है, तो केवल नाम ना लेने से आपका मामला स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। ये जरूरी नहीं कि आपने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आपने ये जता दिया एक पब्लिक के बीच में कि उस व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है, भले ही आपने नाम नहीं लिया। अब सपोज करिए आपने किसी देश के, किसी भी देश के, मैं मतलब वर्ल्ड की बात करूं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करी और देश का आपने नाम लिया
1: जी।
0: आप किसी देश का नाम ले रहे हो, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, तो आपने प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं लिया ना
1: जी, जी,
0: लेकिन आपने देश का नाम लिया और प्रधानमंत्री का नाम लिया।
1: ओके,
0: तो आपने एक क्राइम कर दिया अगर आपने कोई आप शब्द बोले उनके खिलाफ, तो है ना, कोई डिफेमेशन अगर आपने करी है तो क्राइम बनता है फिर वो।
1: अगर किसी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ अपनी राय दी थी, तो क्या ये भी हमेशा बच सकता है या फिर गलत है?
0: देखिए आप ये कह के कोर्ट से जो है आप जो है कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। कोर्ट कथन की जो वास्तविकता होती है, नेचर होता है, उसका कंटेक्स्ट होता है और उसके प्रभाव को देखती है कि आपने किस इंटेंशन से, किस प्रभाव से उस चीज को यूज करा, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है सिर्फ अपनी राय दी थी, तो इसको कह के आप नहीं बच सकते।
1: सर अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्रकारिता में मानहानि से कैसे बचा जा सकता है?
0: देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आमतौर पर रिपोर्टर्स को ये डिफेमेशन के केसेस बहुत झेलने को मिलते हैं।
1: जी जी जी।
0: क्योंकि रिपोर्टिंग आपने देखा होगा कि अगर आप किसी की भी खिलाफ रिपोर्टिंग कर देते हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, तो सीधे डिफेमेशन का नोटिस भेज देती है जो विक्टिम होता है या जो जिसको लगता है कि डिफेमेशन हुई है उसकी। तो मीडिया को खासतौर पर डिफेमेशन से बहुत सामना करना पड़ता है। पत्रकारिता में और मीडिया में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कोई भी खबर प्रसारित करने से पहले फैक्ट्स की जानकारी करनी चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, रिलायबल सोर्स पर भरोसा करना चाहिए कि कौन से सोर्स से आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है। आमतौर पे आपने भी देखा होगा कि लोग आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई है टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनलों
1: जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि वो खबर चला देते हैं तुरंत ब्रेकिंग कि साहब यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे पहाड़ गिर गया, यहाँ पे कुछ हो गया, और पता चलता है कि वो खबर जो है वो ऐसी कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे।
1: जी जी जी।
0: तो एक कंपटीशन के दौर पे मीडिया को भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो खबर आ रही हो रिलायबल सोर्स से आ रही हो, तभी आप उसे प्रसारित करें, उस फैक्ट्स को वेरीफाई करें कि वास्तव में ऐसी कुछ घटना हैपनिंग वहाँ हुई है या नहीं हुई है, और उसमें संबंधित व्यक्ति का भी आपको पक्ष लेना पड़ता है। अगर आप किसी के बारे में कह रहे हो कि साहब इस आदमी ने जो है धोखाधड़ी कर ली, एक के खिलाफ चला रहे हैं, एक के पक्ष में चला रहे हैं, एक के विपक्ष में चला रहे हैं
1: जी,
0: तो मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए, उसको पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुन के दोनों के स्टेटमेंट फैक्ट्स को अच्छी तरह पब्लिश करना ही उसकी जिम्मेदारी है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिफेमेशन का सामना करना पड़ सकता है।
1: सर अगर किसी की मान हानि हो जाए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए?
0: देखिए सपोज करिए कि अगर आपके बारे में किसी ने अपशब्द कह दिए या आपको फेसबुक पे कुछ अपशब्द कह दिया है, कुछ गाली दे दी है, कुछ और दे दिया, तो आप सबसे पहले तो उस एविडेंस को इकट्ठा करिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, उस पोस्ट को, मैसेज को, कोई न्यूज़पेपर में आया, कोई क्लिपिंग है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई यूआरएल है, कोई स्क्रीनशॉट है, उन सारे फैक्ट्स को आप इकट्ठा करिए और एक अच्छे एडवोकेट से आप लीगल एडवाइस लीजिए, उसके बाद आप उसको एक डिफेमेटरी नोटिस दीजिए और नोटिस के बाद आप सीधे कंप्लेंट केस भी कोर्ट में डाल सकते हैं।
1: सच बताऊं तो सर इस टॉपिक के बारे में मुझे आज पता चला है कि किसी के मान हानि के बारे में भी अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी कोर्ट तक बात जा सकती है।
0: बिल्कुल जा सकती है। अगर आपने फेसबुक पे भी किसी को अपशब्द कह दिए तो आपको कोर्ट का रास्ता देखना पड़ सकता है।
1: क्या मान हानि के मामले में लीगल नोटिस भेजना जरूरी है?
0: जी हाँ, डिफेमेशन के मामले में मोस्टली लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है, लेकिन अगर आमतौर पर अगर डिफेमेटरी नोटिस आपने नहीं भी भेजा, आप सीधे कंप्लेंट केस भी डाल सकते हैं। हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, लेकिन मोस्टली मामलों में लीगल नोटिस भेजकर एक क्लैरिफिकेशन और अपोलॉजी और विड्रॉल या कंपनसेशन की मांग करना प्रैक्टिकल पहला कदम माना जाता है।
1: ओके।
0: तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आप लीगल नोटिस भेजें, उसके बाद आप केस फाइल करें।
1: क्या मान हानि का मामला सीधे पुलिस में दर्ज कराया जा सकता है?
0: देखिए क्रिमिनल डिफेमेशन की प्रक्रिया समानता कंप्लेंट केस के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष ही शुरू की जाती है, इसलिए केवल पुलिस कंप्लेंट पर निर्भर रहने के बजाय एप्लीकेबल जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको आपको समझना पड़ेगा, और लीगल प्रोसीडिंग के तहत ही आप सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हो। तो क्योंकि पुलिस जो है हमारी बड़े कोई मैटर्स होते हैं उनके लिए होती है, लीगल केसेस जो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं और ये, तो ये मजिस्ट्रेट के समक्ष ही जो है कंप्लेंट केस में वाद दायर कर सकते हैं आप इसके लिए।
1: क्या सिविल डिफेमेशन में क्या मांग की जा सकती है?
0: देखिए जो भी आपका डेफेमेशन हुआ है, सिविल डेफेमेशन होता है, फैक्ट्स के आधार पे जो भी आपका नुकसान हुआ है, जो भी डैमेजेस हुए हैं, जो भी आप जो है कंपनसेशन चाह रहे हैं, और कुछ परिस्थितियों में इंजेक्शन जैसी रेमेडीज भी मांगी जा सकती हैं, तो एज पर सिचुएशन डिपेंड करता है कि उसमें आपको जो है क्या कंपनसेशन डिमांड करनी चाहिए, और बेहतर होगा कि आप इसे किसी अच्छे, अगर कोई ऐसा आपको कोई आपको फेस करना पड़ रहा है डिफेमेशन, तो आप किसी अच्छे लॉयर से डिस्कस करके और उसको कंप्लेंट केस एक फाइल करें कोर्ट में।
1: डिफेमेशन केस में एविडेंस कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए डिफेमेशन केस में एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्या कहा गया है, किस टाइम कहा गया है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, यूआरएल पे कहा गया है, फेसबुक पे कहा गया है, किसी मैगजीन में छपाया, किसी अखबार में छपाया, उसका कंटेक्स्ट क्या था और रेपुटेशन पे उसका क्या इफेक्ट आया है, ठीक है, तो इन सबको इस्टेब्लिश करना पड़ सकता है। इसलिए डिफेमेशन में जो भी चीज होती है, जो एविडेंस होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं, तो आपको एक एक चीज को संभाल के रखना है और जो भी फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो है डिफेमेशन आगे कंप्लेंट केस फाइल करना। पब्लिक अपोलोजाइज जो होती है वो अगर पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो रहा है या अप्रोप्रिएट अपोलोजाइज से डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है और इसका इफेक्ट केस की स्टेज और एप्लीकेबल लॉ पर निर्भर करता है। अगर दोनों पार्टी सेटलमेंट कर रही हैं और एक विक्टिम जो है वो अगर इससे संतुष्ट है कि हाँ पब्लिक अपोलोजाइज कर लें या पब्लिकली वो माफी मांग लेता है अपने किए गए कृत्य के लिए या उसने जो उसकी मानहानि करी है, तो पब्लिक अपोलोजाइज से भी डिफेमेशन केस समाप्त हो सकता है।
1: क्या सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर रखना पर्याप्त है?
0: देखिए स्क्रीनशॉट यूजफुल है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ऑथेंटिसिटी और लीगल एडमिसिबिलिटी के लिए आपको

0: एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। तो स्क्रीनशॉट के साथ साथ कोई ऐसी बात किसी के सामने कही गई हो, कोई विटनेस हो, कोई पब्लिश हुई हो किसी मैगजीन में या कहीं पे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सारी चीजों को जो एविडेंस के तौर पे जब आप प्रेजेंट करोगे तभी आपका केस मजबूत बनता है। तो निश्चित तौर पे देखिए स्क्रीनशॉट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी एविडेंस आपको रखने पड़ सकते हैं।
1: क्या गाली देना हमेशा मनहानी है?
0: नहीं देखिए, हमेशा मैं नहीं बोल सकता। हर एब्यूसिव स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली डिफेमेशन नहीं होता। और किस माहौल में कौन सी बात कही गई है और किस इंटेंशन से कही गई है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो सबसे बड़ी चीज आपकी जो नेचर ऑफ कंटेक्स्ट है उसका, प्लस उसमें जो आपका इंटेंशन है, वो सारी चीजों को देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिफेमेशन कैटेगरी में है या नहीं है।
1: क्या किसी की रिपुटेशन खराब करने के लिए झूठी खबर फैलाना कानूनी अपराध हो सकता है?
0: देखिए फैक्ट्स और एप्लीकेबल लॉ के आधार पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप किसी के खिलाफ झूठी खबर प्रसारित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है और इसके लिए आपको लीगल जो है प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है।
1: मानहानि और साइबर क्राइम में क्या संबंध है?
0: देखिए जो मानहानि होती है ऑनलाइन डिफेमेटरी कंटेंट होता है वो डिजिटल मीडियम का उपयोग करता है, लेकिन हर ऑनलाइन डिफेमेशन को आप ऑटोमेटिकली साइबर क्राइम नहीं कह सकते, ठीक है। तो एप्लीकेबल ऑफेंस और लीगल प्रोविजन फैक्ट्स पर निर्भर करता है कि वो डिफेमेटरी कंटेंट था या वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में जाएगा। दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए साइबर क्राइम हो गया एक तरीके से, आपसे ऑनलाइन किसी ने फ्रॉड कर दिया, पैसे का नुकसान हो गया, और डिफेमेशन हो गया आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाना। तो इसलिए ऑनलाइन अगर डिफेमेशन हो रही है तो उसको आप साइबर क्राइम नहीं कह सकते, है ना। कहीं ना कहीं वो जो है दोनों की एक प्रोसीडिंग्स अलग अलग है और दोनों में जो फैक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो फैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि कौन से फैक्ट्स के अकॉर्डिंग वो चीज लीगल प्रोसीडिंग्स में जाएगी।
1: अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठी बात व्हाट्सएप पर सिर्फ 2-3 लोगों को बताता है तभी भी एक्शन हो सकता है?
0: देखिए पब्लिकेशन का प्रश्न और अन्य लीगल रिक्वायरमेंट फैक्ट्स के आधार पर देखे जाएंगे। अगर ऑडियंस की संख्या अकेला है तो निर्णायक फैक्टर, अगर मतलब एक ही आदमी है तो उसको हम कहते हैं कि भाई एक उसको हम नहीं मानेंगे डिफेमेशन, लेकिन अगर पब्लिक ग्रुप में आपने डाला है और व्हाट्सएप ग्रुप पे कई मेंबर्स हैं तो निश्चित तौर पे वो डिफेमेटरी प्रोसीडिंग्स का आपको सामना करना पड़ सकता है।
1: अगर आम नागरिक को मानहानि से बचाने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: देखिए पहली चीज तो आपको कोई भी स्टेटमेंट को फॉरवर्ड नहीं करना है ना, बिना किसी को जांचे परखे अगर कोई आपने डिफेमेटरी स्टेटमेंट देख लिया किसी के बारे में, कोई बात किसी ने अपशब्द लिखी और आपने उठा के उसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया, तो उस चीज को आपको नहीं करना है। बिना वेरिफिकेशन के किसी पर गंभीर आरोप ना लगाएं, सोशल मीडिया पर सोच समझ के लिखें और किसी विवाद या फैक्ट्स और एविडेंस के बिना आरोप को पब्लिक में ना कहें। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
1: ये तो है ही सर। और जो ये टॉपिक है हमारा बहुत ही अच्छा रहा है और हमारे श्रोताओं को भी पता चला है कि भैया हम किसी के बारे में अपशब्द बोल देते हैं, मतलब किसी की तारीफ भी करते हैं और उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती है।
0: जी बिल्कुल ठीक।
1: तो मुझे नहीं पता था कि भैया कानूनी तौर इसके लिए किया जा सकता है, कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। तो सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूंगी, आखिरकार रेपुटेशन को लेकर किसी को नुकसान पहुंचाया जाए तो क्या करना चाहिए? रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया हो तो क्या कर सकते हैं?
0: देखिए किसी ने अगर आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है तो सबसे पहले तो आप एविडेंस इकट्ठे करिए, उसे सुरक्षित करिए, गुस्से में ना आए, उसकी जवाबी उसके पोस्ट का जवाब ना बिल्कुल भी, और फैक्ट्स के अनुसार उचित लीगल रेमेडी जो भी है वो क्वालिफाइड लॉयर से मिलकर आप सलाह लें, ठीक है। तो ऐसा ना करें कि अगर उसने आपको एक गाली बक दी तो आप 4 गाली उसको भी फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप दे दो, आप उसका स्क्रीन शॉट लीजिए, उसकी डिटेल पूरी लीजिए और उस बात को लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू अपने एडवोकेट को बताइए, उसको लीगल नोटिस भेजिए, देन आफ्टर आप कंप्लेंट केस फाइल करके उसको पनिश कराइए।
1: सर आपने जैसे बोला कि गाली दिया उसने सामने वाले, तो क्या जब सामने वाले गाली दे रहा है तो क्या अगर दूसरा व्यक्ति भी गाली से ही रिप्लाई कर रहा है तो दोनों के ऊपर केस?
0: हाँ तो डिफेमेशन दोनों तरफ से बन सकता है। आपने भी तो वही काम कर दिया जो उसने करा, तो आपने उसमें डिफरेंस क्या रह गया फिर?
1: जी बिल्कुल करेक्ट।
0: तो कोर्ट आपको रिलीफ क्यों देगी फिर, जब आपने उसका जवाब दे दिया तो कोर्ट में आप किस मुंह से कह सकते हैं कि मेरा डिफेमेशन हुआ है? तो डिफेमेशन तो तब हुआ ना जब उसने आपका डिफेमेशन किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आप शांत बैठे हुए हैं, तो आप अपनी लीगल लिमिट्स जो आपकी लीगल बाउंड्रीज है उसको समझिए, है ना, उसके हिसाब से ही आप जो है व्यवहार करिए। अब ये नहीं कि आपने अगर जो है किसी ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में गाली दे दी एक, तो आपने तो उसको 10 बातें लिख के भेज दी, आप पे ऊपर भी डिफेमेशन हो सकता है।
1: सर मान लीजिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, आमने सामने हम बात कर रहे हैं, आमने सामने गाली दे रहे हैं, तो मतलब हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि हमने इसके बारे में कुछ
0: कैटेगरी में नहीं आएगा ना, फिर तो आपकी पर्सनल एक जो है गॉसिप हो रही है ना बंद कमरे में।
1: ओके ओके,
0: डिफेमेशन तब होगी जब उस इमेज से तीसरे आदमी आपकी इमेज का आपको नुकसान पहुंच रहा है।
1: मतलब प्रूफ होना चाहिए तभी।
0: बिल्कुल प्रूफ होना चाहिए, कोर्ट में हर चीज प्रूफ पे ही एविडेंस पे ही डिपेंड करती
1: है। चलिए इस चीज का तो भाई कंफर्म हो गया कि अगर आपके पास प्रूफ है तो देखिए भैया आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसने कैसे बोल दिया, तो बिल्कुल आप जाइए और केस करिए। बाकी इस चीज के बारे में मुझे भी आज ही पता चला है, आई होप कि आपको भी आज ही पता चला होगा। तो आप किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले, अपशब्द बोलने से पहले एक बार नहीं हजार बार सोचेंगे कि भैया आगे एक्शन भी लिया जा सकता है आप सभी के लिए। तो सर एक छोटा सा मैसेज।
0: देखिए मैसेज बस यही है कि आप लोग जो है अपने लीगल राइट्स को जाने, ठीक है, और कभी भी किसी से कोई भी ऐसा डिफेमेशन का काम ना करें, कोई भी पोस्ट को बिना देखे आप आगे फॉरवर्ड ना करें, और अपने जब आपको लीगल राइट्स बताओगे तो निश्चित तौर पे आपके व्यवहार में वो चीजें आएंगी, आप क्राइम भी नहीं करेंगे और आप सुधरेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे।
1: ये तो है।
0: और जो है ऐसी हमारा कम्युनिटी रेडियो 89.6 आप सुनते रहिए
1: और से यही निवेदन करेंगे कि आते रहिए।
0: मैं तो हर बार ही आऊंगा जब आप बुलाएंगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम श्रोताओं अब हम यहाँ से लेते हैं जाने की इजाजत। बाकी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा है, क्योंकि आप सभी के लिए हम टॉपिक लेकर आते हैं रहते हैं अलग अलग टॉपिक। बिल्कुल सर सही है ना?
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं वेट करता हूँ कि कब जो है आपका ये लीगल टॉक शो आप आए और आप मेरे को इनवाइट करें, मैं कोई अच्छा सा नया टॉपिक अपने जो हमारे लिसनर्स हैं 89.6 कम्युनिटी रेडियो के उनको एक नई जानकारी उन्हें मिले।
1: जी बिल्कुल ये तो सही कहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे, करेंगे ढेर सारी बातें।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: डिसाइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी और वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
4: देखिए मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
1: सही
4: कहा। तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
4: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
4: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
1: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
4: ये आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो बात जो अदालत ने जो बात कह दी है आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
1: शो आगे बढ़ते हैं यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
4: देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना अगर सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है तो, लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
1: सुना सकती है, बिल्कुल
4: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
1: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
4: देखिए अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकते। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पे कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
1: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
4: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है ये भारत में, कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडिमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
1: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे?
4: हाँ, अलग अलग, हर रिट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रिट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पे जो हैबियस कॉर्पस रिट होती है ये रिट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको।
1: ओके,
4: थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पे रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके लिए इसमें विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये इस सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाईकोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पे बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है
1: या नहीं है।
4: तो मुख्यतः ये 5 रेट होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते।
1: अंत में सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
4: देखिए, कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है। हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ
1: बिल्कुल।
4: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन्स को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स
1: हैं। बिल्कुल सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
4: मेरे को मानतोबादी एक यूनिवर्सिटी से मिली थी और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में मानतोबादी मिली हुई।
0: वैसे
4: बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और एलएलबी मेरा है और आई एम परसुइंग एलएलएम।
1: तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
4: देखिए, बाकी सब तो ठीक है। मेरा वो बेसिक जो है, मेरा खुद का ड्रीम था, मुझे एमकॉम करना है, उसके बाद मेरे को एमबीए करना है, लेकिन एलएलबी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
1: हाँ सर, वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
4: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में, किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कंप्लेंट करी थी।
1: ओके।
4: और वो फेक कंप्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल इथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी। और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को, मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं मैं इसको।
5: बिल्कुल, क्या बात,
4: क्योंकि इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
5: बिल्कुल,
4: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा, मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में।
5: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।

0: छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
1: और कहते हैं ना सर, एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो, तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है,
0: मिलती है। और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, सही।
0: मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में, आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हम ना वहाँ हार मान लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल
0: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिंदगी, वो गाना ना, जीवन चलने का नाम चलते रहना है सुबह शाम।
1: बिल्कुल,
0: तो बस यही लाइफ।
1: सर किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। किताबें ही आपकी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहा आपने।

0: आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया, अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधन की एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन।

एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर

0: नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केंदुझर में जोड़ा के पास दानासला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
4: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
5: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
6: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
5: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
7: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
5: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुम कल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
3: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
4: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए 7 अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए 7 अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं लेकर शो यानी कि महिला मंच, जहां हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। और मैं हूं आरजे रीना और मेरे साथ है आरजे खुशी, हम दोनों साथ में ही आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महिला मंच शो में महिलाओं में बढ़ता वजन और खानपान। ये वजन अचानक नहीं बढ़ता, वजन तो धीरे धीरे बढ़ता है। कभी आईने के सामने खड़े होकर आपने खुद को कहा है, अरे यार वजन इतना कैसे बढ़ गया? कपड़े पहले जैसे फिट नहीं आते, सीढ़ियां चढ़ते हुए पहले से ज्यादा थकान, और फिर सबसे पहला फैसला बस अब खाना कम करना है। हर कोई यही सोचता है अपने मन में कि बस खाना कम कर दो तो हमारा वेट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बहनों जरा रुकिए, क्या वजन बढ़ने की वजह सिर्फ खाना है? क्योंकि एक महिला के जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव होता है। उम्र बढ़ती है, हार्मोन बदलते हैं, शादी के बाद रूटीन बदलता है, प्रेगनेंसी आती है, बच्चों की जिम्मेदारी आती है, काम का स्ट्रेस आता है, और इन सब के बीच हम अक्सर अपने शरीर को आखिरी नंबर पर रख देते हैं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वजन कम करो, आज हम समझेंगे कि वजन बढ़ने से पहले हमारा शरीर हमें कौन कौन से संकेत देते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है, क्या सच में कम खाना ही वजन घटने का रास्ता है? सो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो खुशी तुम क्यों बैठी हो, बोलो तुम भी।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और सभी को ये कंफ्यूजन रहता है एवरीवन कि खाना कम खाएं या खाना सही खाएं। बहनों तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि वजन बढ़ना और हमने क्या किया, रोटी कम, चावल बंद, मिठाई बंद, और कभी कभी तो हम खाना ही छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, हमारा शरीर कोई मोबाइल नहीं है कि बैटरी कम हुई तो बस स्विच ऑफ कर दिया। शरीर को एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और वो भी हर दिन। अक्सर हम सोचते हैं जितना कम खाएंगे उतना जल्दी वजन कम होगा, लेकिन असल बात ये है कि हम क्या खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं ये समझना ज्यादा जरूरी है। एक महिला सुबह से रात तक घर संभालती है, नौकरी करती है, बच्चों को देखती है, ऐसे में शरीर को सही न्यूट्रिशन देना जरूरी है। तो आज से एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन, कि अपने प्लीज से पूछे क्या मेरा पेट सिर्फ भरा हुआ है या मेरे शरीर को पोषण भी मिल रहा है। और यहीं से हमारी अगली बात शुरू होती है, क्योंकि कई बार समस्याएं खाने की मात्रा में नहीं होती, समस्याएं हमारी प्लेट में छिपी होती है। तो दोस्तों, अब हम अपने प्लेट को थोड़ा गौर से देखेंगे और शायद आपको अपनी

0: रोज की एक ऐसी गलती दिखाई दी जाए जिस पर आपने कभी ध्यान ही ना दिया हो।
1: आपकी प्लेट क्या कहती है, बात इस टॉपिक पर करेंगे। आज रात का खाना खाते समय अपने प्लेट को जरा ध्यान से देखिएगा। रोटी या चावल तो है, लेकिन सब्जी कितनी है? दाल या कोई प्रोटीन वाली चीज है, सलाद है, और तेल कितना है? हम अक्सर कहते हैं मैं तो बहुत कम खाती हूँ, लेकिन अगर प्लेट में पोषण का बैलेंस नहीं है तो सिर्फ कम खाना ही सॉल्यूशन नहीं है। एक और बात, खाना खाते समय मोबाइल चलाना, टीवी देखना या जल्दी जल्दी खाना, इससे भी हमें ये समझ मुश्किल हो जाती है कि हम कब पर्याप्त मात्रा खा चुके हैं। तो अगली बार खाना खाते समय थोड़ा रुकिएगा, धीरे धीरे खाइए, खाना चबा कर खाइए और अपनी प्लेट को देखिए, क्योंकि हेल्दी ईटिंग का मतलब भूखे रहना नहीं, हेल्दी ईटिंग का मतलब है अपने शरीर को समझ कर खाना। लेकिन अब सवाल ये है कि खाना तो हम दिन में 3 बार खाते हैं, लेकिन बीच में जो छोटी छोटी चीजें खाते हैं उनका क्या? एक बिस्किट, एक नमकीन, एक कप चाय, यहीं से असली कहानी शुरू होती है।
0: और वो छोटी छोटी चीजें होती हैं चाय के साथ 2 बिस्किट को क्या आप पूरा खाना मानती हैं? शायद नहीं। शाम की थोड़ी सी नमकीन, अरे बस थोड़ी सी तो थी। किसी के घर गई तो मिठाई का एक टुकड़ा एक ही तो खाया, लेकिन यही थोड़ी थोड़ी अगर रोज होता रहे तो हमारी ईटिंग हैबिट्स का हिस्सा बन जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको मिठाई या चाय हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए, बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपनी आदतों को पहचानना है। अगली बार जब बिना भूख के कुछ खाने का मन करे ना, तो खुद से पूछिए मुझे सच में भूख लगी है या बस आदत है। और हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कभी कभी हमें भूख नहीं होती फिर भी खाने का बहुत मन करता है, क्यों? क्या इसका कनेक्शन हमारे स्ट्रेस और मोशन से भी हो सकता है? इसका जवाब अगले लिंक में आपको रीना जी देने वाली है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अभी आपको मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: खाने पीने के बात हो और मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ आपने गाना भी इतना जबरदस्त वाला सुना ना श्रोताओं। सो चलिए बात करते हैं, भूख पेट की है या मन की? कभी बहुत तनाव हुआ और अचानक मीठा खाने का मन किया हो, कभी किसी बात से परेशान होकर लगा हो चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं, इसे हम इमोशनल ईटिंग कह सकते हैं। यानी कई बार हम पेट की भूख से ज्यादा अपने इमोशंस की वजह से कुछ खाने लगते हैं। और महिलाओं की जिंदगी में स्ट्रेस की कमी तो नहीं, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की चिंता, नौकरी, परिवार, रिश्ते, कई बार महिला सबको संभालते संभालते खुद को अंदर का तनाव दबा लेती है और फिर बिना सोचे कुछ खा लेना आसान लगता है। तो अगली बार जब अचानक खाने की बहुत इच्छा हो सिर्फ 10 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मुझे भूख लगी है या मुझे आराम चाहिए? शायद जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन स्ट्रेस की बात निकलती है तो एक और चीज याद आती है, नींद, जो कि नींद बहुत मायने रखता है हमारे लाइफ में, क्योंकि कई महिलाएं तनाव तो झेलती है लेकिन आराम वो सबसे आखिरी में करती है। और नींद का हमारे ईटिंग हैबिट से क्या रिश्ता है इसके बारे में भी जानेंगे।
1: देखिए, नींद बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, और घर में सबके सोने का समय तय है, बच्चों का, पति का, ऑफिस का, लेकिन आपका नहीं। कई महिलाएं रात को सबसे आखिरी में सोती हैं और सुबह सबसे पहले उठती हैं और फिर दिन भर थकान रहती है। जब नींद पूरी नहीं होती हमारी एनर्जी, मूड और खाने की आदतों पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए हेल्थ का मतलब सिर्फ डाइट नहीं, खाना सही, मूवमेंट सही और नींद भी सही। आज रात एक काम कीजिएगा, सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अपने शरीर को आराम देने का मौका दे रही हूँ? क्योंकि शरीर दिन भर आपका साथ देता है, उसे रात में आराम देना भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बहनों, महिलाओं की जिंदगी में ना एक और चीज है जो धीरे धीरे शरीर को बदलती है, उम्र के साथ आने वाले हार्मोनल चेंजेस, और कई महिलाएं इसे सिर्फ वजन बढ़ गया समझकर छोड़ देती हैं।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, हार्मोनल का भी यही खेल है। महिला का शरीर बहुत खास है और जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर इसमें बदलाव आते रहते हैं, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, और इनमें स्टेजेस में हार्मोनल चेंज होते हैं और इनके साथ वेट, स्लिप और बॉडी शेप में बदलाव भी महसूस हो सकते हैं। इसीलिए हर बार वजन बढ़ने पर खुद को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बदलाव को सिर्फ हार्मोन्स कहकर छोड़ देते हैं। अगर वजन तेजी से बढ़ रहा हो, पीरियड्स में बदलाव है या कोई और परेशानी लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर से सलाह लेना ही समझदारी है, क्योंकि अपने शरीर को समझना कमजोर नहीं समझदारी है। और अब बात उस समय की जब बहुत सी महिलाएं कहती हैं, पहले तो मैं कितना भी खा लेती थी वजन नहीं बढ़ता था, अब थोड़ा खाती हूँ वजन बढ़ जाता है। आखिर उम्र के साथ ऐसा क्यों महसूस होता है?
1: उम्र के साथ बदलती जरूरतें, जो हमारी फीमेल से समय हमें सुनिए, वो जरा ध्यान से सुने क्योंकि आपकी ही बातें हो रही हैं इसमें। आपने अपनी माँ या किसी बड़ी बहन को ये कहते जरूर सुना होगा, हमारे जमाने में तो इतना खाती थी फिर भी मोटी नहीं होती थी। ऐसा महसूस होना कई महिलाओं में देखा जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी एक्टिविटी कम हो सकती है, शरीर की एनर्जी नीड्स बदल सकती हैं और हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। तो जो रूटीन 20 इयर्स की उम्र में ठीक था, जरूरी नहीं कि वो 40 या 50 में वही रहे। इसलिए उम्र के दोष देने के बजाय अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक खास पड़ाव है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद का समय, क्योंकि माँ बनने के बाद शरीर से लेकर रूटीन तक सब कुछ बदल जाता है और उसी समय महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत होती है दूसरों की सलाह की नहीं बल्कि सही जानकारी और सही केयर की।
0: माँ बनना जिंदगी का खूबसूरत पड़ाव है, लेकिन प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद शरीर को रिकवरी के लिए समय चाहिए। कई बार महिला बच्चे में इतना व्यस्त हो जाती है कि अपना खाना, आराम और हेल्थ पीछे छोड़ जाती है, और फिर कुछ समय बाद जब वजन कम नहीं होता तो वह खुद को दोष देने लगती हैं। अपने शरीर को थोड़ा वक्त दीजिए। सोशल मीडिया पर किसी और पोस्टम बॉडी देखकर अपनी तुलना मत कीजिए। हर महिला का शरीर अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है और हर रिकवरी में भी अलग है। इस समय जरूरत है बैलेंस न्यूट्रिशन, पर्याप्त आराम और अपनी स्थिति के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी की। और अगर आप इमोशनल है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद की बात से हमें एक और सवाल मिलता है, क्या घर की महिला सच में खुद की थाली पर ध्यान देती है?
1: और हमारी महिलाओं की ना एक बात बड़ी कहते हैं कि उनको ना शुरू से सिखाया जाता है कि आप सबका ख्याल रखो और जब आप सबका ख्याल रखेंगे तो सब आपसे खुश रहेंगे। और इसी चक्कर में वो क्या करती हैं, सबको खाना खिला देती हैं और सबसे लेट खुद खाना खाती हैं। सुबह सबसे पहले बच्चों का नाश्ता, फिर पति का लंच, फिर घर का काम, और जब खुद खाने की बारी आती है तो खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। फिर वो अभी कब दोपहर में बन जाता है पता ही नहीं चलता। कई महिलाएं पूरे घर का न्यूट्रिशन देखती हैं लेकिन अपनी प्लेट पर ध्यान नहीं देती। बच्चों को दूध चाहिए, पति को हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन खुद के लिए कभी बचा हुआ खाना, कभी जल्दी जल्दी खाना और कभी खाना स्किप कर देना। याद रखिए, अपने लिए खाना बनाना और समय पर खाना सेल्फिश होना नहीं होता है। अगर आप घर की जिम्मेदारी हैं, लेकिन आप खुद भी एक इंसान हैं, आपका शरीर भी केयर डिजर्व करता है। अब बात करेंगे उस चीज की जिसे हम अक्सर बस पेट निकल आया कहकर हंसकर टाल देते हैं, लेकिन क्या पेट की बढ़ती चर्बी को इतना हल्के में लेना चाहिए?
0: मुझे तो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, है ना?
1: Exactly.
0: क्योंकि हमारा अगर मोटापे की शुरुआत की बात करूँ तो पेट से ही शुरू होता है। कभी कपड़े पहनते हुए आपने कहा है बस पेट थोड़ा बढ़ गया है, वहीं से असली शुरुआत होती है। अगर वहां पर आपने कंट्रोल कर लिया खुद पर तो ठीक है, अदरवाइज वो चर्बी और भी ज्यादा बढ़ती जाती। हम अक्सर इसे सिर्फ लुक्स का मामला समझते हैं, लेकिन शरीर में खासकर कमर के आसपास बढ़ती अतिरिक्त चर्बी को सिर्फ सुंदरता के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ओवरऑल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सिर्फ वजन मशीन पर नंबर मत देखिए, अपनी वेस्ट एक्टिविटी, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर वजन लगातार बढ़ रहा है या आपको कोई दूसरी परेशानी भी महसूस हो रही है तो मेडिकल एडवाइस जरूर लें। लेकिन वजन की बात करते करते हम एक्सरसाइज को कैसे भूल सकते हैं? अब महिलाएं कहेंगी हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम ही कहाँ है। तो देखिए, टाइम आपको खुद निकालना पड़ता है। टाइम कभी आपसे ये नहीं कहता कि मैं 6 बज गया हूँ, उठ जाओ एक्सरसाइज करो। वो खुद आपके लिए और आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा।
1: जिम नहीं तो क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ही फिट रह सकते हैं, आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज शब्द सुनते ही ना कई महिलाओं के दिमाग में जिम और भारी वर्कआउट आ जाता है और फिर मन कहता है मेरे पास तो इतना टाइम कहाँ है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है, दिन में पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, लगातार घंटों बैठे रहने से बचना चाहिए और अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक्टिव रहना भी मूवमेंट का हिस्सा है। जरूरी है ये कि आपकी एक्टिविटी आपकी उम्र और आपकी हेल्थ के हिसाब से हो। शुरुआत छोटी रखिए लेकिन उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। और एक बात, एक्सरसाइज को सजा मत समझिए, आप अपने शरीर को पुश करने के लिए नहीं मजबूत बनाने के लिए मूव कर रही हैं। लेकिन अब आते हैं उन डाइट्स पर जो इंटरनेट पर देखकर हर महिलाएं सोचती हैं शायद यही मेरे लिए भी काम कर जाए, क्या हर वायरल डाइट हमारे लिए सही होती है? इसका जवाब हम सुनने वाले हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अब आप भी जानने के लिए तैयार है ना? क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया तो हर कोई चलाता है ना और उस पर अच्छी अच्छी रील्स सबको देखनी पसंद होती है और कुछ भी हेल्दी डाइट आती है तो हमें लगता है हाँ यार ये तो मैं भी बनाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। लेकिन दोस्तों पता है, जरूरी नहीं है कि वो डाइट अगर उस पर काम करी तो वो हम पर भी काम करेगी। हर किसी की बॉडी अलग होती है एंड इसीलिए एवरीवन, जरूरी नहीं है कि जो मैं खाऊं वो मेरे आपके लिए भी अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको ना शूट करे। तो आगे हम जानेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फिर आपसे बात करते हैं।

0: क्या बात है जी, शानदार गाने बाद अर्जुनी आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं। और जैसे कि खुशी ने बताया ही है कि इंटरनेट वाली डाइट, अक्सर इंटरनेट वाली डाइट हर किसी के लिए सूटेबल भी नहीं होती है, क्योंकि खुशी ने बताया दिया है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है और जरूरी नहीं है कि जो आप खा रहे हो दूसरे को भी वही सूट हो, दूसरा एक्सरसाइज वो कर रहा है तो वही के लिए भी बेनिफिट हो और अभी वैसा ही एक्सरसाइज करने लग जाओ। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो वायरल पे नहीं जाना चाहिए, आपको सोच समझ कर करना है। आजकल फोन देखते ही डाइट की दुनिया सामने आ जाती है, कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ, कोई कहता है इतने घंटे खाना बंद करो। लेकिन जरा सोचिए, जिस महिला के लिए वो डाइट बनी है, क्या आपका शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है? हर महिला की उम्र, एक्टिविटी, लाइफस्टाइल और हेल्थ नीड अलग हो सकती है, इसीलिए किसी की डाइट देखकर उसे कॉपी करना हमेशा सही नहीं है। खासकर प्रेगनेंसी, ब्रेकफास्टिंग या किसी मेडिकल कंडीशन में बिना एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, हमेशा एक्सपर्ट से ही सलाह ले। देखी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करे। वजन कम करना तो शॉर्टकट के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है, ऐसी आदत बनाना जिसे आप लंबे समय तक निभा सके। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वजन कम करने के लिए हम अपनी पसंद की सारी चीजें छोड़ पाएंगे? उसके बारे में सोचना और कहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी होता है कि आपकी जो बहुत अच्छी फेवरेट डिश होती है उसको हमें छोड़ना भी पड़ता है। अगर आप अपनी रूटीन को, अपने आप को हेल्दी से मतलब ठीक करना चाहते हो तो थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ता है,
1: कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है यार। हेल्दी रहने का मतलब जिंदगी से स्वाद निकाल देना नहीं है। अगर आपने तय कर लिया है कि आप कभी मिठाई नहीं खाऊंगी, कभी अपनी पसंद की चीज नहीं खाऊंगी, तो शायद कुछ दिन बाद वही चीजें और ज्यादा याद आएंगी। बेटर ऑप्शन ये है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को बैलेंस करें, घर का खाना ज्यादा खाएं, प्रोटीन पर ध्यान दें, रोज की छोटी छोटी अनहेल्दी आदतों को पहचानें और अपनी पसंद की चीजों को समझदारी से लें। और सबसे जरूरी, एक दिन कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है तो ये मत सोचिए कि अब तो सब खराब हो गया। एक मील आपकी पूरी जर्नी तय नहीं कर सकता, अगला मील बेहतर हो सकता है। और अब बात उस चीज की है जिसे हम अक्सर वजन से भी ज्यादा गंभीरता से ले नहीं लेते, खुद को लेकर हमारी सोच।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा, हमारी सोच पर डिपेंड होता है हर चीज। आईना आपका दुश्मन नहीं है। अक्सर हम जब भी आईने के आगे खड़े होते हैं ना, तो खुद से यही कहते हैं, यार मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, और अपने आईना को ही दुश्मन समझ लेते हैं और उसे देखना ही बंद करते हैं। फिर तो छोटे छोटे मिरर में ही देखकर अपना मेकअप कर लेते हैं, है ना? कभी आईने में देखकर खुद को कहा है मैं कितनी मोटी हो गई हूँ? अगर कहा है तो आज खुद से थोड़ा प्यार से बात करके देखिए। आपका शरीर सिर्फ आपकी बॉडी शेप नहीं है, इसी शरीर ने आपको कितने साल संभाला है, काम किया है, परिवार संभाला है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी झेली है, बीमारियों से लड़ा है, थककर भी आपको आगे बढ़ा है। तो बदलाव करना है तो जरूर करिए, लेकिन खुद से नफरत करके नहीं। हेल्थ का मतलब सिर्फ पतला दिखना नहीं है, हेल्थ का मतलब होता है खुद को बेहतर महसूस कराना, एक्टिव रहना और अपने शरीर का ध्यान रखना। और अब सवाल ये है, अगर आज से शुरुआत करनी है तो क्या करें? क्या एक साथ 10 चीजें बदलनी होगी?
1: नहीं नहीं बाबा, 10 चीजें क्यों बदलूंगी, आप एक ही बदलाव काफी है। आज से अपनी जिंदगी में 10 नियम मत बनाइए, बस एक चीज सुनिए। शायद सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना, शायद जो रोज थोड़ा सा चलना, शायद चाय बिस्किट की आदत कम करनी है। जब एक आदत दिख जाएगी तब दूसरी आदत जोड़िएगा, ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा बदलाव अक्सर छोटी छोटी आदतों से ही बनता है। और अगर आपका वजन लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है या साथ में दूसरे सिम्टम्स भी हैं, तो खुद से डाइट एक्सपेरिमेंट करने की बजाय डॉक्टर से बात करना बेहतर है। लेकिन एक बात और एक चीज है जिसे महिलाएं अक्सर भूल जाती हैं, पानी। जी हाँ, वो बहुत जरूरी है। क्या आप सच में पूरे दिन पर्याप्त पानी पीती हैं?
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, अक्सर हम इसको ही भूल जाते हैं।
1: लेकिन मैं नहीं भूलती हूँ।
0: मैं भी नहीं भूलती हूँ यार। मैं भी पी लेती हूँ पानी,
1: एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहते हैं।
0: हाँ, मैं देखती हूँ ये बोतल दोबारा भरने गई है, मैं भी फटाफट खाली करती हूँ, दोबारा भर के लेकर आती हूँ। तो मतलब पानी देखिए, एक टाइम के लिए आप खाना, जहाँ आपको दो रोटी भूख है एक रोटी खाइए, लेकिन पानी दो बोतल पीजिए, क्योंकि पानी आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है और फेस के लिए भी अच्छा होता है। अगर जितना पानी पियेंगे फेस पर ग्लो भी उतना ही ज्यादा आएगा। सुबह से शाम तक हम कितने काम कर लेते हैं लेकिन पानी पीना याद नहीं रहता। एक बार फोन देख लिया, बच्चे को स्कूल भेज दिया, काम में लग गए और पूरा दिन निकल गया, यही रहता है। अपने शरीर की बेसिक जरूरतों को इग्नोर करना हमारी आदत बन जाती है। पानी की जरूरत हर व्यक्ति में अलग हो सकती है और मौसम, एक्टिविटी और हेल्थ के हिसाब से भी बदलती है, इसीलिए अपने शरीर के सिग्नल्स पर ध्यान देना जरूरी है। अगर किसी मेडिकल कंडीशन में फ्लूइड इंटेक को लेकर डॉक्टर ने कोई अलग सलाह दी है तो उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का असली सवाल पानी से भी बड़ा है, हम अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनते कितनी बार हैं? क्योंकि शरीर बार बार संकेत देता है, बस हम अक्सर उन्हें कल देंगे कहकर टाल देते हैं और यही हमारे लिए गलत हैबिट बन जाता है।
1: शरीर की सुनिए, थकान है फिर भी काम, नींद आ रही है फिर भी मोबाइल, भूख लग रही है फिर भी पहले सबको खाना, स्ट्रेस है फिर भी चुप, और फिर एक दिन हम कहते हैं पता नहीं मेरा शरीर इतना बदल क्यों गया है। शरीर अचानक नहीं बदलता, हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती हैं। इसलिए आज से अपने शरीर को सुनना शुरू कीजिए। अगर कोई परेशानी लगातार बनी हुई है उसे इग्नोर मत कीजिए, जरूरत पड़े तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने लिए समय निकालना लग्जरी नहीं है, लेकिन क्या हम सच में अपने लिए रोज थोड़ा समय निकाल सकते हैं?
0: बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर अपने हैबिट को खुद को चेंज करें तब।
1: खुद को इम्प्रूव करना है हमें तो हम हर चीज कर सकते हैं रीना।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ श्रोताओं, आज का चैलेंज बहुत आसान है। अगर घर में किसी एक मील के समय सिर्फ अपनी खाने पर ध्यान दीजिए, मोबाइल एक तरफ रखिए, जल्दी जल्दी मत खाइए, खाना को हमेशा चबाल कर खाना चाहिए, अपनी प्लेट को देखिए और खुद से पूछिए मैं अपने शरीर को क्या दे रही हूँ। फिर रात को सोचिए आज मैंने अपने लिए क्या किया, शायद आपने थोड़ा वॉक किया हो, शायद समय पर खाना खाया हो, शायद पानी ज्यादा पिया हो, या शायद पहली बार खुद को आराम दिया हो। यही छोटी चीजें हमें अपने शरीर से जोड़ती हैं। और अब इस पूरे सफर का आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं, ऐसी बात जो मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपने दिल में रखे और अपने आप से वादा करे। तो खुशी बताइए जरा।
1: तो एवरीवन, आप भी हमारे लिए जरूरी हैं और हमारी हेल्थ भी। आज हमने सिर्फ वजन की बात नहीं की, पता है आपको, हमने बात की है अपनी प्लेट की, अपनी नींद की, स्ट्रेस की, हार्मोन्स की, प्रेगनेंसी के बाद शरीर की, उम्र के साथ होने वाले बदलाव की, और सबसे जरूरी अपने लिए समय निकालने की। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो खुद को दोष मत दीजिए, पहले समझिए कि आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, अपनी आदत को देखिए, छोटे बदलाव कीजिए और जरूरत हो तो डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लीजिए। क्योंकि बहनों, वजन आपका पूरा परिचय नहीं है, आप सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहन हैं, एक पत्नी हैं, कामकाजी महिला हैं, और इन सबसे पहले आप खुद भी एक इंसान हैं जिसका ख्याल रखा जाना जरूरी है। तो आज घर जाते हुए खुद से एक वादा जरूर कीजिएगा, मैं सबका ख्याल रखूंगी, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। सुनते रहिए ऐसे ही हमारा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए। सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है यार जरीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 3:10 हो चुके हैं। हेलो फरमाइश शो है वो शुरू हो चुका है। तो आपने क्या करना है, यानी कि घर बैठे बैठे या फिर आप ट्रैफिक में हैं या सोच रहे हैं कि इस बरसात के मौसम में अपने पसंद का कोई गाना सुन ले, तो उसके लिए आपको हमें क्या करना है जी, कॉल करना है। और हमारा नंबर है 9837896896 पर आप हमें कॉल करके अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से, यानी कि फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून जीना मैम।
0: जी गुड आफ्टरनून सर, क्या नाम है आपका?
1: मैम शेरपुर माफी से सालिम अंसारी बात कर रहे हैं मैम।
0: जी सर बताइए कैसे हैं?
1: मैम हमारे हालचाल बहुत बढ़िया, सुबह से घर पे लेट हुए हैं, बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं मिला और लगातार ऐसा मरादा सुना मगर।
0: हाँ क्योंकि बारिश आज लगातार हो रही है ना।
1: हाँ बिल्कुल नहीं रुकी है हमें तो बिल्कुल भी।
0: हाँ जी हाँ जी, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको इस वेदर में?
1: मैम वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो खुद को अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में दूसरों की मजबूरियाँ होती है, वो बेचारे घर पे होके होंगी
0: वो, और सबसे बड़ी बात किसान,
1: हाँ वही तो सब
0: क्योंकि
1: किसानों की।
0: हाँ जो धान है खेतों में वो पक गई है ना फसलें, तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है इस बारिश में।
1: वही तो बहुत सारा नुकसान है और इससे ठंड भी आनी है।
0: जी जी बिल्कुल, ठंड ऐसा बस ये 2 दिन की बारिश है फिर तो वैसा ही मौसम आपको मिलेगा।
1: हाँ वही तो परसों तक किया। हाँ
0: हाँ बताइए कौन से गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैम बारिश पड़ रही है तो बारिश के मौसम का गाना, बरसते पानी का मौसम कुछ और होगा।
0: ओके किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: उवैस खान है, रूहानी है और एफएम सुनने वाले और आप।
0: चलिए सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: ओके मैम थैंक यू।
0: ओके वेलकम। तो आप भी कॉल करते रहिए। और आज मुरादाबाद का टेम्परेचर भी 21 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि कॉल करते रहिए और अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय करते रहिए। फिलहाल जो इन्होंने गाना बताया है, यानी कि बारिश के मौसम में मज़ा, मतलब जो भी गाना है आप इस गाने को एंजॉय करिए। लौट कर आते हैं हम आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और बारिश लगातार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और साथ ही साथ आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं। समय की बात करूँ तो 3:18 हो चुके हैं, गुड वाली आफ्टरनून है। आप हेलो फरमाइश में कनेक्ट हैं। फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: जी मैम, आदाब
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, खैरियत से है मैम।
0: क्या नाम है सर आपका?
1: मैम मैं आरिफ खान मंसूरी बात कर रहा था, भोपाल एमपी से।
0: ओके सर, और बताइए फैमिली में सब कैसे हैं?
1: मैम फैमिली में सब खैरियत से हैं, सब ठीक है, बढ़िया है सब लोग।
0: जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम आज आप मुझे सुनवा दीजिए अखियों के झरोखे से टाइटल सॉन्ग।
0: ओके सर, किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: हाँ मैम, हमारे मित्र हैं गजराज दोदी जी हैं, कैलाश राजपूत हैं और सारू नूर अंसारी जी हैं।
0: ठीक है जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है
1: मैम।
0: ओके चलिए हम ये गाना सुनवाते हैं अखियों के झरोके से, बहुत ही शानदार गाना है। सो इस गाने को आप एंजॉय करिए और यूं ही बने रहिए अपने शहर के यानी कि रेडियो के साथ। ढेर सारा प्यार, और ये गाना बहुत ही शानदार है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
4: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
3: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है। आर्जेरिना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओ फरमाइश, हेलो फरमाइश हो। और समय की बात करूँ तो 3:27 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 26 सितंबर और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। अखियों के झरोके टाइटल ट्रैक आपने गाना एंजॉय किया है, जो कि 1978 में ये मूवी रिलीज हुई थी। और इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
6: हेलो, नमस्कार
5: जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका सर?
6: मेरा नाम अफसर अली है जी।
5: कहाँ से बात कर रहे हैं?
6: मैं मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, गोविंदपुर खुर्दू से बोल रहा हूँ।
5: जी जी जी, सब फैमिली में बढ़िया है सर?
6: हाँ, फैमिली में बढ़िया है। आप सुनवाइए मैम।
5: बहुत बढ़िया। क्या है? हाँ जी हाँ जी, क्या काम करते हैं?
6: ये आशियाने बनाते हैं मकान, इधर गोरखपुर बस्ती।
5: अच्छा, गोरखपुर बस्ती।
6: जी हाँ
5: जी, चलिए बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
6: इस समय घर पे आए हुए थे।
5: अच्छा अच्छा।
6: हाँ, बारिश का मौसम हो रहा, अकेले लेटे थे, प्रोग्राम सुन लिया था आपका।
5: जी जी, कैसा लगता है सर हमारा प्रोग्राम आपको सुनना?
6: बहुत बढ़िया लगता है, हम तो सुनते रहते हैं, 7-8 लोग हैं।
5: अच्छा अच्छा।
6: हाँ, ग्रुप में।
5: जी जी,
6: रोज सुनते हैं सब।
5: चलिए बहुत
6: लड़के, अच्छा। लड़के सुनते रहते हैं सब, फोन करते हैं कोई अपने मोबाइल से, कोई अपने मोबाइल से।
5: जी जी।
6: तो आज मैं घर पे आया हुआ था तो मैंने अपने नंबर से लगा दिया।
5: बहुत अच्छी बात है सर। तो सर बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
6: मैम जी, अपनी पसंद का सुनवा दो कोई, बारिश के मौसम का।
5: अच्छा अच्छा, अपनी पसंद का सुनवा दो।
6: बढ़िया गाना सुनवा दो।
5: ठीक है ठीक है सर, हम आपको गाना सुनवाते हैं बारिश का मौसम का। ठीक है
6: जी, ठीक है।
5: ओके सर, तो चलिए श्रोताओं हम गाना सुनते हैं, बारिश के मौसम का ही गाना सुनते हैं, शानदार वाला गाना सुनेंगे। और आपसे बस यही कहेंगे कि कॉल मिलाते रहिए, हमारा नंबर है 9837896896 पर कॉल करके आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कॉल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक आप कॉल नहीं करेंगे गाना कैसे सुन पाएंगे। और हमारा नंबर है 9837896896 पर आपने कॉल करना है और आप अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने गाना बता, मेरी पसंद का ये जो गाना है इसको सुनते हैं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है अलका याग्निक जी की आवाज में। थम के बरस मेरे महबूब के पास जाना है, अगर मैं देर से पहुंची तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा, अगर गुस्सा करेगा तो आप एक गर्मा गर्म चाय पिला दीजिएगा, बस गुस्सा शांत, क्योंकि बरसात के मौसम में अदरक वाली इलायची वाली चाय पीने पर ही मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, यानी कि रिफ्रेश हो जाता है, वो दोबारा रीटेक होकर यानी कि दोबारा काम करना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ आप हेलो फरमाए शो में कनेक्ट है आर्जरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो समय हो चुका है यहाँ पर यानी कि 3:37, और चलिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: जी मैम, नमस्ते।
0: जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, बस मौसम आज बहुत ज्यादा खराब हो गया है।
0: जी जी,
1: आज काम पे भी नहीं गए,
0: बारिश जाने नहीं दे रही है ना, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं।
1: बस घर पे चाय बनवा गए और चाय पी के आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: अच्छा, बस खाली चाय पिया सर, आपने कुछ और भी बनवा लेना चाहिए था।
1: अरे ना, खाना पाना खा गए, ऊपर से चाय पी है, ठंड लग रही है, क्या करा जा रहा है, चाय पी रहे हैं वो
0: है। अच्छा अच्छा, ठंड लग रही है, मुझे लग रहा है कि ठंड बढ़ जाएगी अब।
1: बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बारिश हवा, ठंड के साथ साथ हवा भी चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही बारिश।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जी जी जी, तो बताइए आप अपने बारे में जरा हमारे श्रोताओं को, क्या करते हैं आप?
1: काम हम जो है मजदूरी करते हैं, पहले तो जो है हम ट्रांसपोर्ट से माल डालते हैं।
0: ओके सर।
1: हाँ जी, काम है हमारा।
0: जी बताइए कामिल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज मौसम को देखते हुए मुझे मौसम का ही गाना है सुनना है कि सावन में बादलों की नियत बड़ी खराब है, ये मोहम्मद सिंह की आवाज में गाना है।
0: जी जी जी,
1: सिकंदर और माधुरी जी
0: दीक्षित है। हाँ जी हाँ जी जी जी जी जी,
1: चल कुछ नाम लेना चाहता हूँ अपने फैमिली के।
0: जी बिल्कुल, नाम ले लीजिए।
1: ये हमारे बराबर में अमन भाई बैठे हैं पास में, और एक हमारी सीमा बहन है,
0: चलिए इन्हीं के साथ आपको हम गाना सुनवाते, ठीक है
1: जी? ओके ओके मैम।
0: ओके सर, तो चलिए गाना सुनते हैं। सावन के बादलों की नियत बदल गई बरसात को देखकर, सो इस गाने को एंजॉय करेंगे। और आप भी कॉल करते रहिए, नंबर है 9837 8968 96।

0: के साल जो पानी नहीं शराब,
1: पानी नहीं शराब।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
5: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती हैं लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है। आर्जरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता हो, और समय की बात करूँ तो 3:00 यानी कि 47 मिनट हो चुके हैं, और आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है आज की तारीख यानी कि 26 सितंबर। और बारिश यानी कि बाहर का जो मौसम है बहुत ही धाकड़ वाला मौसम हो रहा है भैया, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, यानी कि कंटिन्यू बारिश हो रही है, और ये बारिश कल तक भी ऐसे जारी रहने वाली है। तो देखिए, घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर ज़्यादा काम है, ज़रूरी काम है, तभी आप घर से बाहर निकले, अदरवाइज़ घर से बाहर ना निकले। और साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि पुराना मकान है और इसमें दरारें आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि उस मकान को छोड़कर आपको सुरक्षित जगह पर यानी कि अपने रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर के साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ भी हो सकता है, और खुले एरिया में जाने से बचे। और साथ ही साथ यूं ही आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फाइनली यानी कि अब हम अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: जी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? बरसात हो रही है मुरादाबाद में ज्यादा ही आज।
0: बारिश हो रही है मुरादाबाद में ज्यादा ही। बताइए क्या नाम है सर आपका?
1: जी मैं मुरादाबाद लैंड पास से पिंटू बात कर रहा हूँ, आपका रेगुलर होता है मैम।
0: जी पिंटू जी, बताइए फैमिली में सब कैसे हैं?
1: मैम एकदम ओके फाइन, सब ठीक है। आप बताएं, आपके परिवार में स्टाफ में कैसे हैं?
0: सब बहुत बढ़िया है। क्या काम करते हैं आप पिंटू जी?
1: जी मेरा छोटा मोटा अपना काम है मैम, मैंने बताया था आपको।
0: ओके ओके ओके, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: मैम गाना वो मेल और फीमेल दोनों की वॉइस में है। जी जी, आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की से बरसात आ गई।
0: जी
1: और जी मैम मैं एक शायरी आज करना चाहता हूँ।
0: ओके ओके, शायरी आज करना चाहते हैं, बिल्कुल बताइए
1: जी मैम। के यू ना होनिया सबको उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो।
0: ओके,
1: जिंदगी क्या है खुद ही समझ में आ जाएगी, बस बारिश में पतंगे उड़ाया करो।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार आपने गाना ये शायरी पेश की है
1: जी मैम, थैंक यू वेरी मच
0: जी। तो चलिए हम आपको ये गाना सुनवा देते, ठीक है?
1: ठीक है मैम, धन्यवाद।
0: ओके जी, शुक्रिया। तो चलिए ये गाना सुनते हैं, हल्की हल्की सी बरसात आ गई है। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप भी अगर गाना सुनना चाहते हैं तो हमें कॉल करिए, नंबर है 9837896896 पर आपने कॉल करना है, और आप अपने फेवरेट गाना एंजॉय कर सकते हैं।
2: The number you are trying to call is currently not reachable.
3: भैया ऑलरेडी 5 महीने हो चुके हैं आपके ब्रेकअप।

सनम बस तेरा प्यार ही मांगू। तो इस गाने को एंजॉय करते हैं और आप भी कॉल करते रहिए, नंबर है 9837 8968 96 पर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। हेलो फरमाइश शो में इवनिंग इसलिए क्योंकि भैया 4 बज चुके हैं, 4:02 हो चुके हैं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। तो आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉल करिए जी, क्योंकि कल संडे है और संडे को आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो आज आपके पास लकी चांस है, कॉल करके आप अपने फेवरेट वाला गाना इंजॉय कर सकते हैं। और अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी।
1: हेलो फरमाइश।
0: जी बोलिए, क्या नाम है? हेलो फरमाइश,
1: कैसी हैं मैम आप?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसी हो?
1: जी मैं बहुत ही अच्छी हूँ और आज आपसे बात कर रही थी, मैं और भी अच्छी
0: हूँ। चलिए, बहुत डबल खुशी दुगनी हो गई।
1: जी मैम।
0: क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैंने रामपुर कटरावा से बात कर रही हूँ।
0: जी जी।
1: और मैम कहते हैं कि रोते सबको हंसाना काम है मेरा, रोते सबको हंसाना काम है मेरा, गिरते मुसाफिर को उठाना काम है तेरा, और चांद सितारे करते हैं मुझसे बातें, इसीलिए तो क्षमा परवीन नाम है मेरा।
0: अरे अरे क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने शायरी पेश करी है। समा तो समा बताओ कौन सा गाना सुनोगी आप?
1: मैम जैसे रात से बहुत बरसात हो रही है अपनी यूपी में, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, तो क्यों ना बरसात से मिलता जुलता नगमा सुना जाए। मूवी का नाम रहेगा अंदाज और गीत के बोल रहे आएगा मजा बरसात का।
0: ओके किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: मैम इस मौसम में हम सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे अपना ख्याल रखें।
0: हाँ जी,
1: अपनों का ख्याल रखें और गर्मा गर्म चाय पीते रहें।
0: चाय बनाएंगे आप तभी तो पियेंगे। मैंने सुना है कि आप शायरी,
1: हम आपको चाय पिलाएंगे।
0: मैंने सुना है कि आप शायरी के साथ साथ चाय भी बहुत अच्छी बनाती हैं।
1: जी मैम, जब शायरी इतनी अच्छी कर सकते हैं तो चाय बना सकते हैं।
0: जी जी, हल्की फुल्की। ओके, यानी कि फुल्की मतलब पूरी भी बना लेती हैं आप। चलिए तो हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी?
1: मैं दो लाइनें कहना चाहूंगी बरसात के ऊपर।
0: जी जी बोलिए, अर्ज कीजिए।
1: मैं कहती हूँ कि आसमां से जमी की मुलाकात हो रही है, आसमां से जमी की मुलाकात हो रही है, सितारों की कलियों से बात हो रही है, और टूट कर रो रहे हैं किसी की यादों में हम, लोग कह रहे हैं कि बरसात हो रही है।
0: अरे अरे अरे क्या बात है, और सभी ये भी फरमाइश कर रहे हैं कि चाय पकौड़ी भेज दीजिए तो बहुत अच्छी बात है।
1: और मैं तो कुछ नाम देना चाहूंगी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल श्योर।
1: मैं जैसे की है नाइवा फातिमा, लिखत फातिमा और अफरोज फातिमा और
0: फातिमा
1: और आरती शमा।
0: ओके ठीक है जी, हम सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: ओके मैम,
0: ओके। तो चलिए हम ये गाना सुनते हैं, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि अब जो रात की बात करते हैं ना, दिल की बात दिल तक, उनके भी आवाज़ हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आप समझ गए होंगे तो वेल डन, नहीं समझे तो आवाज़ सुनकर पहचान लेंगे आप। फिलहाल गाना सुनते हैं, ठीक है?

0: गुड वाली इवनिंग है। हेलो फरमाइश शो में आरजुरीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 4:10 हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि हमारे साथ एक और शख्स कनेक्ट हो गए हैं। जरा आप अपनी आवाज़ सुनवाइए।
1: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? पूरी पूरी उम्मीद है,
0: लेकिन उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी आपके कानों तक।
1: हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी आवाज नहीं, उनके दिल की बातें पहुंचती हैं मेरे पास, मेरे कानों तक। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है बारिश का मजा ले रहे होंगे और गाड़ी में इस समय मस्त मस्त जो गाने चल रहे हैं पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। और जो हमारे कॉलर्स जो आज हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए उन्हीं से कुछ गुफ्तगु करते हैं और पूछते हैं कि वो इस समय ऐसे बारिश के मौसम में क्या कर रहे हैं।
0: जी पूछो, बिल्कुल पूछिए
1: आप। हेलो हेलो हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप?
2: हाय सर।
1: हाय जी, हाय। कैसा वाला हाय था ये? हेलो वाला हाय था या हाय सर ये वो वाला हाय था?
2: हाय सर।
1: इसका मतलब आप कुछ मस्ती कर रहे हैं इस समय बारिश के मौसम में?
2: जी सर, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, गर्मी का पता नहीं है, तो इसलिए मस्ती कर रहे हैं।
1: तो हमारे सभी श्रोताओं जो आपको सुन रहे हैं इस समय गाड़ी में बैठे हुए, दुकान के अंदर बैठे हुए, या अपनी बेगम साहिबा के साथ बैठे हुए कुछ बातें करते हुए, सबको अपना नाम बताइए आप।
2: जी सर, मेरा नाम राबिया।
1: आपका नाम क्या है?
2: राबिया।
1: राबिया, तो राबिया जी इस समय क्या कर रही हैं आप? चाय पी रही हैं, पिला रही हैं?
2: चाय पी भी रही थी, पिला भी रही थी सिस्टरों को।
1: सिस्टरों को चाय पिला रही थी आप?
2: जी सर।
1: तो किसी ने सिस्टर ने ये तो नहीं कहा अरे यार तुमने चाय में चीनी ज्यादा डाल दी है?
2: जी सर नहीं, चाय में चाय बनाती है अपने घर में।
1: आप चाय बनाती हो आप?
2: जी सर,
1: कोई भी मेहमान आएगा उसे चाय तो जबरदस्ती पीनी पड़ेगी अब।
2: जी सर, आप कभी पिला देंगे हम?
1: इससे ये तो पता चल गया अब राबिया जी कि आपके घर में कोई भी मेहमान आया बिना चाय पिए तो जाएगा ही नहीं।
2: जी सर, क्योंकि मैं मस्त चाय बनाती हूं एकदम।
1: और कोई ऐसा तो नहीं कोई आपकी सिस्टर आ जाती हूँ पीछे से लेके कि लो मेरा नींबू पानी भी पी के जाओ एक गिलास?
2: जी सर ये नहीं,
1: ऐसा तो नहीं है कि भाई भाई मेरी सिस्टर ने तो बना दी है चाय, अब मैं भी कुछ ना कुछ बनाऊंगी तो मैं भी कुछ नींबू पानी लेके ले जाती हूँ गेस्ट के लिए?
2: नहीं नहीं सर,
1: ऐसा नहीं है। बड़ी बहुत ही अच्छी,
2: चाय के बाद में नींबू पानी अच्छा नहीं लगता सर।
1: ये तो है। तो चाय के साथ इस समय क्या चल रहा है? पकौड़े चल रहे हैं, मौसम इतना अच्छा हो रहा है,
2: पकौड़ियाँ बनवाए सर।
1: क्या बात है, अरे आज तो आपने पूरा मेन्यू वही बना रखा है जो हमने सोच रखा।
2: सोच रखा भी कर नहीं है सर आपने।
1: तो कौन सा गाना, कोई शायरी भी सुना दो अब ऐसे मौसम में, कोई अच्छी बरसात वाली शायरी आप भी सुना दो।
2: जी सर, मैं शायरी नहीं करती।
1: आप शॉपिंग करती हो?
2: शॉपिंग कर दी, मुझे भागे शॉपिंग का बहुत शौक है।
1: हाँ तो ठीक है, आप जाके शॉपिंग कर लेना हमारी एफएम की तरफ से, आप शॉपिंग कर
0: दे। अखिल भैया पेमेंट कर देंगे आपको।
2: पेमेंट कर देना सर, मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे
1: रीना जी सुबह से कह रही थी कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए साथ में शॉपिंग करने के लिए, तो आप इतनी अच्छी पार्टनर उन्हें मिल गई हैं, तो अब उनकी आज सुबह की ख्वाहिश पूरी हो गई, बस आप छाता लेके आ जाओ।
0: अरे चलो शॉपिंग करते हैं, बैंक बैलेंस इनके पास है, ले लेते हैं कार्ड।
1: स्टूडियो चलिए, ये तो सब चलता रहेगा, आप गाना बताइए।
0: नहीं नहीं, नहीं आप तो आप अपनी बातों से कट रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है।
2: खाली कर
0: देना
1: है मैम। मैं दे दूंगा आपको, मेरे पास जो भी प्लास्टिक वाला कार्ड है मैं आपको दे दूंगा।
0: नहीं प्लास्टिक वाला नहीं चाहिए, मैं स्टील वाला चाहिए।
1: तो कौन सा गाना सुनना चाहती है? चलिए ये तो आते जाते रहेंगे, आप वो बताइए गाना।
2: दिल तेरी दीवानगी में खो गया है।
1: क्या बात है, तो एक लाइन गा के भी सुना दीजिए रूबिया जी।
0: रूबिया जी, आप इनका नाम ही बदलते रहिए।
1: सॉरी राबिया जी।
2: दिल तेरी दीवानगी में खो गया।
1: क्या गाया है आपने, ऐसा गाया कि सोनू निगम साहब भी खुद कह रहे वहां से, अरे वाह भाई वाह वाह भाई वाह। अकेले में तो हर कोई गा लेता है बेचारा, पूरा अपना अफसाना गा देता है वो अकेले में। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, और आपकी चाय की चुस्की यहाँ तक पता चली हमें कि क्या चाय बनाई होगी आपने, इतनी मस्त एकदम कहते ना
0: कड़क वाली
1: कड़क चाय बनाई है आपने।
2: कड़क चाय सर, आप आइए एक दिन, मैं आपको चाय बना के पिलाऊंगी बढ़िया वाली।
1: जरूर, अब हमें पता है आप नई भी आए या कभी भी आए तो आप चाय तो पिलाओगी पिलाओगी होगी, चाय तो फिक्स है।
2: जी सर।
1: आवाज लगेगी नहीं और चाय बनेगी नहीं।
2: ओह शिट। नहीं सर। तैयार करके ले आती हूँ। आप टेंशन रहिए।
1: चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और पूरा एकदम पता ही नहीं चला कि किस तरीके से आपने पूरा समा बांध दिया।
2: मुझे भी अच्छा लगा, पर मेरी दो सिस्टर हैं।
1: आपकी दो सिस्टर हैं?
2: जी, दर्शा फातिमा, नज़मा आती। इनके साथ सुनना चाहूंगी मैं सॉन्ग।
1: जरूर जरूर जरूर जरूर, इनके साथ आप एंजॉय करें, पूरे परिवार के साथ इस गाने को आप, आपने जो अपनी फरमाइश दी है उसे एंजॉय करिएगा।
2: थैंक यू,
1: वेलकम, बाय बाय।
0: तो चलिए श्रोताओं, गाना सुनते हैं, दिल तेरी दीवानगी में खो गया, बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा। हम गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

0: हाय, क्या शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। दिल तेरी दीवानगी में खो गया है। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही इतना शानदार है कि आप यहाँ कॉल करेंगे और गुम हो जाएंगे, और जब तक इसको आप सुनेंगे नहीं, चैन करार बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और रिचा,
1: चैन वाली बात पे मुझे एक बात याद आई है।
0: हाँ हाँ
1: कहें तो मैं बोलूं,
0: बिल्कुल।
1: तेरे बिना दिल को चैन कहाँ,
0: हाँ हाँ
1: तेरी मुस्कान है मेरी जान,
0: हाँ हाँ
1: हर खुशी तुझसे ही जुड़ा है,
0: हाँ हाँ
1: क्योंकि तू है मेरे दिल का अरमान।
0: मुझे लगता है घर नहीं जाना, भाभी जी सुन रही होगी, लठ लेकर बाहर ही खड़ी होंगी वो।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी एक अलग तरह का प्यार होता है।
0: अच्छा, उनके लिए ना ये?
1: हाँ, ये उन्हीं के लिए।
0: हाँ, फिर तो ठीक है। आपने अगर लठ निकालोगे तो रामलाल को अंदर रख दीजिए।
1: मगर कुछ भी कहें, इस समय सब अपना मौसम का मजा ले रहे हैं और गाड़ी भी बड़े आराम से चला रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत है बाहर।
0: अच्छा अच्छा ट्रैफिक बहुत है। अच्छा, आप बाहर से ही आए ना? तो देखिए बारिश हो रही है, कैसा लग रहा है आपको बाहर से आया? आप
1: बाहर से बस मस्त आ रहा है। मतलब इस समय तो अगर आपके साथ आपका कोई साथी हो, आपका दोस्त हो, तो चाय की टपरी और ये मौसम, और कहते ना मस्ती भरी बातें होती हैं, खूब सारी जो हैं एक दूसरे से शिकायतें होती हैं, सब पूरी होती हैं।
0: अच्छा, तो आपको बरसात में लॉन्ग सफर पर जाना पसंद है?
1: हाँ, पसंद है।
0: कीचड़ पसंद है?
1: जब लंबे सफर पे निकलोगे तो फिर क्या कीचड़ और क्या पानी। ये तो है स्मार्ट सिटी की कहानी, जब आप निकल गए तो निकल गए, बस भूल जाओ आपको।
0: चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो
2: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, कैसे हैं?
2: मैम मैं शिवा लोहट एमपी विदिशा से आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ। मैम मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, और जब आप रही है तो और भी अच्छा हो गया हूँ मैम।
0: चलिए जी, अच्छी बात है कि आप अच्छे हो गए हैं, शक्तिमान हो गए हैं आप।
2: जी बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसा हो जाए तो नहीं था।
0: जी,
1: आवाज शक्तिमान वाली नहीं लग रही है, ये कुछ थके हुए से लग रहे हैं।
0: काम करा होगा ना सर आपने, है ना?
2: जी जी जी
0: जी, क्या काम करते वैसे आप?
2: मैं एक्चुअली ब्लाइंड हूँ, समाज सेवा कामों में लगा रहता हूँ मैम। हर 3 महीने में रक्तदान करना, गाय को चारा खिलाना, पक्षियों को दाना पानी रखना, और मैम समय समय पे गरीब लोगों को भोजन कराना और पेड़ पौधे लगाना मैम।
0: चलिए बहुत बड़ा,
1: बहुत ही बढ़िया
0: काम कर रहे हैं आप।
1: और ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका?
0: ये क्यों पूछ रहे हो आप?
1: मैं पूछना चाह रहा हूँ जो रक्तदान कर रहे हैं, ओ पॉजिटिव, क्या पता ये भी पॉजिटिव हूँ बिल्कुल। इतना ब्लड
0: बताइए सर, क्या है आपका ब्लड?
2: जी मेरा ओ पॉजिटिव।
1: देखा मैंने क्या कहा था।
0: ओहो, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हम बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज की शाम?
2: मैम मूवी का नाम है जन्नत, उसमें एक केके जी की आवाज में गाना है, हाँ तू है, हाँ तू है।
0: किसके लिए आप ये गाना सुनना चाहते हैं?
2: मैम मेरे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, अमल जी, विमल जी।
0: चलिए जूनी के साथ और सभी श्रोताओं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं।
2: थैंक यू मैम,
0: वेलकम जी। चलिए शानदार गाना सुनते हैं हम। हाँ तुम, हाँ तुम।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
4: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
5: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
6: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
5: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: एंजॉय किया है, हाँ तू हाँ। और इनकी आवाज़ और इनके गाने वाकई में बहुत ही शानदार है। और हेलो फरमाइश हो, आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे यानी आरजे रीना के साथ, और अखिल आरजे जी हैं मेरे साथ जो कि रात की शो करते भैया, दिल की बात दिल तक करते हैं, लेकिन अभी इवनिंग की बात दिल तक ये करने आ गए हैं फरमाइश शो में।
1: हाँ, क्योंकि मैं मंडे से फ्राइडे तक आता हूँ, अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा। और सैटरडे में बस खींचा चला आया, रीना जी ने कहा कि भैया चाय पकौड़ी का इंतजाम कर दिया है भैया, और आप फटाफट आ जाओ। तो मैंने कहा मैं तो पकौड़ी ले आया हूँ, मगर सच में जब आके पता चला तो चाय का भी इंतजाम नहीं था यहाँ, तो
0: गाड़ी में इन्होंने रख रखा गाइस। तो चलिए हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी सर, बोलिए। गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग मैम जी,
0: कैसे हैं आप?
2: ठीक है मैम, हम बढ़िया हूँ, आप बताओ?
0: बहुत बढ़िया। क्या नाम है?
2: सलमान अख्तर बोल रहे हैं जी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से।
0: जी बताइए कैसे हैं, फैमिली में सब?
1: कैसा मौसम है बिजनौर में इस समय सलमान जी?
0: बारिश,
1: सुबह से बारिश।
0: और क्या
2: जी? आनंद जी
0: नहीं, आनंद जी नहीं है ये, अखिल जी है ये।
2: अखिल जी, अच्छा।
1: हम भी बिजनौर से ही हैं साहब।
2: अच्छा, बिजनौर से कौन सी जगह से?
0: हाँ पूछिए।
1: बिजनौर में गंज, गंज
2: गंजवाड़ा।
1: हाँ जी,
2: अच्छा अच्छा।
0: तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: तो 16 बैंस का।
0: किसके लिए आप ये गाना सुनना चाहते हैं जरा सर बताइए हमें?
2: सभी सुनने वालों के लिए और अखिल जी के लिए।
0: अच्छा, अरे अरे क्या बात है।
2: मलिक जम्मू कश्मीर से जुड़ते हैं।
0: ओके, क्या नाम बताया जो कश्मीर से जुड़ते हैं?
2: नहीं, मलिक जी बड़गांव।
1: अच्छा, मलिक साहब के। ओके, मलिक साहब के लिए। ओके। मलिक साहब तो आजकल सेब खा रहे हैं, वहाँ पे बात हुई थी अभी पिछले हफ्ते ही।
2: बोल रहा हूँ उसको, उनका नंबर देना मुझे, मेरी सही नंबर निकल गया, बात नहीं हो पा रही।
1: जरूर जरूर।
0: चलिए सर, हम आपको फिलहाल ये गाना सुनवाते हैं, आपकी बात उन्होंने सुन ली होगी तो आपको कॉल ही कर लेंगे वो।
2: जी कॉल तो जब करेंगे, नंबर चालू होगा मेरा तो बंद ही हो गया, खो गया।
0: चलिए ठीक है जी।
2: ओके मैम।
0: ओके, तो चलिए हम ये गाना सुनते हैं। मैं 16 बरस का, तू 17 बरस की। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गाना है, और इस गाने के साथ एंजॉय करिए आप भी।

गुड वाली इवनिंग है। हेलो फरमाइश शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और समय की बात करूँ तो 4:40 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार शानदार वाले आप सभी के रिक्वेस्ट होते हैं जो कि सच में अमेजिंग। और साथ ही साथ हमारे पास एक लकी यानी कि कॉलर का उनका कॉल तो आया था लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा काम में बिजी हैं तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम आपको ये गाना अवश्य सुनवाएंगे। तो एक बरसात का ही गाना हम आपको सुनवाते हैं और आपसे यही कहना चाहेंगे कि बस बने रहिए आरजे रीना के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
1: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। हेलो फरमाइश शो में आप आर्जुरीना के साथ कनेक्ट है, और समय की बात करूं तो 4:40 हो चुके हैं और बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, यानी कि कल तक ताबड़तोड़ वाली बारिश होने वाली है जी। चलिए, फिलहाल आप देखिए ट्रैफिक में है, ऑन द वे है, बस आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि तो जो पैदल यात्री है उनका भी ख्याल रखिए, और ज्यादा स्पीड में आपने गाड़ी नहीं चलानी है, और स्कूटी खासकर स्लिप वाले पहिए होते हैं तो वे में मत चलाइएगा आप, और ध्यान से अपना गाड़ी चलाइए। और छीट वट बिल्कुल भी, ये जरूर ध्यान रखिए कि किसी के ऊपर छीट ना जाए, वरना पता चले भैया पीछे से वो कुछ फेंक कर मार रही है तो शीशे खराब हो सकते हैं, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है आपने। चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान और शाह गुप्ता साकिब अल्लाह की जारत के पीछे नदी पे से बोल रहे हैं, मुरादाबाद से।
5: अच्छा जी,
6: आना सुनना है। इलू,
5: ओके ठीक है सर, हम आपको एक गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
6: ओके सर,
5: चलिए फिलहाल हम गाना सुनते हैं इलू इलू, और आप भी कॉल करिए, अब देखते हैं कि लास्ट लकी कॉलर कौन करेगा।

0: जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है। फरमाइश शो में आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट हैं और समय की बात करूं तो 4 यानी कि 4:53 हो चुके हैं और इसी लास्ट कॉलर के साथ हम लेंगे यहां से जाने की इजाजत और फिर मिलेंगे आपको हम मंडे को इवनिंग मस्ती शो में करेंगे क्या। अरे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। चलिए फिलहाल हम अपने लास्ट लकी कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए, कैसे हैं आप? नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बढ़िया। और आप सुनाइए।
0: बहुत बढ़िया। आप अपने बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मैं गौरव टेलर, नवीन नगर, मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: ओके, तो बताइए कौन से गाने सुनना चाहते हैं आज आप?
1: सुनवा दीजिएगा, अपनी पसंद का सुनवा दीजिएगा आप।
0: वो हम रिवील नहीं करेंगे लेकिन ये गाना हम जरूर सुनवाएंगे सभी को, ठीक है? चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, बिल्कुल सरप्राइज वाला गाना है आपके लिए।
1: ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत।
0: चलिए आप अपना ध्यान रखिए और भाभी जी का भी ध्यान रखिए। ओके बाय सर। तो चलिए एक बहुत ही शानदार हम गाना सुनवाते हैं और इस गाने को सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये गाना स्पेशल क्यों है क्यों नहीं है। बाकी आप इस गाने को सुनिए और हम लेते हैं आप सभी से जाने की इजाजत। भाई अपना ध्यान रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। और बरसात का मौसम है भैया, कल तक बारिश रहने वाली है, बिन बुलाए बारिश। और देखिए नुकसान तो बहुत हुआ है भैया किसानों का, क्योंकि फसलें पक चुकी हैं और फिर से वो खेतों में ऐसे लेट गई है जिससे फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और वही है ना, जब मेहनत करो और फल ना मिले तो बड़ा दुख होता है। तो दुख भी है और गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली है। तो चलिए गाना सुनते हैं और इसी के साथ बाय, अपना ध्यान रखिए।

0: प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। पंजाब पुलिस ने आज फिरोजपुर में पुलिस नाके पर चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को 3 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन और हथियार गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। फिरोजपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भूपेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि पंजाब पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें एक चेकिंग प्वाइंट पर रोका गया था। मामले की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंचे लहरें उठने की आशंका के कारण आज से 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के नागरिकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदिशा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी कृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
6: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर। सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। बंदे का नाम आनंद है, प्रोग्राम आपका फेवरेट है। आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, और आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ एक बार फिर से एक बहुत ही कमाल की सुपर डुपर अमेजिंग टैलेंटेड लेडी मौजूद है। एंड मैं डॉक्टर इनको बाद में बोलूंगा, पहले टैलेंटेड बोलूंगा क्योंकि बहुत कमाल का काम कर रही हूं। सिर्फ अपनी हॉस्पिटैलिटी ये हॉस्पिटल में नहीं, इंस्टाग्राम पे भी देती है बहुत अच्छे तरीके से। जब फर्स्ट आई थी तो मेरे को लगा नहीं था कि इतनी मल्टी टैलेंटेड मैम है, मतलब वो तो है ऑफ कोर्स, लेकिन इतनी सुपर वाली होंगी ये नहीं पता था। चलो मैम का तारुफ तो मैंने करा दिया है, लेकिन अभी उनके स्टाइल में जरा उनका हालचाल तो जान ले भाई, क्योंकि सब कुछ मैं बोलूंगा तो वो क्या बोलेंगे। हेलो मैम, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वार्म वेलकम है आपका।
7: हेलो,
6: जोरदार तालियां प्लीज मैम, टेल मी कैसे हालचाल?
7: मैं बढ़िया हूँ। और आज हम कहाँ हैं? हम हैं 89.6 एफएम पे, और ये है दूसरी बार हम आए हैं। और क्या करने आए हैं बताइए आनंद जी, हम क्या करने
6: आज
7: आए हैं?
6: मैम के साथ में बहुत सारी बातें करूंगा। देखो यार, अभी तो मेरी शादी हुई नहीं है, बट होने वाली है वेरी वेरी सून, तो मैंने सोचा मैम को बुला के पहले थोड़ी सी ना ट्रेनिंग ले लेता हूँ मैं।
7: आज हम आपको ही, आपका प्री वेडिंग होता है ना, उसी तरह प्री नर्सिंग शूट करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि बच्चा होने का प्रोसीजर क्या है,
6: माय गॉड
7: कैसे कराया जाएगा, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, किस किस केस में क्या कराया जाएगा, भाई आपके सारे डाउट्स क्लियर कर।
6: मुझे मारो, ये सीरियस है भाई। वेल, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, और इसी जोक सपाट और अच्छी बातें होंगी। देखो, काम के साथ साथ ना थोड़ी एंटरटेनमेंट वाली बातें होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो है, यहाँ पे हम आपको सुनाई दे रहे हैं, और शायद आप हमें मन की आंखों से देख भी रहे हो, क्यों मैम? और मजे की बात पता क्या है, डॉक्टर आशिका मैम ना सिर्फ जानकारी अच्छी नहीं देती, बोलती भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आप सुनोगे तो आपको लगेगा वो दूसरी अनाउंसर है मेरे साथ बैठी हुई है। लास्ट टाइम वो बहुत अच्छा बोल के गई थी, आपको मैं वो क्लिप जरूर दिखाऊंगा, मेरे फोन में आज भी सेफ है। अच्छा मैम, अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप कहाँ वर्किंग है एंड आपका नाम वगैरह थोड़ा बता दूं।
7: जी, आई एम डॉक्टर आशिका गुप्ता, मैं पास आउट हूँ एएमयू की, प्रोडक्ट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माय एमबीबीएस एंड पीजी फ्रॉम देयर, एंड अभी मैं जो प्रेजेंटली वर्किंग हूँ एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद, जो काट रोड पे है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट।
6: दैट्स वेरी नाइस। एक खास बात ये थी यार, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो अक्सर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर आशिका मैम का नाम पहले आ जाता है। ऐसा क्या बोला था हम दोनों ने लास्ट टाइम जो लोग इतना याद रखते हैं?
7: यार पता नहीं, लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ये डॉक्टर।
6: कंफ्यूज तो नहीं हुए हैं भाई, वो सीधा सीधा आपका नाम बोलते हैं, और अभी और कोई राशिका मेरे साथ में आई नहीं है यहाँ पे, ये भी सच है। मतलब शायद हमने कुछ तो अच्छा बोला हुआ, शायद
7: अच्छी बात है, इट इज गुड फॉर अस ना, कोई बात नहीं,
6: ये अच्छी बात
7: करेंगे। मतलब ये तो हमारे लिए बहुत ही एनकरेजिंग है कि बार बार साथ आने का।
6: मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हम दोबारा हैं तो शायद इस बार और ज्यादा लोग याद करें, कुछ ऐसा अच्छा करते हैं, राइट? ओके, सो आज मैम हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं सिजेरियन के बारे में, बहुत सारी बातें मुझे जाननी है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो आज ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देने वाली हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्या आजकल सिजेरियन जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो क्यों, उसका रीजन क्या है मैम, क्या लगता है?
7: एक्चुअली यस, सिजेरियन का रेट तो बढ़ ही गया है ना। अब रीजन में तो देखिए दोनों बहुत सारे रीजन है, बट मेजरली जो रीजन है ना, एक तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव थे, ठीक है,
6: सही बात है,
7: खान पान में बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें थी, अब हमने आर्टिफिशियल चीजें ये सब इन्वॉल्व कर ली है। प्लस हम जब पेशेंट को आजकल एडवाइस करते हैं तो वो पूछते हैं कि मैम एक्सरसाइजेस बताइए कि किससे नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन ये पुरानी लेडीज का रूटीन था, कोई एक्सरसाइज नहीं करना पड़ रहा था, उनका जो काम करने का तरीका था वो इसी तरह का था कि पेल्विक फ्लोर खुलता था,
6: ठीक है।
7: प्लस थोड़ी पुराने जमाने की लेडीज रफ एंड टफ हुआ करती थी, अभी हमारी जनरेशन थोड़ी छुई मुई है,
6: और हमारी वाली क्या होगा पता नहीं,
7: पता नहीं। एग्जैक्टली, कोई तीसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा अब डिलीवरी का, नॉर्मल
6: AI आ गया है ना,
7: ऑप्शन डिलीवरी
6: ऑप्शन आ रहा है अभी, लाइन लाइन में है,
7: तो इट इज ऑल दैट, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही आप मान लीजिए।
6: ओके,
7: तो प्लस लास्ट टाइम पहले लोगों के पास सिजेरियन के इतने ऑप्शन नहीं रहते थे, ऑप्शन ही नहीं है, आपको कराना ही नॉर्मल डिलीवरी है, घर पे देके या जैसे भी कराना है वो हो जाती थी, है ना। दूसरी चीज, आप अपनी दादी नानी को कभी टटोलना तो बताएंगी वो आपको अपनी हिस्ट्री की, बेटा मेरे ना 10 बच्चे हुआ करते थे, उसमें से 2 बच्चे एक्सपायर हो गए, अभी 8 मेरे पास थे, ठीक है, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी कि कोई बात नहीं, 2 चले गए, 8 है
6: मेरे पास।
7: बट आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, दे वॉन्ट 2 हेल्दी चिल्ड्रन। तो ये एक गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि यार बाय दिस वे या दैट वे वी हैव टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी, क्योंकि हमारे पे बेबी के रिगार्डिंग हमारे से कोई भी मतलब कोताही बर्दाश्त ही नहीं है, तो फिर हमें भी एक प्रेशर रहता है, उस अंडर प्रेशर में हमें 100% रिजल्ट देना है, तो उस अंडर प्रेशर में भी थोड़े से सिजेरियन का रेट इंक्रीज हो जाता है।
6: ऑल राइट, सो आई होप गाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया होगा मैम ने। अच्छा, एक और चीज है मैम, अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं आज भी कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी हुई क्या, तरीके की सुनने को मिलती है हमें चीजें, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस खुद भी पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन,
7: इट इज अ प्रेशर है ना, मतलब आजकल प्रेशर हो गया है, और ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके फायदे और नुकसान दोनों है,
6: दोनों है,
7: तो आप किसी की नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी देख ली हमने कि यार उसने तो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी, बट आई वुड से कि देखो हर बॉडी अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है, हर किसी की इंडिकेशन अलग है, तो इट इज नॉट कम्पेरेबल कि किसी की हो गई है तो आप दूसरी लेडीज को भी प्रेशराइज करना शुरू कर दें. अब एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, है ना, आपको भी पता है आई हैव ट्विंस, ठीक है, दोनों बच्चे मैंने ही जन्मे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, सिर्फ एक मिनट का फर्क है, बट दोनों की प्रेफरेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है, किसी को मीठा पसंद है किसी को नमकीन पसंद है. तो जब एक माँ के दो जन्मे बच्चे एक से नहीं हो सकते तो दो लेडीज की प्रेगनेंसी एक सी कैसे हो सकती
8: है? एग्जैक्टली.
7: सो इट इज ऑल इंडिकेटेड, हर किसी का अलग अलग इंडिकेशन होता है. और नेचुरल डिलीवरी तो ऑब्वियसली सेफ डिलीवरी है, जो नॉर्मल डिलीवरी है तो हम उसे एनकरेज करते हैं, बट स्ट्रिक्टली ये कहना कि यार नहीं यार नॉर्मली कराना है ये एम नहीं होना चाहिए. एम होना चाहिए एक हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चा.
8: ऑलराइट. अच्छा मैम, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ तो उसके पीछे रीजन ये भी है कि पहले का खान पान, जैसे आपने अभी प्रूफ भी किया कि बहुत डिफरेंट था, आजकल का खान पान बहुत अलग है, है ना. आजकल मैं आपकी वीडियो में भी देखता हूँ कि आज पपीता खाने का मन है तो क्या खाना चाहिए नहीं चाहिए, आज टिक्की खाने का मन है खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए,
7: ये अब हमें बताना पड़ रहा है. आनंद जी ये सब चीजें तो मतलब बताने की थी ही नहीं, ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं है. हम लोग सनातन धर्म है जहाँ से वो ओरिजिन हुआ, तो ये सब ये हमारे बताने.
8: मुझे इसलिए भी हंसी आ रही है, मैं सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, जब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप बताइए, अब ये चीज और रहेगी थी लोगों को बताने.
7: मेरी पिज्जा की वीडियो है 1.3 मिलियन,
8: वही सबसे ज्यादा वायरल हुई
7: है ना. अब उसमें कुछ बताने की बात तो थी नहीं कि आप पिज्जा ना खाएं, बट लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि पिज्जा खाना है कि नहीं खाना है. लोग ये शेयर कर रहे हैं क्यों? क्योंकि लोग खा रहे हैं. तो हस्बैंड्स आर शेयरिंग टू देयर वाइफ, यार एक गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही है नहीं खाना है, या फिर इसके क्या फायदे क्या नुकसान है वो उन्होंने बताए. तो आप ये देखो ये चीजें इस लेवल पे बातें करनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली ये तो माँ को पता होनी चाहिए, है ना. तो फिर सारा अब प्रेशर लास्ट में कि नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, जब स्टार्टिंग से ही प्रोसेस हुआ तो हमने बेड रेस्ट किया, हमने प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से कंसीव करी, अब लास्ट पे बर्डन माँ पे डाल के इट इज नॉट वेरी मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. सेफ माँ सेफ मदर, बस दैट शुड बी द गोल.
8: बहुत बढ़िया मैम, मुझे ऐसा लगता है ना इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है, आपने कहा अभी कि बहुत सारे लोगों को ये चीज बतानी पड़ रही है हमें, स्पेशली लेडी को, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल इतना सुपर फास्ट है, लड़की के पास टाइम नहीं है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, बाहर रहते हैं मोस्टली, है ना, तो उनको शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. बट आप लोग जो उनको कहीं ना कहीं एक राइट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि भाई ये चीज अगर आप ले रहे हो तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक सही इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर हो रही है. और प्लस सोशल मीडिया का एडवांटेज भी है कि वो अच्छी चीजें भी दिखा रहा है ना. कुछ लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे देख के कुछ भी अलूल झुलूल बातें करने लगते हैं नॉर्मल थोड़े से व्यूज के लिए, बट उससे किसी की बॉडी पे किसी की लाइफ में बहुत फर्क पड़ सकता है.
7: एक्चुअली एक्टिव भी डॉक्टर्स को इसीलिए होना पड़ा क्योंकि वो जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना
8: 100%
7: इंस्टाग्राम पे, तो वी हैव टू काउंटरैक्ट दैट. मतलब बिना डिग्री के कुछ भी, वहाँ डिग्री तो चाहिए नहीं, तो एवरीबॉडी इज टेलिंग देयर वेज. तो वी आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड टू कि भैया ये दिस इज द राइट.
8: एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कि बहुत ही सही है मैम, और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे अच्छे लोग ये चीज इन्फॉर्मेशन डिलीवर करोगे तो शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मिथ दूर होंगे, सिर्फ लेडी के क्यों जेंट्स के भी बहुत जरूरी है मैम.
7: Exactly.
8: है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम तो ऐसा है भाई, हर किसी को सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. मैम इसी बीच एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे, कई पेशेंट्स के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि यार डॉक्टर ने सिजेरियन क्यों बोल दिया, क्या उन्हें जल्दी थी या क्या था, मतलब रीजन आ जाता है ऐसे थॉट.
7: Exactly,
8: हस्बैंड भी बीवी भी सबके मन में आता है.
7: एक बात सही है कि लोग बोलते हैं यार उसे जल्दी थी इसलिए सिजेरियन करके निपटा दिया.
8: हाँ एग्जैक्टली.
7: बट मैं आपको बताऊं, जब हम गायनेकोलॉजिस्ट बने थे वी हैव बीन पास आउट फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना, तो हम जब हुए थे हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है ना, हमें बता दिया जाता है कि भैया अब तुम्हारे जीवन में कोई जल्दी काम बचा नहीं है. अभी मैं आपसे बैठी हूँ, अभी 5 मिनट बाद मेरे अटेंडर का फोन आ सकता है कि मैम एक पेशेंट लेबर में आई है, तो आई हैव टू रन. ठीक है, तो ऐसा नहीं है अब हमारे लाइफ में हमारे लिए टाइम बचा नहीं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नर्सिंग होम नीचे हुआ है, ऊपर डॉक्टर्स रहते हैं, तो उन्हें क्या जल्दी है आप मुझे ये बताइए. उनको तो इट इज अ फुल टाइम जॉब ना, पूरे दिन का जॉब. तो ऐसा नहीं है कि जल्दी थी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं. अब हम मदर और बेबी को सेफ डिलीवर कराना चाहते हैं, तो बहुत सारे कभी कभी लेबर प्रोग्रेस करते करते बच्चे में डिस्ट्रेस हो जाता है तो सिजेरियन लेना पड़ता है. कभी कभी बेबी की पोजीशन खराब हो जाती है तो सिजेरियन लेना पड़ता है. प्लेसेंटा को कोई फैक्टर होता है जैसे कि प्लेसेंटा एक्रीडा है, प्रीविया है, तो हमें सिजेरियन के लिए लेना पड़ता है. तो जल्दी नहीं है बेसिकली, ये थोड़ा सा हमारा आपसी आप समझिए तालमेल की कमी है. अगर आप 9 महीने किसी के वो पेशेंट हैं और आपको उन्होंने डील किया है तो आपका उनसे कनेक्शन हो जाता है. तो कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं करेगा कि अनइथिकली जाके आपको भैया डायरेक्ट सिजेरियन के लिए बोल दिया. ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि जल्दी की वजह से हम करते हैं. इट इज ओनली टू डिलीवर अ सेफ मदर एंड अ सेफ.
8: वेरी नाइस. तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये डेफिनेटली ऐसी चलती रहेगी. बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाएंगे. अभी डॉक्टर राशिका जी हमारे बीच में है तो ऑफकोर्स काम की बातें होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी एंटरटेनमेंट भी आती भी होनी चाहिए ना. मैम देखिए अपने हॉस्पिटल से निकल के मेरे रेडियो हॉस्पिटल पहुंची है, जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है. तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करती है, जरा जानते हैं. क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ऐसा, मेरे मन में भी होता है कि डॉक्टर गाना सुनते होंगे. तो किस तरह का म्यूजिक आप सुनती
7: हूं? मेरी वीडियोस में गाने होते हैं तो द ओनली वे ऑफ रिलैक्सिंग इज टू हियर म्यूजिक.
8: अभी हमारे लिसनर्स को आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे? वो वही गाना प्ले करेंगे अभी हम. आपका फेवरेट कोई अच्छा सा गाना बता सकते हो? अभी आपको पता है इंस्टाग्राम पे 80 वाला ट्रेंड कम बैक कर रहा है.
7: हाँ 80s वाला कर रहा है, वाला बनाने वाली हूँ, रिसेंटली बनाने वाली.
8: मैंने वही भी देखा आपका, मैं सब कुछ तो आ गया यार, मैम का भी नहीं आया.
7: आएगा. बट देन अभी आप गाना बजाओ
8: कोई मदर से रिलेटेड हो. ओके, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, सुना है आपने गाना?
7: नहीं यार, ये मदर से रिलेटेड है. डिलीवरी ऊपर मैं नीचे. अरे
8: सॉरी यार, अभी ना एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं आ रहा है.
7: अरे वो वाला बजाते हैं जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है.
8: कौन सा?
7: हनुमान जी वाला. पार्वती
8: ट्रेंड है. हाँ हाँ, बहुत ट्रेंड में है अभी वो हनुमान अंश का ना. गाइज देखो, हम भले ही रेडियो वाले हैं लेकिन हर गाने की इन्फॉर्मेशन हमें जरूरी नहीं होती. आपने गुनगुना दिया, मुझे पता है आपको याद आ गया होगा क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं. हम भी सुन के आते हैं मैम. बहुत ट्रेंड में है, बहुत अच्छा गाना है. इसके बाद वापस आते हैं मैं और राशिका जी. आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.

0: सब कहते। सच में ये गाना सुन के मुझे बहुत आनंद आया। मैम से पूछते हैं, मैम को कैसा लगा? मैम आपको कैसा लगा?
1: बहुत मन पवित्र हो गया।
0: अरे वाह, इससे पहले मैम हमारा मन भी पवित्र था। आई डोंट नो मैम, मैम ने ऐसे बोला ना मन। एनीवेज गाइस, बैक टू पॉइंट, मस्ती मजाक चलती रहती है। लेकिन मैम आप ऐसे पहले डॉक्टर हो जिनके साथ हम इतनी, मतलब इतने खुल के हम लोग बात कर पाते हैं, मतलब इतना फ्रेंडली माहौल आप कर देते हो, इसके पीछे रीजन क्या है? आप पहले से इतने फ्रेंडली हो क्या?
1: या डॉक्टर से फ्रेंडली नहीं होगे तो कैसे बनेंगे? बट देन मुझे ऐसा लगता था, जब भी वो सीरियल देखा था संजीवनी,
0: हाँ संजीवनी एग्जैक्टली
1: देखा था ना, तो वो कब से प्रतिमा बनी हुई थी दिमाग में कि बनना है तो ऐसे ही बनना है कि दो लोगों को खुशी दे सको, दो लोगों से बात कर सको, आप किसी की लाइफ में थोड़ा सा चेंज ला सको, तब तो बनो,
0: कंट्रीब्यूट दे सको।
1: माई फादर यूज टू से कि बेटा ऐसा करना कि छाप छोड़ के जाना, ठीक है? तो शायद एम वहीं से, अब ब्रिंगिंग वैसी ही है कि मुझसे कोई मिले तो कम से कम कुछ पॉजिटिव वाइब्स जरूर रहनी चाहिए। मुझे पेशेंट्स को भी, कभी पेशेंट कोई लूज हो जाता है बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी या किसी तरह भी, तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना दुख होता है। इट इज ओनली कि वो मुझसे मिलने आया और मैं नहीं मिल
0: पाया, वो बात में रिग्रेट सा फील होता है।
1: एग्जैक्टली,
0: समझ सकता हूँ मैम एक्चुअली। बट मुझे भी ये लगता है कि आप जब अपने मन से कोई चीज करते हो ना, तो वो 100% उसमें रिजल्ट भी अच्छा होता है। देखो काम की बातें भी हो रही है और मैम से थोड़ी सी हम कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है और आई एम श्योर आप भी एंजॉय कर रहे होंगे इस कॉन्वर्सेशन। बढ़िया सी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे मैम।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है आपका। और अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है मैम, अगर एक बार सिजेरियन हो गया है तो क्या अगली बार भी सिजेरियन ही होगा, जैसे कि लोगों के
1: मैसेज? यस यस बिल्कुल। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा इंस्टाग्राम इसी मैसेजेस से भरा रहता है कि मैम सिजेरियन को इतना साल हो गया, क्या अब मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए, क्या सिजेरियन कराना चाहिए? देखिये, पहली बात तो अगर आपके दो ऑपरेशन हो चुके हैं या दो से ज्यादा हो चुके हैं तो ये तो एक टोटल इंडिकेशन है, इट इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि दो सिजेरियन के ऊपर अगर हो चुके हैं तो तीसरा बेबी सिजेरियन से ही होगा।
0: ओके।
1: और यदि एक सिजेरियन हुआ है तो बहुत सारी फिजिबिलिटी डिसाइड करती है, जैसे कि आपका पिछला सिजेरियन से कितना टाइम है, मिनिमम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए दो बेबी प्लानिंग। ठीक है। आपके टांकों की मोटाई कैसी है, यानी कि जो आपके सूचर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड पे हम लोग ट्रैक करते हैं वो कैसे हैं, प्लस आपका अभी जो बेबी है उसका वेट कैसा है, पेल्विक कंडीशंस कैसी हैं, पेल्विस मतलब यानी कि हड्डी का रास्ता कैसा है। ठीक है, वो सब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगी। कोई कॉर्ड अराउंड नेक तो नहीं है जो कि डिले करेगा आपका लेबर। ये सब फैक्टर्स ध्यान रख के, प्लस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जहां हम सिजेरियन प्रीवियस सिजेरियन वाले को ट्रायल दे रहे हैं वहां पे सारी कंडीशंस अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि उसको फैसिलिटी नॉर्मल डिलीवरी की भी होनी चाहिए प्लस इमीडिएटली शिफ्टिंग टू सिजेरियन सेक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी अब कहानी सुनाती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आई जिनका लगभग 1.5 साल का पुराना सेक्शन था, अभी ट्विन डिलीवरी थी, रास्ता इतना डायलेटेड था कि अब नॉर्मल डिलीवरी कराना मेरी मजबूरी थी क्योंकि पूरा रास्ता खुल चुका था। लेबर में ऑलरेडी पेशेंट थी तो मैंने डिलीवर कराया और ट्विन, तो पहला बेबी तो डिलीवर हो गया नॉर्मली, बट येस आई न्यू कि दिस इज अ हाई रिस्क केस, तो मैंने उनको ओटी में शिफ्ट कर दिया, अपने एनेस्थेटिस्ट को इन्फॉर्म कर दिया, हमारे पीडियाट्रिशियन इन्फॉर्म। पहला बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद सडनली गश ऑफ ब्लड गया, यानी कि जो पुराना स्कार था वो रप्चर हो चुका था। दैट वेज आई टुक अ डिसीजन इमीडिएटली, क्योंकि हम ओटी में थे, अपने एनेस्थेटिस्ट को कॉल दिया, तुरंत पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया और तुरंत बेबी डिलीवर करा दिया, पीडियाट्रिशियन थे तो बेबी रिससिटेट हुआ, कुछ नहीं हुआ, मदर ऑल्सो सेव, बेबी ऑल्सो सेव। तो इसीलिए एक प्रॉपर सेटअप पे, ये नहीं कि यहाँ से सुन लिया कि भैया सिजेरियन की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आप एक उस किसी के पास भी जाके, बट येस अगर एक सेटअप वेल इक्विप्ड है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इक्विप्ड है तो थिंग्स आर पॉसिबल और बीच में गैप ठीक है।
0: ओके। सो आई होप लेडीज आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो हमारे आसपास के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं रहती हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या फिर जिनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक अच्छी जानकारी है, बिकॉज उनको भी नहीं पता होता है, कई बार हमारी घर की बुजुर्ग ये रूल है उन्होंने वही फॉलो कर लिया। तो आई होप गाइज आपको चीज समझ में आई हो। और डॉक्टर राशिका जी हमारे साथ मौजूद है, एंड मैम कौन से हॉस्पिटल में आप वर्किंग है एक बार प्लीज बता दें।
1: मैं हूँ एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: ओके। और मैम वैसे आपकी टाइमिंग क्या रहती है वहाँ पे मिलने की?
1: मैं 10 to 4 रहती हूँ, ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट की पर्सनली सेइंग कोई टाइमिंग नहीं होती, ये ओपीडी टाइमिंग है,
0: मतलब आपको कभी भी जाना हो सकता है।
1: यस आई एम अ 24 hours अवेलेबल सर्वेंट, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, क्योंकि
0: मतलब जैसे आपको कॉल आएगा, सपोज अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको अगर अनफॉर्चुनेटली कॉल आ गया
1: तो हम कल करेंगे, बाय आनंद,
0: बाय, बीच में हम खत्म कर देंगे। तो गाइस मैं जल्दी पूछ लेता हूँ,
1: पेशेंट्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट।
0: वाओ, ये मतलब आपके लिए है, ये आपकी प्रायोरिटी है ना, इसीलिए आपको इतना ज्यादा प्यार है। वो कहते हैं ना, जिस काम के लिए आपके अंदर से डेडिकेशन आए फिर आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत अच्छी चीज है अगर आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट आप उनको देती हैं, काम को देती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम। मुझे एक क्वेश्चन और है आपसे, जिसे कई बार क्या होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में उसका रिकवरी में कितना फर्क होता है, मतलब
1: सिजेरियन सेक्शन एक मेजर सर्जरी है ना, वो इंस्टा पे रील्स देखिए ना, 7 लेयर कटते हैं, एग्जैक्टली 7 लेयर कटते हैं,
0: ठीक है,
1: है ना, तो रिकवरी में समय तो लगेगा, है ना। नॉर्मल डिलीवरी की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, हम ज्यादा से ज्यादा एक एपिसियोटमी देते हैं जो एक हल्का सा कट होता है, ठीक है, ठीक है। तो रिकवरी ऑब्वियसली सी सेक्शन की लेट होती है और नॉर्मल डिलीवरी की हम नेक्स्ट डे ही चला के पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं विद इन 48 आवर्स, बट सी सेक्शन में हम 3rd day या 4th day मोस्टली डिस्चार्ज करते हैं, पेशेंट भी थोड़ा डरा रहता है क्योंकि स्टिचेस आए हैं और मेजर सर्जरी है, तो रिकवरी में तो समय है, मतलब समय डिफरेंस है।
0: ओके, ठीक है मैम। अच्छा मैम, सिजेरियन का जो सीन होता है वो क्या कभी रिस्की भी हो सकता है? जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है यार नहीं हम नहीं कराएंगे, इसमें कोई रिस्क तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा?
1: सिजेरियन इज अ मेजर सर्जरी, ठीक है, रिस्क होता है बिल्कुल,

0: नहीं झेलने हैं, बट हु सेड आप एक बार सिजेरियन. और मोस्टली ये सब जो होता है ये उन लोगों को लगता है जिसने ये सब नहीं झेला है. मतलब मैं किसी को काउंटरेक्ट नहीं कर रही, बट मेल्स को ऐसा लगता है बिकॉज दे हैव नेवर गॉन थ्रू दैट पेन. कभी उन्होंने मेंसेस का पेन नहीं झेला, हर मंथ मेंसेस आना, इट्स नॉट नॉर्मल. वी आर ऑलरेडी सफरिंग अ लॉट. बेबी को रखना, 9 मंथ की जर्नी, इट्स नॉट इजी. तो कैसे आप सिजेरियन को इजी कह रहे हैं? इट्स नॉट एट ऑल इजी. इट्स जस्ट अ ऑप्शन. मतलब 9 महीने उसने कितना सेक्रीफाइस किया आप सोच भी नहीं सकते. वो लेट भी नहीं पा रही है, वो खा भी नहीं पा रही है, उसको उल्टियां हो रही हैं. तो एक डिलीवरी का प्रोसेस अगर उन्होंने स्लो डाउन कर लिया तो आप उसे कह रहे हैं कि बहुत आसान है. आसान तो कुछ भी नहीं है. आसान बच्चा पैदा करना ही नहीं है आज की डेट में, बच्चा कंसीव करना भी आसान.
1: मैम हर चीज में बहुत एफर्ट्स लगती है, ये तो बात है, और कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती. और दोस्तों हमारा भी मेन मोटिव यही है कि एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसलिए हमारे साथ डॉक्टर राशिका मैम मौजूद हैं. और आज सिजेरियन पे बहुत सारी बात हो रही है एंड बहुत जरूरी है मैम. आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे कंपैरिजन भी हैं और जो बहुत बहुत बहुत आसानी से लोग उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. कभी कभी कुछ लोग चैलेंज देते हैं, कुछ लोग कुछ भी अड़गम सड़गम दिखाते हैं, लोग ठाक के यूज करने लग जाते हैं.
0: मेरी फ्रेंड की नॉर्मल डिलीवरी हुई, मेरी भी होनी चाहिए मैम. आपने ही कराई थी और आपको ही करानी है. यार ये कैसा चैलेंज है आप मुझे ये बताओ. चैलेंज ये होना चाहिए कि मैम बेबी और मदर मुझे सेफ चाहिए, आपके हैंड में आपने 9 महीने देखा है.
1: एग्जैक्टली.
0: कॉम्पिटिशन तो यार कहीं नहीं है और कोई रेस नहीं लग रही. सबको अपना बच्चा इंडिविजुअल होता है, सबको अपना बच्चा हेल्दी चाहिए. सो इट इज ओनली कि भैया कंपैरिजन मत करो. कंपैरिजन से काम खराब ही होता है. जहां आप बच्चे कंपेयर करना शुरू करते हो वहां भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है. मेरा बच्चा अलग है, मेरे बच्चे में अलग क्वालिटीज है. सो एवरीबडी प्रेगनेंसी इज अ डिफरेंट. सबके इंडिकेशन अलग होते हैं. नॉर्मल डिलीवरी इज नेचुरल प्रोसेस. हम चाहते हैं नेचुरल प्रोसेस हो, लेकिन ये कि उसका ऐसे हुआ था तो मेरा भी ऐसे होगा, प्लीज ये सब नहीं करें. अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहें, उससे कांटेक्ट करें, जैसा भी है उसी से मतलब बात करें, एंड शी विल डिसाइड द बेस्ट फॉर यू.
1: ऑलराइट. बहुत ही अच्छे से मैम आपने सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस पे अवेयरनेस.
0: एग्जैक्टली.
1: क्योंकि सोशल मीडिया पे दिन भर में 100 तरह की रील्स आती है. जरूरी नहीं है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ही हो सकता है उसके अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए उसने कुछ डाल दिया हो. तो सही, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक वो कहते हैं ना आधी अधूरी जानकारी खतरे की निशान.
0: यार उसने डिलीवरी नहीं करानी, उसने बस रील्स के व्यूज लेके मजे लेने हैं.
1: मजे लेने, वही बात.
0: हमें डिलीवरी करानी है.
1: अच्छा आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं मैम, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, इस तरह के लोग ने सोशल मीडिया पे देख के ये कर लिया, वो फिर आपने उसको समझाया अरे बाबू ऐसे कैसे किया?
0: ऑब्वियसली यार मेरी अपनी ही रील देख के आते हैं कि मैम उसकी आपने नील लाइकर पे नॉर्मल डिलीवरी कराई थी. ठीक है, मैंने अभी कराई है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं था, तो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी बिकॉज उसको पैनक्रियाटाइटिस थी उस पेशेंट को. उसके लिए सिजेरियन करना वाज लाइफ थ्रेटनिंग. तो उसके लेकिन रिस्क मैंने उसको एक्सप्लेन किए. मदर का रिस्क ज्यादा था तो वो सिचुएशन नहीं सुनते थे अपन पुराने जमाने में कि हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को.
1: हाँ, टीवी से देखा है बहुत बड़ी.
0: तो कुछ उतनी खतरनाक तो नहीं, बट कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि अगर हम सिजेरियन करते तो बेबी के लिए बहुत रिस्क होता. तो हमने एक रिस्क लिया, उसके अटेंडेंट्स को एक्सप्लेन किया कि बेबी को भी डिस्ट्रेस हो सकता है, बेबी को नर्सरी की जरूरत पड़ सकती है, इवन बेबी की मोर्टेलिटी भी हो सकती है. बट वो रिस्क उसने एक्सेप्ट किए एंड ऊपर वाले का कर्म था कि कुछ नहीं हुआ. एवरीथिंग वॉज फाइन, मदर वॉज फाइन, बेबी वॉज फाइन. बट उसने इतना रिस्क लिया और उस वक्त हमारे लिए मदर ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए नील लाइकर नो लाइकर पे भी मैंने नॉर्मल डिलीवरी कराई. बट अब कोई दूसरा पेशेंट एकदम वही रील देख के मेरे पास आ जाए कि मैम वो तो नील लाइकर पे, इट इज नॉट पॉसिबल ना.
1: एब्सोल्युटली.
0: आई वॉज द वन हु डिलीवर्ड नॉर्मली, बट उस पेशेंट के लिए आई विल नॉट. की अगर मदर हमें बेबी का रिस्क ले लिया, कुछ हो जाता भगवान ना करता, फिर हम ही लोग उसके लिए आंसरेबल होते ना. बट वो सिचुएशन अलग थी. तो एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट.
1: गाइस मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर हम इन्हें अवॉइड करते हैं और यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी लाइफ में. तो आप लोग प्लीज इसे सुनिए और आपको कैसा लगे अपने फीडबैक डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे एंड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे. और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैम से हम और बातें करें तो आप वो भी हमें बता सकती है मैसेज करके. हम भी एक शाउट आउट आपको जरूर देते हैं. बिग शाउट आउट आपके लिए, बहुत अच्छी बात है और ये हर कोई नहीं करता है मैम. बट एक्चुअली इस टाइम ऐसा हो गया लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं आ पा रहे, लोग नहीं मिल पा रहे, तो इतनी वो रील देखते उन्हें ये तो पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है. हम भी आपको बेस्ट विशेष देंगे और ये बंद मत करिएगा, अभी तो हमारा टाइम है तो जब तक तो शायद बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी.
0: Exactly.
1: है ना. सो बहुत अच्छी बात है मैम एंड वंस अगेन लवली टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा
0: आई फील वेरी नाइस. मतलब हमें मिल नहीं पाता है बट मेरा मन अंदर से करता है कि हम बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज करें, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है.
1: Exactly.
0: बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, लेडीज नहीं पूछ पाती है, नहीं आ पाती है, बट आपका रेडियो घर घर में जा रहा है.
1: Exactly.
0: करना कुछ नहीं है, एक बटन दबाना है
1: बस.
0: तो आज की शायद मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन उनको अप, मतलब अपराइज करेंगी, कुछ ऐसी अंदर से

0: बातें होंगी जो उन्हें नहीं समझ में आ रही होंगी कि यार ये मेरे साथ ही होता है क्या। तो मैं ये कहानी बता रही हूँ, ये हर घर की कहानी है क्योंकि ये मेरे चैम्बर में रोज। तो आई वॉन्ट टू टेल देम कि यू आर नॉट अलोन, आई एम देयर, एवरीबडी इज देयर। तो हम एक दूसरे का सहारा बने तो ज्यादा बेहतर है। मैंने बहुत सुन लिया औरत औरत की दुश्मन होती है, बट मैं यहाँ दुश्मन नहीं बनना चाहती, मैं सबकी दोस्त बनना चाहती हूँ।
1: वेरी नाइस सेनेटर, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत जरूरी है स्मित को दूर करना भी। लास्ट में आपने बहुत मुद्दे की बात बोल दी है। एंड गाइस फाइनली अब हम लेंगे आपसे इजाजत, मैम को किसी दिन बुलाएंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। डोंट वरी, मुझे पता है आप लोग मैम को बहुत अच्छे से जान चुके हो, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी दिन अलग से पॉडकास्ट करते हैं। मतलब कैसा आपका जर्नी रहा, ये अपना जो भी आपने किया अभी तक, उस पर हम बात करेंगे। उस पर वेरी नाइस, उस पर हम ये आपका फिर कोई मतलब मैम गायनोकोलॉजिस्ट बन के
0: नहीं,
1: राशि का बन के आएंगे, सिर्फ अपनी आपने कैसे किया है अपनी लाइफ को। ये बहुत अच्छी बात है। सो क्योंकि वहाँ पर हम जाते हैं तो मैम के पास इतना टाइम नहीं होता है, बिकॉज शी इज वेरी बिजी है, और वो होना भी चाहिए भाई, अपने काम पे ही फोकस होना चाहिए। सो बट मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन, और हम जल्दी मिलते हैं वेरी सून, कुछ नया करते हैं। एंड गाइज आप कहीं मत जाइए, एक अच्छा सा गाना छोड़ के जा रहे हैं, मैंने और मैम ने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला है, तो ये गाना आपके लिए लगा के जा रहे हैं। और बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, मेरे से अगर कुछ पूछना है आपको, आप आना चाहते हो स्टूडियो तो मोस्ट वेलकम है। ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, मेरी आईडी है रेडियो वाला आनंद के नाम से। और बाकी मैम एक बार आप इंस्टा हैंडल बता दूं,
0: मेरे नाम से डॉक्टर
1: राशिका गुप्ता। मैं इनका एक रील शेयर करता हूं पिज्जे वाला, बहुत हमने उसको आज हाईलाइट कर दिया है, तो आप वो क्लिक करोगे तो मैम के अकाउंट पे पहुंच जाओगे। बाकी के लिए प्लीज ऐसे ही कीप लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। मैम मेरे साथ बोलो, रेडियो बजाते रहिए,
0: रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहो,
0: गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: क्या बात है, इन्होंने तीन बार बोल दिया। चलो फिर मिलते हैं, बाय गाइस, थैंक यू।

0: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: हेलो जी, कैसे हालचाल है? यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूं भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
4: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
5: हाँ हाँ,
4: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
5: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
4: जी,
5: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं,
4: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
6: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
4: जी,
6: जिसका नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
4: चलिए, बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
6: हाँ, तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
4: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
6: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
4: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
6: देखिए, आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए, और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता
4: है। करेक्ट करेक्ट।
6: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
4: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
6: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
4: बहुत जरूरी है।
6: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पे हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी पड़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
4: उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
6: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
4: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है, शायद अगर मैं कहूँ तो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देखे जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
6: ये टॉपिक इतना डीप मैं कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
4: आई थिंक
6: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और हमारे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
4: क्या बात है।
6: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
4: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीच है,
6: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
4: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल,
4: है ना। जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो और मजा आता है।
6: देखिए, फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके, है ना, तो उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स
4: हर किसी बंदे
6: हर
4: को, हर
6: किसी
4: दूसरे
6: बंदे
4: बंदे के
6: फैमिली
4: सामने आ
6: में,
4: रही
6: कहीं ना
4: है,
6: कहीं
4: फैमिली
6: मैं
4: में चल रही है।
6: देख रहा हूँ,
4: गॉट
6: तो
4: इट,
6: कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना, आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होके मत बैठ, मैं यहाँ पे आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
5: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
6: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
4: ओके, लिटिगेशन, ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
6: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
4: ओके,
6: ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
4: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का यू नो जिक्र होता है?
6: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
4: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर।
6: PIL,
4: PIL का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
6: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
4: लिटिगेशन के बारे में बात।
6: देखिए, जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
4: ठीक है,
6: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
4: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
6: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
4: करेक्ट,
6: उसको बैठ के
4: समझौता किया जाए, बेसिकली
6: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कम्पनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए,
4: मतलब दोनों पार्टी के बीच।
6: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
4: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
5: जी। हाँ,
4: यस। तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
6: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
4: हाँ, ठीक है,
6: सुनी होगी ना?
4: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
6: तो PIL क्या होता है? एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
4: करेक्ट
6: है ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लिटिगेशन यानी याचिका होती है। ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए ये फाइल नहीं कर सकता,
4: ठीक है,
6: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की ये वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं। या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है,
4: ओके,
6: ठीक है,
4: अच्छा,
6: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होते हैं, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए,
4: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
6: बिल्कुल,
4: तो पब्लिक की
6: पब्लिक
4: की बात
6: पब्लिक की बात होनी चाहिए,
4: करेक्ट।
6: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
4: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
6: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
4: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
6: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी
4: आप पब्लिक के लिए ही
6: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी। सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं
4: राइट,
6: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला सकते हैं।
4: बेसिकली मॉडल पॉइंट की कुल मिला के पब्लिक के लिए ही चीजें चल रही
6: बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके सार्वजनिक।
4: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरकार दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर। पहला क्वेश्चन इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बेसिकली
6: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका होती है पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही।
4: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
6: जो हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है तो उसको लेके ही हम
4: आवाज उठाना और
6: उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं। इंडिविजुअल के तौर पर नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पर कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और
5: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी व्यक्ति या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
6: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
4: ठीक है,
6: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते उसके लिए। और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशंस हैं और जो एप्लीकेशन है वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
4: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। सर अच्छा ये बताइए, PIL और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
6: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं,
4: ठीक है,
6: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
4: ठीक है,
6: लेकिन PIL सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता PIL नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
5: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
6: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेश आप PIL दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हो, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हो तो उसके खिलाफ भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं।
4: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से रिलेट पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ PIL की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये वहाँ
6: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो PIL की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
4: करेक्ट, अरावली। हाँ,
6: तो अरावली हिल्स क्या था, अरावली हिल्स में ये था कि वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे कि जितने भी भूमाफिया थे या लैंड माफिया थे वो खनन वहाँ पे कर रहे थे। वो उस खनन की वजह से जो वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था उसके खिलाफ PIL डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
4: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ। सर आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
6: बिल्कुल बिल्कुल।
4: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम PIL के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे हैं ये है क्या, व्हाट इज दिस PIL, इसके थोड़ा सा इसका यू नो एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
6: देखिए पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
4: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से। ध्यान रखना,
6: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि पीआईएल की फुल फॉर्म
4: सर मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो तेरा शो है पब्लिक इंटरेस्ट
6: लिटिगेशन
4: लिटिगेशन यार पब्लिक सीखने को मिली है।
6: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो
4: जी जी सर,
6: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
4: ओके
6: ठीक है,
4: तो देखिए गाइज अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं, और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए, हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आपको गूगल नहीं करना
5: चाहिए, गूगल करके निकाल लेंगे तुम ये।
4: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ, जितना दिमाग तू चलाती इतने हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बैक टू पॉइंट। हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
5: हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पीआईएल के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
6: यस बिल्कुल कराई जा सकती है, अगर जनहित याचिका पीएल के माध्यम से हम सरकारी नीतियों योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है।
4: हाँ जी हाँ जी,
6: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
5: क्या बात है।
4: अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पीआईएल कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जरा।
6: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो पीआईएल का महत्व और ज्यादा ही बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे ना गूगल पे तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
4: एब्सोल्युटली 100%
6: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर पीआईएल नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है, और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी पीआईएल के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और पीआईएल भी दाखिल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए। जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को चैट भी करें तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है, तो इसको लेके भी कई पीआईएल जो है दाखिल करी थी, और पीआईएल दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शन दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि भी जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए।
4: नहीं होना चाहिए,
6: तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
4: 100% राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में पीआईएल से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
6: देखिए हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले, अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक पीआईएल आपने देखी होगी अभी जैसे चुनाव पारदर्शिता,
4: ये तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
6: भाई, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही।
4: करेक्ट करेक्ट वही ना,
6: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
4: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना।
6: हाँ
4: इस पर हम बात कर रहे हैं अभी,
6: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ पीआईएल डेफिनेटली
4: रहती
6: है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
5: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
6: देखिए हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है, तो उसको लेके जो है कई एक एनजीओ हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, एनजीओ एडवोकेट्स हैं, वो लोग अपनी पीआईएल या जब उनको लगता है एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसको लेके अगर पीआईएल दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है, और पीआईएल के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
4: ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया, और ये जो आपका पीआईएल का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ। एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में। एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है, सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे। एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को ये शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना। और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
6: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी एफएम मुरादाबाद 89.6 है,
4: जी जी
6: सुनते रहिए, और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए, और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
4: इन्फॉर्मेशन भी अपने ऐड कीजिए,
6: अपने घर वालों को भी सुनाइए एफएम।
4: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला। और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास
6: अच्छा,
4: के लोग हैं।
6: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा,
4: जी सर,
6: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है,
4: हम अपने समुदाय की बात करते हैं,
6: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं।
4: गॉट इट सर, और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज, और ये आम जनता की आवाज है, इसीलिए आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
7: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे
4: लेकिन
7: में पता भी
4: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा आज का, तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग, मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है, मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
7: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे, मतलब इन्होंने
4: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा, और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था, तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं, क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का। सर बहुत बहुत थैंक यू, आप आए, एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, नारा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सी तू अपना सायू नारा करेगी या नहीं है ये बता अभी।
7: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
4: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना।
7: नहीं हम घर पर भी बना सकते हैं,
4: वो मुझे नहीं पता, फिलहाल ये लीगल टॉक से यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन, इट्स नॉट रेसिपी शो।
7: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं, हम श्रोताओं आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रॉक मचाते रहिए
4: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए, और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो। तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, नमस्कार।
8: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
9: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
10: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत,
11: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
10: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा डब्ल्यू www.swachhataheseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
11: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूँ साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं। कॉल

हैं आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें। पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहे, जागरूक रहे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते शहरों की, बदलती तस्वीर की और सबसे अहम आम लोगों की बदलती जिंदगी की।
1: और आज हमारा सफर है उस शहर का जिसे दुनिया नवाबों का शहर, तहजीब और अदब के शहर के रूप में जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की।
0: दोस्तों, लखनऊ की पहचान जहाँ एक ओर उसकी गंगा जमुनी तहजीब, चिकनकारी और खान पान से है, वहीं दूसरी ओर बीते कुछ वर्षों में शहर ने विकास की नई रफ्तार भी देखी है।
1: बेहतर सड़कें, मजबूत कनेक्टिविटी, आधुनिक परिवहन, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव और आम लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच, लखनऊ की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है।
0: और दोस्तों, विकास की असली कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों या सड़कों की नहीं होती। विकास तब मायने रखता है जब उसका फायदा समाज के उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए एक पक्का घर, राशन या शौचालय जैसी सुविधा जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आती हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद परिवारों तक ऐसी सुविधाएं पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: तो आइए आज के इस सफर में लखनऊ के विकास की कहानी को आंकड़ों से नहीं बल्कि लखनऊ के आम लोगों की जिंदगी में आए बदलाव के जरिए समझते हैं।
1: हमारी पहली कहानी है अनीता जी की। अनीता जी एक गरीब परिवार से आती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी आसान नहीं था,
0: लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद उनके परिवार की जिंदगी में कई बदलाव आए। परिवार को राशन, आवास और शौचालय जैसी सुविधाओं का लाभ मिला।
1: अब जरा उस दौर को याद कीजिए जब घर में शौचालय नहीं था। खासकर महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी परेशानी रही होगी। जरूरत के लिए घर से बाहर जाना, समय का ध्यान रखना और कई तरह की असुविधाओं का सामना करना, ये सब रोज की जिंदगी का हिस्सा था।
0: लेकिन जब घर में शौचालय बना तो सिर्फ एक सुविधा नहीं आई बल्कि परिवार को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान भी मिला।
1: आइए अब सीधे अनीता जी से सुनते हैं कि इन योजनाओं ने उनकी जिंदगी को किस तरह बदला।
0: विकास की कहानी, लाभार्थियों की जुबानी। इस प्रोग्राम में हम उन लाभार्थियों के पास पहुंचते हैं जिनको सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उनके विकास की कहानी उनकी जुबानी ही हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनीता जी मौजूद हैं जिनको सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आइए जानते हैं कि इन लाभों से उनका जीवन कैसे बदल रहा है। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। आपका नाम अनीता है, आप काम क्या करती हैं?
2: हम भैया घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, सबको स्वागत करते हैं।
0: अच्छा, और हस्बैंड क्या करते हैं आपके?
2: खाना बांटते हैं।
0: अच्छा, और घर में कौन कौन है लोग?
2: घर में हमारे दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का, हम, हमारे हस्बैंड सुनील।
0: अच्छा, तो हम आज लोगों को सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, और आप लाभार्थी हैं। तो अनीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
2: भैया, हमका राशन भी सरकार दे रही है। सरकार राशन भी दे रही है, कॉलोनी भी हमारी बन चुकी है, लैट्रीन भी बन चुकी है।
0: अच्छा,
2: हाँ
0: जी। तो मतलब जो योजनाएं सरकार की चल रही है, जिनके पात्र आप हैं, वो आपको लाभ मिल रहा है। कब आपका ये जो है मकान सरकार ने बनवाया और शौचालय कैसे मिला आपको?
2: अरे भैया, तो मकान पहले जब प्रधानी रही तब मकान बना था हमारा, जीतू प्रधान जब रहे तब मकान बना, उसी में लैट्रीन बनी है।
0: सन आपको याद है कि किस सन में बना मकान?
2: भैया, ये तो हमका पता नहीं कब,
0: चार छह साल हुआ।
2: हाँ हाँ हाँ, ऐसे हो गया, छह साल हो गए।
0: अच्छा,
2: और ज्यादा ही हो गए, पहले पंची में रहे मतलब।
0: तो जब पहले मकान नहीं था तो क्या समस्याएं हुआ करती थी?
2: अरे भैया, बहुत समस्या, सब खाना, खेती ना, बारी ना, कुछ कमा। अब अगर आदमी कमा रहा तो खा रहे, वो आदमी अगर नहीं बीमार आजार हो गया, समझ लो भैया जो परेशानी हम ही लोग जानी थे। ना खेती ना बारी, कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं है खेती बारी। अगर मेरा आदमी कमाता है तो खाते हैं, अगर बीमार आजार हो जाते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं।
0: तो राशन मिल रहा है कि नहीं आपको?
2: राशन मिल रहा भैया,
0: उससे कुछ फायदा मदद मिलती है?
2: हाँ, फायदा मिलती है भैया,
0: सहयोग तो कुछ एक तरह से मिल रहा है ना?
2: जी जी, सरकार तो सहायता तो बहुत कर रही है, अच्छी कर रही है, बढ़िया कर रही है।
0: और शौचालय जब पहले नहीं हुआ करता था तब दिक्कतें होती
2: होंगी। हाँ दिक्कतें रहे, अब तो सरकार शौचालय चले सब सुविधा कह दी भैया, तो अब तो सही है, अब सब चीज सही।
0: तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगी जो इन सब कामों के करता धरता है?
2: भैया जी सही है, अपने जगह पे तो सही है, अपने जगह पे भाई सब लोग अपने अपने जगह।
0: आपका लाभ, आपको लाभ मिल रहा है सरकार की योजनाओं का, तो फिर आपका जीवन तो परिवर्तित हो रहा है ना?
2: जी
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: दोस्तों। अब चलते हैं लखनऊ के सरोजी नगर ब्लॉक की ओर, जहां हमारी मुलाकात होती है लक्ष्मी नारायण जी से।
1: लक्ष्मी नारायण जी उम्रदराज हैं, उनके परिवार को राशन की सुविधा मिल रही है, वहीं उनकी पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। इसके अलावा परिवार को कई अन्य सरकारी सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त हो रहा है।
0: लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया आवास योजना का लाभ मिलने के बाद।
1: एक समय था जब लक्ष्मी नारायण जी का परिवार कच्चे मकान में रहता था। कच्चे घर में रहना अपने आप में एक चुनौती था, और जब बारिश का मौसम आता था तो मुश्किलें और बढ़ जाती थी।
0: दोस्तों बारिश के दौरान घर की चिंता, रोजमर्रा के काम में परेशानी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता, इन सब का असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ता था।
1: लेकिन जब उन्हें पक्का आवास मिला तो उनके लिए जिंदगी काफी आसान हो गई। अब सिर पर एक सुरक्षित छत है और परिवार पहले की तुलना में ज्यादा सुकून के साथ रह पा रहा है।
0: यही तो है जन कल्याण की असली तस्वीर। जब किसी योजना का लाभ कागज से निकलकर किसी परिवार के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और सुविधा को लेकर आता है।
1: तो आइए अब खुद लक्ष्मी नारायण जी से सुनते हैं कि आवास और दूसरी सरकारी सुविधाओं ने उनकी जिंदगी में क्या बदलाव किया।
0: विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, और आज एक ऐसी ही विकास की कहानी सुनाने के लिए एक ऐसे ही लाभार्थी के पास हम आ चुके हैं जिनको सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा मिल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर ब्लॉक में भटगांव ग्राम सभा के रसूलपुर गांव में हैं, और एक लाभार्थी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के बाद उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया, कैसे वो विकास को महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका?
3: मेरा लक्ष्मी नारायण।
0: अच्छा आपका नाम क्या है माता जी?
4: सुमन चौरसिया।
0: अच्छा अब आपसे ये जानना चाहेंगे, एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, तो आप लाभार्थी हैं, आप बताइए कि आपका विकास कैसे हो रहा है और क्या क्या सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है।
3: इस सरकार में यानी योगी सरकार में हमको कॉलोनी भी मिली है, लैट्रिन भी मिली है, जिससे हमको बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया हम लोगों के साथ में।
0: दादा कब आपको कॉलोनी मिली और कब शौचालय बना घर में?
3: ये शौचालय करीब करीब 2016 में बना है, पहले बन गया था, कॉलोनी मिली 2018 में।
0: अच्छा तो आपने कैसे आवेदन किया या कैसे आपको पता चला कि सरकार शौचालय बनवा रही है, सरकार आवास दे रही है?
3: पहले कुछ नहीं मालूम था, प्रधान के द्वारा हमको सब मतलब ये अवगत हुआ कि आपकी कॉलोनी आई है, और ये वाइफ के नाम से कॉलोनी आई थी, तो हमको पैसा मिला, हमने कॉलोनी बनवाई, और उसके बाद हमको पूरा पैसा मिला, लेबरिंग का पैसा मिला, सब कुछ मिला इस योगी सरकार में, और हमको बहुत प्रसन्नता है, लैट्रिन भी मिली, और हमको पहले घर टपकता था, सब कुछ दिक्कतें थी, छप्पर था, आज हम सुकून से रह रहे हैं।
0: दादी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अब तो पक्का मकान बन गया है, पहले दिक्कत होती थी क्या?
4: हाँ पहले बहुत दिक्कत होती थी, पानी उलचना पड़ता था, भर जाता था बरसाती में, बाहर लैट्रिन जाना पड़ता था, तो बहुत कीचड़ था, बहुत पानी था।
0: और अब?
4: अब आराम है, ठीक है, मोदी सरकार के योजना में हमका बहुत लाभ मिली है।
0: अच्छा। तो जीवन लोगों का बदल रहा है जो सरकार प्रयास कर रही है?
3: बहुत ज्यादा बदल रहा है, बहुत ज्यादा बदल रहा है। ये सब सुविधाएं आरसीसी बन गई, ये बन गया, सब बन गया, तो हम लोगों को सब सुविधाएं मिल रही हैं, और हमको क्या चाहिए।
0: राशन वगैरह भी मिलता
3: है? राशन भी मिलता है, वाइफ को मेरी वो मतलब वृद्धा पेंशन भी मिलती है। अच्छा, मतलब है सब सुविधाएं मिली हुई है हम लोगों को।
0: घर में कितने लोग हैं आपके?
3: चार लोग हैं, हम मेरी वाइफ, एक लड़का और बहू।
0: अच्छा, बच्चा क्या करता है आपका?
3: ये सामने दुकान पे है।
0: अच्छा, दुकान खोल रखी है। तो कहने
3: खुली है, दुकान अभी अभी खुली है।
0: तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरा जीवन है बहुत बेहतर से चल रहा है, सुकून से चल रहा है, और इसी को हम कहते हैं कि विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। आप सुनते रहिए और ऐसे ही लाभार्थियों के पास जाकर के उनके विकास की कहानी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों, लखनऊ की इस कहानी से एक बात साफ है, शहर का विकास सिर्फ चौड़ी सड़कों, बड़े प्रोजेक्ट्स और आधुनिक इमारतों से नहीं मापा जाता।
1: विकास की असली तस्वीर तब दिखाई देती है जब एक गरीब परिवार को राशन मिलता है, जब किसी घर में पहली बार शौचालय बनता है, जब किसी परिवार को कच्चे मकान की जगह पक्की छत मिलती है, और जब बुजुर्गों को पेंशन का सहारा मिलता है।
0: दोस्तों, लखनऊ अपनी तहजीब और विरासत को संभालते हुए विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है,
1: और विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश का हमारा आज का सफर यही संदेश देता है
0: कि जब विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचता है, तभी विकास सही मायनों में जन कल्याण बनता है। तो आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे यानी कि आरजे अभिषेक और
1: आरजे सोनू को इजाजत।
0: फिर मिलते हैं उत्तर प्रदेश के एक और शहर, एक और कहानी और एक और जन कल्याणकारी सफर के साथ। नमस्कार।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: ब्यूटीफुल।
1: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: वाओ।
1: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
0: जी।
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सर, समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
1: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स है जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं।
0: जी जी जी।
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी जी जी
1: जी। ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धोके ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट और अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
0: दिस इज कंगारू मदर केयर, आई थिंक
1: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
0: ऑलराइट।
1: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है।
0: जी।
1: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
0: ओके।
1: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है। कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है
0: तो जी,
1: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
0: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा जो नवजात शिशु होते हैं उनको, वो मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
1: बेबी को 2-3 आवर्ली इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं उनको नहीं पता
0: नहीं
1: होता
0: पता
1: है, वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
0: जी।
1: तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
0: ओके
1: क्योंकि क्या होता है अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
0: हाँ जी,
1: उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
0: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
1: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
0: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
1: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
1: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: ठीक है,
1: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: ठीक है, तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है, मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
1: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
0: जी,
1: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है।
0: हाँ
1: तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं, जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो 2 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
0: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
1: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
1: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है। उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
0: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश नहीं है जाते जाते?
1: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
0: हाँ जी,
1: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है।
0: जी जी।
1: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
0: हाँ जी हाँ,
1: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।

0: अरे नहीं,
1: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
0: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: रखने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी पर मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा ये कार्यक्रम। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरठ के जोन ए में 16,726 अवैध निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का दिया आदेश। शहर के बाकी हिस्सों के अवैध निर्माण को लेकर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन सत्र को किया संबोधित। कहा, देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती, इटावा सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में गुरुवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी है। भारी बारिश के चलते लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में आज स्कूल बंद रहे। राहत आयुक्त डॉ ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 48 घंटों से जारी भारी वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। राहत आयुक्त ने बताया कि पिछले 48 घंटों में अतिवृष्टि एवं आंधी तूफान के कारण प्रदेश में 15 जनहानि, 4 पशुहानि तथा 117 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 5 व्यक्ति घायल हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राहत आयुक्त ने बताया कि पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य से 19 गुना अधिक वर्षा हुई है। फरुखाबाद में सामान्य से 200 गुना, कानपुर नगर में 160 गुना तथा कन्नौज, कानपुर देहात और हरदोई में 130 गुना अधिक वर्षा दर्ज की गई है। राहत आयुक्त ने बताया कि नेपाल में हो रही भारी वर्षा के दृष्टिगत सीमावर्ती जनपदों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में नदियों के जलस्तर के बढ़ने की आशंका को देखते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अपील की है कि नागरिक अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए राहत हेल्पलाइन 1070 पर संपर्क कर सूचना दें। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और क्षेत्र में जाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 27 सितंबर के बाद हालात में सुधार होगा।
2: कल यानी कि 27 सितंबर को दिन चढ़ने के साथ साथ प्रदेश के दक्षिणी और मध्यवर्ती इलाकों में वर्षा में प्रभावी तौर पर कमी आने, परंतु तराई इलाकों में 27 सितंबर को भी भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। तदुपरांत 28 सितंबर से इसकी तीव्रता पूर्णतया समाप्त हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश में जारी भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर थम जाने की संभावना है तथा बारिश जो है 28 सितंबर से प्रदेश के तराई इलाकों में छिटपुट वर्षा तक सीमित हो जाने की संभावना है।
0: लगातार बारिश के चलते अमरोहा, जौनपुर सहित कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। पीलीभीत में गन्ना, धान और सब्जियों की फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारी बरसात से जलभराव हुआ है और तेज हवाएं चलने से फसलें खेतों में गिर गई हैं। इससे धान, गन्ना व सब्जियों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका ने सोमवार तक बरसात जारी रहने की आशंका जताते हुए खेतों में जमा पानी निकालने को कहा है। शारदा और देवहा नदियों में बैराजों से काफी अधिक पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करने को कहा। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ अवैध निर्माण से जुड़े पुराने निर्देशों का पालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने शहर के तीन अन्य क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को फिरोजाबाद के ओडीओपी ग्लास वर्क से निर्मित भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किस्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
5: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
4: जौनपुर के लाभार्थी नीरज गुप्ता ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना से मिले ऋण ने उन्हें अपना कारोबार शुरू करने का अवसर दिया और आज उनका परिवार बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहा है।
6: प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाई गई यह स्वनिधि योजना है, एक छोटे मोटे रेडी पटरी वालों के लिए स्वनिधि एक बोस्टर काम करता है और ये उनके बिजनेस को बढ़ाने का काम किया है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने रेडी पटरी वालों के लिए ऐसी योजनाओं को उन्होंने लाया जिससे गरीब लोगों का विकास हो सके।
4: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए यूपीआई लिंक्ड रूपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ यह कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। राहुल यादव, आकाशवाणी समाचार, जौनपुर।
0: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन यूपीज जर्नी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स लीडर टू एआई एंड सेमीकंडक्टर पावर हाउस सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का अगला ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाना है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक बारिश और आंधी तूफान के चलते गई 15 लोगों की जान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी पर मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा यह कार्यक्रम। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरठ के जोन ए में 16,726 अवैध निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का दिया आदेश। शहर के बाकी हिस्सों के अवैध निर्माण को लेकर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन सत्र को किया संबोधित। कहा देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से, जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरा कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और इस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाती बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात ODOK की तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ प्यारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं, तो इतने भक्ति अब शायद माइंड में रहा होगा। अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से इतनी पानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उसमें कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो भाई सभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचन पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े से कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आँच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई के किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।

0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है। जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है। कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है, लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही,
0: और सबसे खास बात, ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए हैं।
0: जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उछे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है।
1: और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचन पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे,
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचन पेड़ा, लड़वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
2: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: और जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसी नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। सुनवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऑनलाइन की जाएगी। यदि सुनवाई आवश्यक हो तो मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि SIR के दौरान जिनका नाम छूट गया है, वे अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, तो वे संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नामांकन के लिए तत्काल विशेष अभियान शुरू करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी पर्याप्त संख्या में सहायता केंद्र स्थापित करेंगे और रात्रि आश्रयों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और बेघरों के लिए विशेष शिविर आयोजित करेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध के बाद आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ATS वाहन फिटनेस जांच व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: बुराड़ी स्थित इस 5 लेन वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की प्रतिवर्ष 1,00,000 वाहनों की फिटनेस जांच करने की क्षमता है। बुराड़ी ATS में 40,000 भारी मोटर वाहनों और 60,000 हल्के मोटर वाहनों की वार्षिक जांच की जा सकेगी। यहां वाहनों के फिटनेस का परीक्षण पूरी तरह स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसमें ब्रेक दक्षता, सस्पेंशन प्रदर्शन, हेडलाइट की स्थिति, साइड स्लिप, उत्सर्जन स्तर और वाहनों के निचले हिस्से की जांच सहित विभिन्न मानकों का परीक्षण किया जाएगा। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह 5 लेन वाला आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन वाहनों की फिटनेस जांच को वैज्ञानिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही फिटनेस, सटीक जांच और बेहतर निगरानी से प्रदूषण के खिलाफ मजबूत प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए शकलैन अख्तर।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री और राजौरी गार्डन विधानसभा से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पंजाब डेयरी मुखर्जी पार्क से संत नगर एक्सटेंशन तक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि सुभाष नगर नाले से होकर गुजरने वाली सड़क की स्थिति पिछले 10 से 15 सालों से बेहद बदहाल थी।
3: ये बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी थी कि हमें सड़कों के ऊपर से तारों को भी हटाना है। ये तारों का जंजाल इस इलाके में फंसा हुआ था, जिसके कारण सुभाष नगर ड्रेन के साथ साथ लोगों को चलने में दिक्कत आती थी। जगह जगह ट्रांसफार्मर थे, सड़क इतनी छोटी हो चुकी थी। अभी सारी की सारी जो आप तारें देख रहे हैं ओवरहेड, इन सबको खत्म किया जा रहा है। 300 करोड़ के यहाँ पे आज काम चल रहे हैं, जिनके कारण इस इलाके के लोगों के पास साफ पानी, नई सीवेज की लाइनें, नई सड़कें, नई लाइटें और सारे कूड़ेदान को हटाने का काम किया गया।
0: श्री सिरसा ने कहा है कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से स्थानीय निवासियों और राहगीरों को जाम से मुक्ति मिलेगी तथा आवागमन पूरी तरह सुरक्षित और सुगम होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में उद्यम संवाद 2026 का आयोजन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में MSME, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, उद्योग संघों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर सरकारी सहायता और विकास, नवाचार तथा व्यवसाय विस्तार के अवसरों पर विचार विमर्श किया।
4: इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के उद्योग मंत्री

0: मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जहां उद्यमी को केवल बिजनेस आइडिया और मॉडल तय करना हो और सरकार हर चरण में उसका सहयोग करे।
1: हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम उनके लिए एक एसेट बने, हम उनकी सपोर्ट इस तरह से करें जैसे किसी प्राइवेट आदमी को उम्मीद होती है कि मैं अगर दरवाजा खड़काऊंगा मुझे सर्विस मिलेगी। दिल्ली सरकार अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर रही है। दिल्ली के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं, हम जगह जगह पे वहाँ पे बिजनेस सेंटर बना रहे हैं, वहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स लोग अपने रख पाए सामने एग्जीबिशन में और बाहर आकर देख पाए, ये कंसेप्ट ला रहे हैं।
0: एक दिवसीय उद्यम संवाद 2026 में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम तथा निर्यात संबंधी योजनाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा स्टार्टअप योजनाओं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की योजनाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए। सकलीन अख्तर के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
2: दिल्ली नगर निगम MCD का खतरनाक भवनों, अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान जारी है। निगम ने बताया कि आज चलाए गए अभियान में 15 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई, जबकि 6 संपत्तियों को भी सील किया गया। निगम के अनुसार भवन निर्माण संबंधी निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन मामले में 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। निगम ने कहा कि अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम के पूर्वी जोन ने आज राजधानी एनक्लेव पार्क क्षेत्र में मेगा स्वच्छता अभियान तथा गुजरात विहार से करकरी मोड़ तक विशेष रोड डस्ट क्लीनिंग ड्राइव चलाया। निगम ने बताया कि इस मेगा अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों की सफाई, कचरे और मलबे के निस्तारण तथा सड़क किनारे जमा धूल को हटाने पर विशेष जोर दिया गया। निगम के अनुसार अभियान के तहत लगभग 8 टन मलबा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और रोड डस्ट हटाया गया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समितियां संबंधित त्योहारों के लिए स्थानों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के साथ साथ आयोजन स्थलों पर आवश्यक नागरिक सुविधाओं, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, बिजली, चिकित्सा तथा अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी में इन प्रमुख धार्मिक पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं और आयोजन समितियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पर्वों से लाखों लोगों की श्रद्धा और भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, भक्ति और आत्मीयता के साथ अपने पर्व मना सकें और उन्हें आयोजन पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है ताकि धार्मिक आयोजनों में सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और सौहार्द का वातावरण बना रहे। सकलैन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फिजियोथेरेपी एशिया वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वस्थ और अधिक सक्रिय जीवन के निर्माण में फिजियोथेरेपी के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में फिजियोथेरेपी केवल एक पेशा मात्र नहीं है बल्कि यह एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र के रूप में विकसित हुई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि फिजियोथेरेपी सबसे महत्वपूर्ण उपचारात्मक इलाजों में से एक है।
4: कोई भी इंजर्ड स्पोर्ट्स पर्सन केयर के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो पाता है और फिटनेस सिर्फ सर्जरी नहीं मांगती, फिटनेस प्रिवेंटिव केयर मांगती। फिटनेस उन सभी थेरेपीज को चाहती है जिसके कारण से आप एक हेल्दी लाइफ जी सके। और आज की डेट में मैं मानती हूँ कि फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसकी जरूरत मुझे, आपको, हम सबको अपने इस पूरा डे केयर में जरूरत पड़ती है।
2: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि भारत और चिली भले ही दुनिया के दो अलग अलग छोर पर स्थित हों, लेकिन दोनों देशों की आत्मा, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं में गहरा जुड़ाव है। उन्होंने चिली की राजधानी सैंटियागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और चिली के बीच संबंधों की वास्तविक शक्ति दोनों देशों के लोगों के बीच बने विश्वास, आत्मीयता और मित्रता में निहित है। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय समुदाय केवल भारत से जुड़े लोगों का समूह नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in को लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तर्जिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वाश में जोशना चन्नप्पा और वेलावलन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय मौसम साफ रहा, हालांकि शाम के समय कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में SIR दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए उद्यम संवाद का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841। हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ और आरजे खुशी। मतलब भाई देखिए, जब भी टाइम मिलता है शाम को भी शो करने का तो हम सोचते हैं कि क्यों आई जाते हैं शो करने के लिए, क्योंकि आप सभी से दूर तो हम भी नहीं रह पाते हैं। घर आने के बाद थोड़े बोर होने लग जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो यार स्टूडियो चलते हैं, आप सभी के साथ कुछ गप्पे सप्पे लगाते हैं। फिलहाल आप ऑफिस से निकलने की तैयारियों में होंगे और बहुत से तो अभी ऑफिस में ही होंगे, और क्योंकि उनकी टाइमिंग होती है 10 बजे तक भी होती है। तो फिलहाल खुशी तुम ये बताओ, अभी घर से भागी भागी आई हो, क्या हाल है तुम्हारे?
5: मेरे हालचाल बहुत ही अच्छे हैं, और शाम की चाय, ओए होए होए,
7: मतलब तुम चाय पी के आ गई हो?
5: हाँ, मैं चाय पीकर आई हूँ। मम्मा ने गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय बनाई थी, तो उन्होंने कहा बेटा अब आप ऑफिस जा ही रहे हो तो क्यों ना एक कप मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीकर जाओ, आपका दर्द नहीं होगा और आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो मैंने कहा चलिए, एनर्जी हाई लग रही है या नहीं लग रही है आपको बताऊं मुझे?
7: नहीं, एनर्जी तुम्हारी हाई है क्योंकि तुम मम्मी के हाथ से चाय पीकर आई है ना, इसलिए।
5: हाँ, लड़की इशारा मेरा समझ गई है।
7: हाँ, और देखिए एक कप चाय मिल जाना तो आपकी थकान वैसे भी दूर हो ही जाती है, छूमंतर हो जाती है। तो फिलहाल हम इस इवनिंग शो में हम करने वाले हैं ऑफिस का मूड, यानी कि जब भी हम ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं ना तो जल्दबाजी में कभी कभी हम कुछ चीजें ऑफिस में ही छोड़ जाते हैं।
5: मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है यार। अभी देखो मैं ऑफिस से घर जाता हूँ तो कभी मैं अपना चार्जर भूल जाती हूँ, कभी मैं,
7: ये तो तुम डेली भूलती हो,
5: कभी मैं कुछ जो यू नो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, कुछ ऑर्डर्स मेरे आते हैं
7: वो भी बहुत टाइम तक रहते हैं तुम्हारे ऑफिस में।
5: एंड कोई मुझे गिफ्ट देकर जाता है तो वो भी मेरे यहीं पर रखे रहते हैं, और वो काम पहुंचाना रीना का होता है। रीना मेरी घर आती है, कहती है बहन आप अपनी ये जो चीजें हैं, जो गिफ्ट्स हैं, इनको संभालो वरना मैं रख लूंगी।
7: हाँ, एक्चुअली मैं शाम को ऐसा होता है कि जब मेरे को यहाँ मौका नहीं मिलता है तो मैं अकेली बोर होती हूँ तो मैं इसके घर चलाती हूँ और देखती हूँ कि इसका सामान यहीं रखा है, तो मैंने कहा चलो यार पहुंचा देता,
5: काम भी हो जाएगा नाम भी हो जाएगा।
7: यही है ना, किसी घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भले ही सामान आपका हो।
5: हाँ, एक तीर से दो निशाने, देख रहे हैं आप हमारे श्रोता, सुन रहे हो ना आप। चलो अभी हम कार्यक्रम को ना आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले, जैसे अभी रीना ने कहा कि ऑफिस में ना हमारी कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाती हैं, है ना। अपने ऑफिस का आप काम पूरा किया, लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और सीधा घर की तरफ निकल गए। रास्ते में मूड एकदम अच्छा है, लेकिन घर पहुँच कर जैसे ही फोन निकालते हैं एंड बैटरी देखते हैं 8% होती है, और तभी याद आता है चार्जर, लेकिन चार्जर तो ऑफिस में ही रह गया जनाब। अब वापस ऑफिस जाने का मन भी नहीं है और फोन बंद होने का डर भी है। कई बार घर जाने की इतनी जल्दी होती है ना कि हम अब फोन का चार्जर, ईयरबड्स एंड बॉटल जैसी छोटी छोटी चीजें वही छोड़ आते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है दोस्तों, अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले वही चीज ढूंढते हैं जो हम शाम को भूल जाते हैं, है ना। आप भी ऐसा करते हो ना? मुझे पता है, तभी आप इतना मुस्कुरा रहे हो जनाब। देखिए सबके साथ ये होता है, कॉमन सी बात है। ऑफिस से जब हम पूरा दिन काम करके थक कर घर जाने का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है।
7: अब तुमने ऑफिस की बात करी तो मेरे को ना कॉलेज की बात एक याद आ गई।
5: हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए।
7: मैंने जबकि मुझे पता था कि 10 दिन की छुट्टी पड़ने वाली है और मैं लंच बॉक्स कॉलेज में भूल आई थी।
5: ओहो,
7: 10 दिन बाद गई तो सोचो मैं उस लंच खोलने के बाद। और मेरी मम्मी डेली सुनाती थी, पड़े होंगे ऐसे ही ना, तूने उसे धो के रखा होगा, अब जाएगी ना 10 दिन बाद, जब उसको खोलेगी अच्छी परफ्यूम वाली खुशबू आएगी तेरे को। तो वो दिन मेरे को याद ही रहते हैं। बाकी ऑफिस से जब हम निकलते हैं तो जल्दबाजी इतनी होती है कि कुछ चीजें ठीक जाते हैं।
5: और सुबह जब हम ना बड़े प्यार से ऑफिस निकलते हैं ना, तो मम्मी बड़े प्यार से ना जो लंच बॉक्स पैक करके देती हैं, दोपहर में खाना खाया और फिर काम में लग गए। शाम जब आती है ना तो घर जाने की जल्दी इतनी होती है कि बैग उठाया और निकल गए। घर पहुँच कर बैग खोला और अचानक याद आया, अरे यार लंच बॉक्स तो ऑफिस में ही रह गया। फिर दिमाग में पहला सवाल आता है, अब कल सुबह कौन लेकर आएगा, और दूसरा सवाल, क्या उसमें कुछ बचा भी है या ऐसे ही छोटी छोटी चीजें ऑफिस लाइफ का हिस्सा है। खासकर जब दिन भर काम ज्यादा हो और शाम को जल्दी निकलना हो तो दिमाग बस घर पहुंचने पर लगा रहता है। तो बताइए आपने ऑफिस में अब तक सबसे अजीब चीज क्या छोड़ी है लंच बॉक्स में? हाँ बताओ। चैड, लंच बॉक्स में क्या छोड़ा है, कुछ बचाया है या नहीं? बस पूरा टिफिन फिनिश कर लेते हैं आप? कभी कभी ऐसा होता है ना रीना कि हम ना बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं या फिर दोस्त वगैरह ले आते हैं, हमारे जो क्लिक्स होते हैं, जो हमारे है ना फ्रेंड्स होते हैं, तो वो कुछ ले आते हैं तो हमारा लंच रखा रह जाता है। चलो आज तो पेट भर गया, अब लंच खाने का भी मन नहीं करता है।
8: और पता है जब घर जाते हैं ना तो देखते हैं मम्मी देख तो नहीं रही है, लंच को छुपके छुपके जो वो जो गाय के लिए खाना रखते हैं उसमें आराम से डालते हैं ताकि मम्मी को आवाज ना जाए। अगर मम्मी के पास आवाज गई तो 70 लेक्चर सुनने को मिल जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए सुबह उठती हूँ, तुम्हें ये नहीं दिखता है कि मैं तुम्हारे लिए सुबह उठ के लंच बनाती हूँ, यानी कि मुझे तो नींद आती नहीं है, तुम सबको ही नींद आती है, इसीलिए तुम लंच खाते नहीं हो, वापस ले आते हो। मतलब इतने ताने सुनने को मिल जाते
5: नहीं
8: हैं।
5: वो ताने सुनाने का उनका पूरा राइट भी बनता है ना रीना। देखो ना हमारी मम्मा सुबह 5 बजे उठ जाती है और इतनी मेहनत सबके लिए करती है ना, तो फिर थोड़ी सी तकलीफ तो होती है।
8: बिल्कुल, इसीलिए जब भी आप लंच लेकर जाए
5: तो उसको पूरा फिनिश करें,
8: करके ही लाए। अगर देखिए आप नहीं भी खा रहे, आपने सोचा कि हम बाहर से कुछ खा लेते हैं, तो कुछ जरूरतमंद को खाना आप दे दीजिए,
5: आप दे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ये ज्यादा बेस्ट आइडिया है।
8: लेकिन हम मिलेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद, वो भी बहुत जरूरी है।
5: अरे हाँ यार, चलो गाना सुनते हैं बड़ा प्यारा सा, उसके बाद लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें। बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर मजेदार गानों के साथ, बातों के साथ। दो कुड़ी इधर बैठी है जी।

0: श्रोताओं, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। फिलहाल आप सभी को गुड वाली इवनिंग है। आई होप कि आप सभी ने भैया घर में पकवान है ना बना ली होंगी, है ना। खुशबू जो आ रही है मुझे यहाँ तक आ रही है, खुशबू तुम्हें आ रही है?
1: हाँ, मुझे खुशबू आ तो रही है,
0: सोंधी सोंधी सी।
1: मुझे ना आलू गोभी की खुशबू आ रही है।
0: ये लड़की आलू गोभी बहुत खाती है इसलिए इसको आलू गोभी याद आ रही है।
1: मुझे मिक्स वेज बहुत पसंद है, आलू गोभी मटर और भी उसमें बहुत सारी सब्जियां हूँ। और हो
0: बहन, ठंड का मौसम आने वाला है, मटर आलू मटर ही मिलेगा, टेंशन मत ले।
1: हाँ, आलू मटर फिर तो बस हर घर में यही
0: आलू मटर गोभी मटर।
1: कोई रिलेशन वालों को फोन आते हैं रिश्तेदारों का भी तो हाँ जी ठीक है, हाँ आज खाने में क्या बनाया है? गोभी आलू, आज बनाया है मटर आलू, आज क्या बनाया है? गाजर आलू।
0: मोस्टली यही सुनने को मिल जाता है। फिलहाल देखिए हम काम की बात पर आते हैं।
1: हाँ।
0: यानी कि घर से शॉपिंग लिस्ट, शाम को ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और तभी घर से फोन आता है, आते हुए सब्जी ले आना और हाँ वो वाला सामान भी। अब वो वाला सामान तो पता नहीं कौन सा होता है। आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया इसका। और दूध भी। और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, हाँ हाँ सब याद है, रहेगा, सब ले आऊंगा। फोन रखा और दो मिनट बाद आधी लिस्ट गायब हो जाती है। रास्ते में ट्रैफिक मिला, फोन आया, किसी फ्रेंड से बात हुई और शॉपिंग वाला बात दिमाग से निकल गई। घर पहुंचते ही पहला सवाल, सामान लाए? और हम बैग की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे शायद सामान खुद बैग में आ गया हो। तो आज शाम घर से अगर शॉपिंग लिस्ट मिले तो उसे याद रखने की कोशिश मत करना, फोन में लिख लेना और बताइए आपके घर में शाम को सबसे ज्यादा कौन सी चीज लाने की बोली जाती है, तुम बताओ।
1: मेरे घर में सबसे जब मैं घर की तरफ जाती हूँ तो मेरी मम्मा का मुझे कॉल आता है कि बेटा जब आप आओ ना तो उधर से दूध लेकर आना।
0: हाँ।
1: और कुछ सब्जियों लिस्ट वो बता दी, देखो कॉल पे ये सब्जी लेकर आनी है। तो मैं जब घर ऑफिस से घर जाती हूँ तो मैं सामान जरूर लेकर जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे अभी आपने बोला कि फ्रेंड का कॉल जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार मेरी दोस्तों का कॉल आ जाता है और आपको बताया कि जब लड़कियां बात करना शुरू करती है ना तो वो रुकने का नाम नहीं लेती। एग्जाम्पल हमारे दोनों का ही ले लीजिए। तो क्या होता है, मैं भूल गई एक बार ऐसा ही, तो मम्मी ने बोला बेटा मैंने आपको सामान लाने के लिए बोला था, कहाँ है? तो मैंने सोचा वो तो मैं भूल गई और मैंने मम्मी को मतलब एक बहाना दिया, मैंने बोला मम्मी वो ना रास्ते में एक आंटी जी मिल गई थी तो उनसे मैं बात कर रही थी और मैं भूल गई आपको सामान लेकर आना।
0: तो मम्मी बोलती है कि दोबारा जाओ, है ना।
1: हाँ, फिर मम्मी बोलती है अभी दोबारा जाओ सामान लेकर आओ, उसके बाद घर पे बैठना आराम से।
0: लेकिन पता है खुशी, ऑफिस से निकलने से पहले घर से कॉल भी आ जाता है, अरे कितने मिनट में निकलना है? तो हम बोलते हैं बस 10 मिनट में निकल जाएंगे।
1: हाँ, बहुत कॉल आते हैं यार, मेरी फैमिली के तो बहुत ज्यादा कॉल आते हैं।
0: ऑफिस में शाम को एक लाइन बहुत बोली जाती है, बस ये काम खत्म कर लूं फिर निकल लूंगा, और बस और यही बस कभी कभी आधा घंटा खा जाता है। एक काम खत्म हुआ तो दूसरा सामने, दूसरा खत्म हुआ तो कोई और मैसेज आ गया, फिर अचानक लॉक देखते ही अरे इतना टाइम हो गया। घर पर भी बोल रखा है कि आज जल्दी ही आऊंगा, अब जल्दी निकलना है तो काम भी करना है और बैग भी पैक करना है। ऐसे में दिमाग की हालत ऐसी होती है जैसे एक साथ 5 ऐप चल रहे हो। तो बताइए आपके ऑफिस में बस 10 मिनट वाली बात सच में 10 मिनट रहती है या लंबी हो जाती है? मेरी लिस्ट तो हमेशा लंबी हो जाती है।
1: जब हम ऑफिस से घर की तरफ निकलते हैं ना तो हम सबसे कह देते हैं कि हाँ बस 10 मिनट लगेगा, लेकिन वो 10 मिनट ना कब 10-15 मिनट 20 मिनट में तब्दील हो जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता है। और ऑफिस से निकलते वक्त अपने लैपटॉप बंद किया, चार्जर निकाला, बैग उठाया, बाहर आ गए, लिफ्ट में पहुंचे, अचानक दिमाग में ना सवाल आता है लैपटॉप बंद किया था या नहीं यार, अब वापस डेस्क पर जाने की इच्छा भी नहीं होती है, है ना, लेकिन मन है कि मानता नहीं है। फिर किसी आप कलीग को कॉल करते हैं, यार मेरे टेबल पे देखा लैपटॉप बंद था या नहीं, और अगर कोई बोले हाँ बंद है तब जाकर चैन मिलता है। सच में एवरीवन यही होता है जब दिमाग घर जाने की जल्दी में होता है, छोटी सी बात भी बड़ा डाउट बन जाती है ना, डाउट हो जाता है ना मन में दीना। कई बार मेरे मन में भी डाउट हो जाता है कि पता नहीं मैंने चीजें ठीक से ऑफ की है नहीं की है, फिर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तुम बोलती हो हाँ ठीक है, तब मुझे लगता है कि चलो थैंक गॉड सब चीजें अच्छे से हो गई है।
0: लेकिन मुझे इसकी टेंशन नहीं होती है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाद भी कोई शो करने के लिए आने वाला है।
1: हाँ, फिर तो कोई इशू नहीं है, बट मेरे साथ होता है।
0: और मेरे साथ ऐसा कब होता है, जब मैं घर से निकलती हूँ ना तो ताला बार बार चेक करती हूँ, ये बंद हुआ या नहीं हुआ कभी? खुल तो नहीं जाएगा?
1: हाँ, मेरी फैमिली मेंबर्स भी ऐसे ही करते हैं, जब हमें कहीं जाना होता है घूमने के लिए या फिर कहीं भी रिलेशन में कहीं भी हम जाते हैं, मार्केट ही जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो ऐसे ही मैं भी ताला चेक करती हूँ लॉक किया है ठीक से या नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हमने सोचा कि हाँ लॉक कर दिया लेकिन वो होता नहीं है, इसलिए चेक करना पड़ता है।
0: ऑफिस से जब भी आप निकले तो एसी, लैपटॉप ये जरूर चेक करें कि बंद किया है या नहीं किया है। पता चले अगली बार आप अगले दिन ऑफिस जाए तो आपके बॉस बोले अहो बेटा ध्यान कहाँ रहता है, घर जाने के जल्दी में सब कुछ भूल जाते हो, ऐसे ही देख लो कुछ खराबी हुई ना तो सैलरी से पैसे काट लूंगा, ये बात जरूर सुनने को मिल जाती है। आप जरूर बताइएगा कि आपको मिलती है सुनने को या नहीं मिलती है। हमारा नंबर है 9837896896। फिलहाल बात करेंगे ट्रैफिक में सबको जल्दी क्यों लगती है। अब ऑफिस खत्म हुआ, शुरू हुआ घर पहुंचने का दूसरा चैलेंज। ट्रैफिक, पूरे दिन ऑफिस में बैठकर काम किया और अब लगता है कि बस जल्दी से घर पहुंच जाए, लेकिन सड़क पर निकलते ही हर किसी को जल्दी होती है। आगे वाली गाड़ी धीरे चल रही है, पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है और साइड से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक में हॉर्न बजाने से सड़क खाली होने वाली नहीं है। इसीलिए जितनी जल्दी घर जाने की हो उतनी ही जरूरी है पेशेंस रखें, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है और उसकी जल्दी नहीं, आप बस सुरक्षित पहुंच जाइए। तो आप देखिए जब ऑफिस से निकलते हैं तो आपको जल्दबाजी रहती है या फिर सोचते हैं कि यार घर ही तो जाना है, कौन से मुझे बॉस का डांट सुनना है जो मैं इतने जल्दबाजी करूं। पेशेंस के साथ गाड़ी चलाइए जी, क्योंकि शाम के वक्त ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है। लेकिन देखिए ट्रैफिक के साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे।
1: अब बात कर लेते हैं हम सिग्नल पर जल्दी। आजकल ना पता है रीना क्या हो गया है ना, आज के टाइम में ना इंसान के अंदर धैर्य बहुत कम हो गया है। पेशेंस नाम सुना है ना, धैर्य,
0: बिल्कुल।
1: आजकल हर लोग सोचते हैं जैसे 5 मिनट में मैगी बन जाती है ना, वैसे की सारी चीजें 5 में हो जाएंगी, बट ऐसा होता नहीं है। शाम को ट्रैफिक में सबसे ज्यादा टेम्पेशन कब होता है, जब रेड लाइट लगी हो और आपको लगता हो कि बस अभी निकल जाऊं तो 2 मिनट बच जाएंगे, लेकिन वही 2 मिनट कभी भी बहुत भारी पड़ सकते हैं। घर जाने की जल्दी में ट्रैफिक रूल्स को भूलना बिल्कुल समझदारी नहीं है। रेड लाइट है तो रुकना है, हेलमेट है तो पहनना है, सीट बेल्ट है तो लगानी है, और ड्राइविंग करते समय फोन नहीं चलाना है, क्योंकि ऑफिस में आज का काम ना भी जरूरी क्यों ना हो घर पहुंचने के बाद कल भी काम किया जा सकता है, लेकिन आपकी सेफ्टी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आज शाम घर निकलते समय एक प्रॉमिस करें, जल्दी होगी लेकिन रूल्स नहीं भूलेंगे।
0: ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही है, जल्दी हो लेकिन जल्दबाजी में जो ट्रैफिक रूल है उसको नहीं भूलना चाहिए। बस पहुंचने वाली हूँ है ना, यही बोलते हैं। घर से फोन आया, कहाँ पहुंची, और जब जवाब बस 10 मिनट में। अब असली कहानी शुरू, 10 मिनट बाद फिर फोन, अब कहाँ हो, जवाब बस ट्रैफिक में हूँ, और 20 मिनट बाद फिर से वही ट्रैफिक। शाम के समय हम सबने कभी ना कभी ये 10 मिनट वाला झूठ बोला ही होगा, और शायद अभी भी आपने बोला होगा। मतलब झूठ नहीं, उम्मीद होती है कि सच में 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक वाली प्लानिंग से नहीं बचता। इसीलिए घर वालों को एग्जैक्ट टाइम बताने की बजाय थोड़ा सस्पेंस, मतलब देखिए आप कभी भी घर से फोन आए तो ये मत बोलिए कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, उनको बोलिए कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि आपके पास कॉल भी आधे घंटे बाद ही आएगा। अगर आपने 5 मिनट बोला तो घड़ी में घर वाले ना टाइम देखते रहते हैं, भैया जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट हुआ कॉल आ जाता है आपके पास, और अगर देर हो गई तो एक कॉल करके बता दे, आखिर घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। और इसी इंतजार के साथ मैं लेती हूँ यहाँ पर म्यूजिकल ब्रेक, और फिर मिलेंगे आप सभी के साथ श्रोताओं, यही मिलने वाले, कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है जी।

0: अरे वारीना, ये गाना कितना खूबसूरत है ना। हमारी शाम कितनी खूबसूरत हो गई और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी ये गाना अब बहुत पसंद आया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और दोस्तों, रास्ते में ना याद आया काम, ऑफिस से जब आधा रास्ता हम निकल चुके होते हैं ना, फिर अचानक याद आता है, अरे वो जरूरी फाइल तो मैं ऑफिस में ही भूल गई या भूल गया। जब मन में दो आवाजें कहती हैं वापस जाऊं, दूसरी आवाज कहती है कल देख लेंगे, काम जरूरी है तो वापस जाना पड़ेगा, और अगर जरूरी नहीं है तो पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचते हुए निकल जाएगा। देखिए, जब आप ऑफिस से घर आते हैं ना, तो उससे पहले ना, घर आने से पहले ऑफिस में आप 5 मिनट ये चीजों चेक कर लीजिए, जो आपकी इम्पोर्टेंट फाइल हैं, जो मोस्ट फाइल्स हैं, कुछ काम है, कुछ चार्जेस वगैरह है, तो इनको पहले चेक कर लीजिएगा। एंड आपको शाम का ना, आपका जो शाम का आधे घंटे का स्ट्रेस है ना, वो बच जाएगा। ओके, इन चीजों को ध्यान में रखो, बाकी अपने सफर को एंजॉय करो। और आगे क्या बोलने वाले हो रीना, तुम क्या क्यों मुस्कुरा रही हूँ इतना? हाँ,
1: अरे मैं ये इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि घर पहुंचकर भी आराम नहीं मिलता है ना।
0: घर पहुंचकर आराम तो मिलता है, फोन चला। अच्छा चलो, अभी ये आराम की बात आपने की है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप ऑफिस से घर जाती हो तो सबसे पहले क्या करती हो आप ऑफिस से घर जाने के बाद?
1: देखिए, सबसे पहले मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो मेरा पहला काम यही होता है पूजा, क्योंकि यहाँ तो मेरी मम्मी पापा नहीं, मैं अकेली रहती हूँ ना, तो भाई पूजा टाइम पर होनी चाहिए। 7 बजे, 7 बजते ही घर में दीपक जलने स्टार्ट हो जाता है, 6 बजते ही।
0: जी जी जी,
1: लेकिन मैं तो लेट जाती हूँ, 7:30 भी हो जाते हैं, तो मेरे दिमाग में पहले पूजा ही क्या ख्याल आता है, उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ बहुत सोच समझ कर बढ़ती
0: हूँ। पूजा का ख्याल आता है और दीपक का ख्याल नहीं आता है?
1: अरे पूजा दीपक एक ही साथ जल जाता है ना।
0: पूजा तो अलग होती है और दीपक अलग होता है।
1: नहीं, हम भगवान जी का नाम लेते हैं।
0: हाँ देखिए, पूजा करना उसके बाद दीप जलाना, ये बहुत ही, हाँ, घर में एक पॉजिटिव वाइब आती है और अच्छा भी लगता है। अरे जब हम पूरा दिन ऑफिस से थक जाते हैं, जब हम भगवान के सामने मस्तक अपना झुकाते हैं और दिया जलाते हैं, तो मन को सुकून मिलता है।
1: हाँ, उनके सामने मतलब दिन भर की जो थकान होती है ना, मैं कभी कभी मतलब मैं परेशान भी होती हूँ ना, तो तुलसी के पौधे के पास जाकर बैठ।
0: अरे वाह क्या बात,
1: वहाँ जाकर मैं गुनगुनाती हूँ, कुछ मैं बातें कहती हूँ,
0: वहाँ पॉजिटिव वाइब फील होती है आपको?
1: मतलब मेरे अंदर जो भड़ास होती है ना, मैं सारी कहती हूँ वहाँ पे, आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैं परेशान। अच्छा, मतलब मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाँ नहीं, कोशिश अच्छी बात है, अपनी ना दिल में ना कोई भी बात रखनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी चीजें हैं वो उसको एक्सप्लेन करने से ना हमारा मन हल्का हो जाता है।
1: और मैं कहीं भी, चाहे घर रहूं चाहे बाहर रहूं, तुलसी का पौधा जरूर मैं अपने पास अपने घर में लगाती हूँ, और परेशान होती हूँ तो मेरा वही अड्डा होता है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट टाइम कभी तुम परेशान, मुझे लगा ना कि लड़की दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं अब मेरे को आइडिया मिल गया, ये पक्का तुलसी जी के पौधे के पास जाकर बैठी होगी।
1: हाँ, अब तुम्हें आइडिया मिल गया ना।
0: हाँ,
1: तो देखिए, ऑफिस से निकलते समय हम सोचते हैं आज घर जाकर आराम करेंगे, आराम करूंगी, लेकिन घर का दरवाजा खुलते ही दूसरा शेड्यूल सामने आ जाता है। सब्जी काटनी है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, घर का कोई काम है, या अगले दिन की तैयारी करनी है। जो हमारी लेडीज होती है ना, प्यारी विमेन होती है, उनके दिमाग में ये खुराफात जरूर चलता है जो ऑफिस से काम करके आती है। और साथ ही साथ खासकर वर्किंग वुमेन के लिए ऑफिस खत्म होने के बाद, मतलब हमेशा काम खत्म होना नहीं होता, इसीलिए अगर आप ऑफिस और घर दोनों संभाल रही हैं, तो खुद को भी थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कभी कभी खाना सिंपल हो सकता है, कभी घर थोड़ा मिस हो सकता है। आखिर इंसान है, मशीन तो नहीं है ना कि वो जाते ही सब कुछ रेडी कर देगा। क्यों सही कहा ना मैंने खुशी?
0: हाँ रीना, देखो आजकल ना, चाहे बॉय हो या गर्ल्स हो, एंड सभी वर्किंग हो गए हैं आजकल, क्योंकि वर्क करते हैं, ऑफिशियल वर्क है, घर का भी मैनेजमेंट है, सारी चीजें मैनेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि इंसान है, बॉडी है, कोई AI तो नहीं है, रोबोट तो नहीं है जो थकेगा नहीं, उसको जब चाहे काम पे लगा दो, है ना, तो उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि काम हमारा बाकी है तो वो भी कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप रेस्ट करो, थोड़ा खुद को, बॉडी को रेस्ट देना, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप काम शुरू कर लो, आपकी जो शाम है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बच्चों का इंतजार, ओहो मत पूछो भैया, बच्चे ना बार बार कॉल करते रहते हैं, हेलो दीदी आप कब आ रहे हो, कब मेरे लिए चॉकलेट लेकर आ रहे हो? मैं बोलती हूँ कि बस मैं आ रही हूँ, 5 मिनट लगेंगे, वो फिर कॉल आता है 5 मिनट के बाद, दीदी आपके 5 मिनट अभी कंप्लीट नहीं हुए। हमारे जो नेबर्स है ना, तो वहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे चाइल्ड हैं, बच्चे हैं चाइल्ड्स, और वो मेरे को ना एवरी इवनिंग उनको इंतजार होता है कि खुशी दीदी आएंगी तो कुछ ना कुछ मेरे लिए लेकर आएंगी। और जब मैं शाम को जाती हूँ तो फिर उन बच्चों से मैं बातचीत करती हूँ, उनके लिए मैं कुछ लेकर जाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है वो। मुझे भी खुशी होती है और उन बच्चों को भी खुशी होती है। कई वर्किंग पेरेंट्स के लिए शाम को घर जाने की जल्दी सिर्फ आराम के लिए नहीं होती है, बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। सुबह जाते वक्त कह दिया आज जल्दी आऊंगा, शाम को साथ बैठेंगे, लेकिन ऑफिस में काम बढ़ जाते हैं और निकलते निकलते देर हो गई। फिर रास्ते भर मन में वही बात चलती रहती है, ऐसे में अगर देर हो रही है तो बच्चों को बता देना अच्छा है। और जब घर पहुंचे तो फोन साइड में रखकर कुछ समय सिर्फ उनके साथ बिताइए, क्योंकि बच्चे शायद ये याद ना रखें कि आपने कितने घंटे काम किया, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि आपने उनको उनके साथ कितना समय बिताया, उनको आपसे बात करके कितना अच्छा फील हुआ। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि माना आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा काम होता है ऑफिस का, तो जब आप घर जाते हैं तो ऑफिस के बारे में भूल जाइए, सिर्फ अपने बच्चों पर अपनी फैमिली पर फोकस कीजिए।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए ऑफिस से निकलते समय बहुत दूर से ऑफिस से आते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जल्दबाजी के चक्कर में फोन का जो बैटरी है वो नहीं देखते हैं, 5% होता है या फिर 2% होता है, ऐसे में अचानक स्विच ऑफ भी हो जाता है और फिर घर से कौन आने लग जाते हैं, और जब फोन स्विच ऑफ आता है ना
0: फिर
1: तो घर वाले बहुत टेंशन लेते हैं, अरे कुछ हो तो नहीं गया
0: मेरी मम्मा। मैं आपको बताती हूँ रीना, इसी बात को मेरे को याद आया। एक्चुअली जब कहीं भी मेरे बड़े ब्रदर, मैं खुद ट्रैवल करती हूँ तो मेरी मम्मा ना फोन करती रहती है, मेरा फोन डाउन हो जाता है, मतलब फोन करते करते ब्रदर को, लेकिन वो उनको ना सुकून नहीं मिलता जब तक बच्चे बोलना देना कि हाँ हम पहुंचने वाले हैं मम्मी, तब तक वो कॉल करती रहती है। और कभी अगर जैसे फोन डाउन हो गया है तो वो बेचैन रहती है, बार बार दरवाजे से बाहर आती है, बार बार अंदर जाती है, मतलब देखती रहती है कि बच्चे कब आएंगे,
1: और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे घर पर
0: सही समय पर सलामत घर पहुंच जाए। इंडियन पेरेंट्स में ना इंडियन पेरेंट्स ये कल्चर है कि वो ना बस चाहते हैं प्रार्थना करने लगते हैं तुरंत अपने बच्चों के लिए,
1: जैसे बच्चे लेट हुए उनके फोन स्विच ऑफ आया, दिमाग में भी पता नहीं और ख्याल आने लगता है,
0: ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। पर ना देखो हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम पेरेंट्स के लिए ना हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं, वो हमें भी अभी भी ऐसे ही गाइड करते हैं जैसे अभी हम 2 इयर्स के हैं। संभल के जाना, ठीक है, गाड़ी ठीक से चलाना केयरफुली होकर, और हाँ किसी से अनजान व्यक्ति से ज्यादा बात मत करना।
1: हाँ ये तो आता ही है। और देखिए रास्ते में सामान लेने निकलते हैं, जब हम ट्रैफिक से आते हैं तो घर जाते समय याद आया कि एक सामान लेना है, सोचा रास्ते में दुकान से ले लूंगी, दुकान पहुंचे सामान लिया पैसे दिए और घर आए, घर पहुंचकर पता चला जिस चीज के लिए दुकान गए थे वही नहीं लाए।
0: अरे यार लड़की कैसी कैसी बातें कर रही है,
1: मेरे यही होता है खासकर
0: मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। पता है मैं क्या करती हूँ, मैं लिस्ट तो बनाकर नहीं लेकर जाती हूँ रीना, और जब मैं मार्केट में से सोच के जाती हूँ कि ये मेरे को सामान लेकर आना है मोस्ट, और मैं शॉपिंग करने जाती हूँ जो सामान की मुझे नीड नहीं होती है मैं वो ले लेती हूँ, और जिसकी ज्यादा आवश्यकता होती है वो मैं भूल जाती हूँ। फिर घर आकर मुझे याद आता है अरे यार ये तो मुझे सामान लाना था लेकिन भूल गई, फिर दोबारा जाना है। तुम्हारे साथ हुआ ऐसा?
1: हाँ मेरे साथ होता है, जो मतलब मेरे साथ बहुत कम होता है, लेकिन जो मेरा भाई है ना लगता है कि जरूरतमंद चीजें वही भूल जाता है और फिर बोलेगा

0: अब कुछ खिलाओ, रास्ते में समोसे, चाट, गोलगप्पे या चाय की खुशबू मिल जाए तो घर का खाना कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। खासकर शाम का ट्रैफिक और खाने की खुशबू, ये अनएक्सपेक्टेड बड़ा ही डेंजरस वाला हो जाता है। लेकिन रोज बाहर का खाना खाना भी सही नहीं है, कभी चाय और हल्का स्नैक, कभी घर का खाना बैलेंस जरूरी है। तो बताइए, ऑफिस से घर जाते वक्त रास्ते में सबसे ज्यादा किस चीज को देखकर आपका मन ललचाता है?
1: तो दोस्तों, आज की शाम हमने बात छोटी सी जल्दी की, जो हर ऑफिस गोइंग इंसान महसूस करता है। शाम होते ही घर जाने का मन, डेस्क पर छूटता चार्जर, ऑफिस में पड़ा लंच बॉक्स, रास्ते में याद आने वाली शॉपिंग लिस्ट, ट्रैफिक में फंसा घर वालों का फोन और फिर घर पहुंचकर भी कामों की एक नई लिस्ट, यही तो है हमारी रोज की जिंदगी, है ना? लेकिन इस पूरी भागदौड़ में ना एक चीज कभी मत भूलिएगा, अपनों के पास वापस जाना। इसलिए सुरक्षित वापस जाना है। आज जब आप ऑफिस से घर निकले, एक बार पीछे मुड़कर अपनी टेबल चेक कर लेना, सामान भी साथ लें, जो आपका सामान है वो भी साथ लेकर आए, और ट्रैफिक रूल्स भी याद रखिएगा। और अब मुझे दीजिएगा घर जाने की अनुमति, मैं भी चलती हूँ। एंड टेक केयर एवरीवन, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, केयरफुली गाड़ी चलाइएगा।
2: अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
7: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: वो सस्ता ऑफर है या फिर आपके लिए एक महंगी गलती। तो दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
1: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
0: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलामें देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले छात्र और गृहणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें
1: 1930
0: पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए ईश्वर से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप सबसे, करूंगा और भी बात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
2: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम में स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
4: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
5: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना तो उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो लीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
3: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
6: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
3: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।

0: उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
1: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
2: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3

0: रजत और दो कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉट पुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: हेलो जी, हाय, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज का ये शो बहुत ही खास है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास दूर से मेहमान जुड़ने वाले हैं आपकी शाम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। 23 जून की इवनिंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एंड इस शो में मैं बिल्कुल भी आपके साथ अकेला नहीं हूँ। ऑफकोर्स तुम्हें पता है प्राची कानपुर में ठग्गू के लड्डू बहुत फेमस है, प्राची से पूछ लेते हैं जरा।
5: अरे नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि ठग्गू के लड्डू क्या होते हैं, प्लीज आप हमें पूनम जी बताइए क्या होता है।
6: प्राची जी, एक बार खाएंगी ना तो बार बार खाएंगी।
4: अरे वाह,
5: अच्छा, कुछ रेसिपी शेयर करिए।
4: रेसिपी शेयर नहीं करेगी, वो बहुत फेमस लड्डू है, उसकी रेसिपी थोड़ी शेयर कर देंगे हम सस्ते में, है ना क्यों पूनम?
6: हाँ जी बिल्कुल,
5: मेन मेन इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए।
4: हाँ हाँ, ये हो सकता है कि ठग्गू के लड्डू में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो इसको जानना है।
6: अच्छा जी, तो वो तो फिर ठग्गू के पास चलना पड़ेगा।
4: हाँ एग्जैक्टली,
5: ठग्गू
4: कानपुर का दिस इज वेरी पॉपुलर लड्डू, पता है? हाँ या जैसे आगरा का पीठा फेमस है ना, वैसे ही कानपुर के ठग्गू के लड्डू, दिस इज वेरी।
5: लड्डू का नाम जो ठग्गू रखा है, ये बहुत मेरे इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा है। इसकी क्या कहानी है?
4: इसकी कहानी हम बाद में सुनाएंगे, क्यों पूनम एक गाना सुने फिर? अच्छा सा,
6: हाँ जी बिल्कुल, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस गीत के बाद पूनम और प्राची की हम आपस में कराएंगे, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं किया, एक दूसरे से बात नहीं की,
5: और मैं आपको बताऊंगी पूनम और प्राची में खास कनेक्शन।
4: एब्सोल्युटली, तो आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
5: बजाती रहिए, गुनगुनाती रहिए।
4: क्या बात है, एक ब्यूटीफुल ट्रैक,
6: सुनाते रहिए।
4: वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ पूनम के साथ, और साथ में प्राची भी दे रही है मेरा साथ। सो चलिए वापस चलते हैं अपनी प्यारी सी दोस्त पूनम के पास। पूनम क्या कर रही है, वो सो तो नहीं गई हमारी बातें सुन के? हेलो
1: हेलो,
0: मुझे लगा पूनम सो गई होगी। वेलकम बैक है पूनम जी। हाँ जी,
1: बिल्कुल शुक्रिया है बहुत आपका।
0: पूनम पूरा मुरादाबाद आपकी आवाज सुन रहा है आज की शाम। पहले तो ये बताओ कैसा फील कर रही हो
1: जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी लिसनर हैं वो हमें सुन रहे हैं और हमारी आवाज को भी सुन रहे हैं, तो सभी लिसनर बताएंगे कि लिसनर को कैसा लग रहा है कार्यक्रम सुनकर।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम में सबको बहुत आनंद आ रहा है, और जैसे कि मैंने कहा था कि पूनम और प्राची की थोड़ी बातचीत कराएंगे, तो पूनम जी मैं चाहूंगा हमारी प्राची जो होस्ट है उनसे भी आप थोड़ी बातचीत करें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो प्राची जी।
2: हेलो पूनम जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम एक साथ तीन इकट्ठा हुए रेडियो जॉकी। तो बताइए, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है प्राची जी बात करके और कार्यक्रम में जुड़ के?
2: बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम ठीक कहा कि हमें बहुत मजा आ रहा है कि हम तीन आज एक साथ जुड़े और हम बहुत सारा फन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और जैसा
1: खिचड़ी पका रहे हैं हम, है ना?
2: और पूनम जी, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपकी और मेरे नाम में एक खास कनेक्शन है, इसको हम अभी बता देते हैं अपने लिसनर्स को कि जो पूनम नाम है वो मेरी मम्मी का नाम है। तो जब मैंने आपका नाम सुना ना कि आपका नाम पूनम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा
1: क्योंकि आपका नाम प्राची, मम्मी का नाम पूनम और मेरा नाम पूनम, क्या कनेक्शन है यार।
2: और वो विवाह मूवी वाली पूनम याद आ जाती है ना
1: प्राची जी। तो हम दोनों का देखिए कितना बढ़िया कनेक्शन है और कितना बढ़िया सहयोग है आज की हम तीनों इकट्ठा है एक साथ।
2: और वैसे हमारे लिसनर्स, आप बताइए कि जो पीपी नाम की गर्ल्स होती है उनका जो होता है वाइब्स ज्यादा मैच करती है। मेरी अब तक जितने भी पी नाम वाली फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरी वाइब्स बहुत मैच करती है। तो लिसनर्स, क्या आपके साथ भी ऐसा है? अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी इतना पूनम पूनम हो गया है हमारी शादी में। पूनम जी, वो गाना तो डेफिनेटली लगता है,
2: प्ले करना पड़ेगा
0: प्ले, है ना?
2: हमारी शादी
0: अभी हफ्ते है बाकी, चार चार सो बरस लगे, कुछ ऐसे गाना है। पूनम जी, इतना पूनम पूनम हो गया है तो ये विवाह फिल्म का गाना तो सुनना बनता है। हो पूनम हो पूनम हो प्राची हो पूनम, अच्छा गाना है ना?
1: अच्छा, आप भी गुनगुना रहे हैं?
0: हाँ जी हाँ जी। तो पूनम जी, कुछ लाइनें हो जाएं इस गाने से पहले, हम चाहेंगे कि कुछ इरशाद अर्ज किया है पूनम जी आपने हमारे श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल, तो मैं सभी लिस्नरों के लिए बोल देती हूँ एक अच्छी सी लाइन और सभी को बहुत पसंद आएगी, तो इसलिए आनंद जी
0: जी जी
1: ध्यान से सुनिएगा और मैं अब अर्ज कर रही हूँ। फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते।
0: वाह।
1: फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते, बस जाते हैं वो एक दिल में आकर जो दिल से कभी नहीं जाते।
0: वाह।
1: फिलहाल ये जो लाइनें हैं लिस्नर आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी को हम बोलेंगे। और आप सभी सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद और बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी आप सुनने वाले हैं प्राची के साथ, आनंद जी के साथ और साथ साथ
0: इसी बात के हम भी कहना चाहते हैं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। वाह तो कर दो कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता प्राची। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, कि लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता पूनम जी, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता।
1: अनमोल नहीं होता, लेकिन हमारे लिसनरों की तरह कोई अनमोल नहीं होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच में। इसी बात पे गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस मिलते हैं। श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: Fasten your seat belt, sir.
1: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
0: वेलकम बैक यू लिसनर, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आप जुड़े हैं प्राची आनंद और पूनम जी के साथ।
2: बिल्कुल, और पूनम जी हमारी स्पेशल गेस्ट हैं आज के शाम, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ठगू के लड्डू की स्टोरी प्राची को जाननी थी, लेकिन उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने इसको ठग लिया बातों बातों में, है ना पूनम?
3: हाँ, तो कानपुरिया का यही तो काम है ना, कानपुरिया जो होते हैं ना, वो पहले बातों बातों में ठग लेते हैं।
2: हाँ, बेचारी प्राची सीधी साधी लड़की, उसको क्या पता कि कानपुरिया बहुत कंटाप मारते हैं।
3: बिल्कुल,
2: बहुत भोकाल मारते हैं, पता
0: अच्छा
2: है?
0: तो पूनम जी, यही स्टोरी है क्या जो, मतलब इसलिए लड्डू का नाम ठग्गू पड़ गया?
3: नहीं नहीं, ये तो वैसे स्टोरी नहीं है, और स्टोरी तो कुछ और ही है ठग्गू लड्डू की। फिलहाल तो फिर कभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर जानेंगे क्या स्टोरी है।
0: जब से आपने मुझे ठग्गू के लड्डू के बारे में बताया है ना, तो मेरी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि ठग्गू लड्डू ठग्गू कैसे बन गया।
2: प्राची की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है और मेरे अंदर की श्राइड बाहर निकल गई है, क्या मैं सुना जू?
3: बिल्कुल सुना दीजिए।
2: ठीक है, मेरी शायरी है कि भैया आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, यूं ही बनाए रखिए आप हमारे साथ अपना साथ, आपसे ही तो हमारे शो की जान है।
0: अरे बाबा, और इस शायरी को हम डेडिकेट करते हैं अपनी आरजी पूनम जी को, क्योंकि आज उन्होंने हमारे शो में आके हमारा जो मतलब एनर्जी लेवल है
2: और अलग कर दिया,
0: बहुत हैपनिंग कर दिया है, और हम सच में बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं आपके साथ आरजी पूनम जी। तो थैंक यू सो मच
2: फॉर कमिंग ऑन आवर शो।
3: बिल्कुल, मैं भी एक शायरी अर्ज कर देती हूँ सभी श्रोताओं के लिए, और शायरी कुछ इस तरह से है। कश्ती खोल हुए किनारों का पता खोज लेती है, कश्ती खोल हुए किनारों का पता खोज लेती है, आए हुए तूफानों का रुख मोड़ देती है। जिंदगी इस तरह से बदलती है, जिंदगी कुछ इस तरह से बदलती है कि जहाँ भी मोड़ो जिंदगी और मुड़ जाती है।
2: वाह वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मतलब आनंद आ गया जिसको पढ़कर। अब मुझे लगता है कि प्राची भी कुछ सुनाने वाली है पूनम जी इसी बात पर।
3: जी हाँ, बिल्कुल, अब प्राची भी बिल्कुल सुनाने वाली है और हम सब सुनने वाले हैं।
2: वेरी गुड,
0: थैंक यू सो मच पूनम जी कि आप मेरी शायरी सुनने के लिए इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। तो आपके लिए और हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मुझे याद आ रही है। दिल की बात जुबान तक आती है, दिल की बात जुबान तक आती है, और जुबान से गीत बन जाते हैं, और जुबान से गीत बन जाते हैं। आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, यही सर महफिल मुस्कुराहट बन जाती है।
2: वाह वाह वाह वाह, दोस्तों अभी फरमाइश मत भेजिएगा, क्योंकि अभी हम आपकी प्ले नहीं कर पाएंगे फरमाइश। प्राची ने इसमें फरमाइश का जिक्र कर दिया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी बात है, आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी बातों की, आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी प्यारी शेरो शायरी की, वो हम पढ़ेंगे, उनको हम शामिल करेंगे। गाने तो आप सुनते ही रहते हैं, क्यों प्राची?
0: बिल्कुल सुनते रहते हैं।
2: तो पूनम, इस पे कुछ कहना चाहोगी इस शायरी पे आप?
3: जी, मैं तो बस यही कहूंगी कि श्रोताओं, इतनी अच्छी चीज जो सिरो शायरी आप सब सुन रहे हैं ना, और बातों की जो खिचड़ी हम सब पका रहे हैं, तो आप सब बिल्कुल जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। और आप सभी को सिरो शायरी, जैसे कि हम सब कह रहे हैं वैसे ही याद आ रही हूँ, तो आप भी सिरो शायरी भेज सकते हैं और अपने अंदाज में, है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी बात में मैं पूनम जी आपके लिए कहना चाहता हूँ कि दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती वादा है उम्र भर निभाने का।
3: बिल्कुल
2: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सी लाइनें आपने बोली हैं आनंद जी, इसी पर दो लाइनें आपकी भी हो जाएं पूनम जी।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो इसी बात पे मैं भी एक शायरी अर्ज कर देती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बोलते हैं, ना दिन को करार ना रातों को चैन है, ना दिन को करार ना रातों को चैन है, देखते हैं बस आपको एक झलक, दिल हो जाता बेचैन है।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी बात पर एक गाना तो निकल रहा है हमारे दिल के तरंगों से, एक बेहतरीन ट्रैक आपके लिए निकल रहा है पूनम जी, हम आपके लिए गाना भेजते हैं, ठीक है?
3: जी जी,
2: और श्रोताओं आप कहीं मत जाइए, पूनम जी हमारे साथ बनी रहेंगी इस प्रोग्राम में। अगर आप भी कुछ ऐसी प्यारी बातें करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कहाँ पर मैसेज करेंगी प्राची?
0: आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 9837896896 पर।
2: चलो एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद आप

0: वेलकम बैक है, खूबसूरत ट्रैक। आज 23 जून है, आनंद के साथ हैं, साथ में प्राची है और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। यस, आज हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हैं कानपुर से, जो अपने आप में एक बहुत ही बेमिसाल और कमाल की आर्टिस्ट हैं। रेडियो जॉकी भी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करती हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। प्राची, उनकी आवाज कितनी मजेदार लग रही है ना, तुझे जेन्युइनली बता।
1: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे पूनम जी की आवाज बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे सच में पूनम जी की वाइब्स हमसे इतना मैच कर रही हैं कि हम जो हमारा शो है और जो हमारा जो एंजॉय जब भी हम शो करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, अच्छा फील करते हैं, पर आज पूनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो हमारा जो ये एंजॉयमेंट का जो लेवल है वो और भी हाई हो गया है। सो थैंक यू सो मच आरजी पूनम जी कि आपने आके हमारे शो को और भी मजेदार बना दिया है और हमारी लिसनर्स को भी 100% बहुत बहुत मजा आ रहा होगा।
0: बिल्कुल पूनम, तो अब आप बताइए पूनम, इतनी सारी तारीफ लेके आप कहाँ जाएंगी, कानपुर जाएंगी या सीधा लखनऊ या मुरादाबाद आना चाहोगी?
2: मैं आसमान में उड़ूंगी।
0: नहीं, आसमान में मत उड़िए। हाँ हाँ हाँ बोलो।
2: इतनी सारी तारीफ जब हमें मिलती है ना, तो मैं ऊपर आसमान में उड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है।
1: पर पूनम जी, सच में ये तारीफ नहीं है, ये कोई ऐसी कोई बटरिंग नहीं है, ये हमारे दिल के सच्चे अल्फाज हैं आपके लिए।
2: जी जी जी, थैंक यू।
1: इन्हें आप संभाल के रखिएगा प्लीज।
2: थैंक यू
1: सो मच।
0: बहुत बढ़िया, आप ऊपर उड़ोगी तो हम आपको खींच लेंगे उड़ते बादल से। पूछो कहाँ गई है पूनम।
2: अच्छा, तो आप पता पूछ लेंगे उड़ते बादल से।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पूनम जी, मुरादाबाद की तमाम जनता इस वक्त गाड़ियों में आपको सुन रही है, तो आपके मन में नहीं ख्याल आता कि कभी मुरादाबाद जाना चाहिए, मुरादाबाद की जनता से मिलने? क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल पूनम जी, मुरादाबाद की जनता और मुरादाबाद की आरजीज आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेताब है। आप कब आएंगी?
2: हाँ, तो मैं मुरादाबाद बहुत जल्द आऊंगी। सब जो जितने भी हमें होता सुन रहे हैं ना, सभी को एक सरप्राइज मिलेगा जब मैं आऊंगी मुरादाबाद में। और सबसे पहले तो मैं आनंद जी आपसे मिलने आऊंगी, प्राची जी से। क्योंकि आपकी आवाज और आपका जो अंदाज है ना, मुरादाबाद को सच में हिला के रख देता है।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच। और आप भी और आपके ठगू के लड्डू भी जो है हमें हिलाने को तैयार बैठे हैं।
1: प्लीज आप ठगू के लड्डू लेकर आइएगा, क्योंकि ठगू के लड्डू हम देखना चाहते कि ये कैसे हमें ठगा हुआ फील
2: क्या है इसके पीछे, क्योंकि कितने जो है ना
1: कैसा टेस्ट आता है,
2: बहुत मन हो रहा है खाने का।
0: नाइस नाइस। लेकिन ये तो कानपुर में हर जगह पर मिलते हैं, कुछ ही जगहों पर फेमस है?
2: जी हाँ बिल्कुल, हर जगह पर हम ठगू के लड्डू खा सकते हैं, कानपुर भर में ही खा सकते हैं बस।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, उसके अलावा और लखनऊ वगैरह में नहीं मिलेंगे ना?
2: नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे ठगू के लड्डू, बस एक ही दुकान है कानपुर में, वहाँ पे जाके खा सकते हैं।
0: ओके ओके ओके, मतलब काफी स्पेशल वाली कह सकते हैं वाइब है ना लड्डू की, और कहीं मिल ही नहीं पाएंगे वो।
2: जी जी जी, और कहीं वो लड्डू मिल ही नहीं सकते हैं।
0: ओके, तो पूनम जी, लड्डू मिले ना मिले, आपकी शायरी तो मिल रही है मेरे मुरादाबादीज को, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, कुछ हो जाए प्यारी सी शेर शायरी।
2: हाँ बिल्कुल, तो बड़ी देर से इंतजार हो रहा है और मेरी शायरी का, चलिए मैं सुना देती हूँ एक बहुत प्यारी सी शायरी है। भूल गया हमको ये जहाँ, मगर इस जहाँ को ना हम भूल पाए। भूल गया इस जहाँ, भूल गया हमको ये जहाँ, मगर हम इस जहाँ को ना भूल पाए। समझ गए हम इस प्यार को, मगर लोग हमें ना समझ पाए।
0: क्या बात है पूनम जी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, रुमाल कर दिया, बहुत बढ़िया।
2: जी जी, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लग रहा है आप सभी से बातें हो रही हैं और इतनी अच्छी सी सरो सारी और इतनी प्यारी सी चटपटी सी बातें सुनने को मिल रही है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा।
1: तो सच में पूनम जी, आपने अपनी शायरियों के साथ हमारी शाम को अभी शानदार बना दिया है। जितने भी हमारे लिसनर्स घर वापस जा रहे हैं, तो वो हमारी इस चैट, मतलब हम लोग जो ये चैट चैट कर रहे हैं उसे सुनकर सच में उनका भी वो होता है ना, लाइक ऑफिस से हम बहुत स्ट्रेस से आते हैं, पर हम पक्का हमारी जो बातें है ना, हम उन्होंने हमारे लिसनर्स को बहुत स्ट्रेस फ्री और बहुत रिलैक्स कर दिया होगा। उन्हें लग रहा होगा कि इनकी बकबक में ना वो अपने सारे स्ट्रेस भूल गए होंगे।
2: बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है प्राची जी।
0: और मुझे लगता है कि अब प्राची से भी एक शेरो शायरी होनी चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि प्राची भी कुछ हमारे लिसनर्स को अच्छी सी शेरो शायरी सुनाए।
1: तो ये शायरी है हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हमसे डेली जुड़े रहते हैं।
0: जरा सुना दो।
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है,
0: वाह
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है।
0: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। शान के आगे तो मेरी आरजे आनंद के नाम से पहचान है। वाह वाह।
1: अरे वाह।
0: नहीं नहीं, तू पूरी शायरी कर दे यार, मैं बीच में।
2: आरजे आनंद जी आपने।
0: अरे नहीं यार, पहले उनकी शायरी सुनने देते हैं।
2: किसान से तो आरजे आनंद जी की पहचान है।
1: अरे वाह। वैसे आरजे आनंद जी जो है ना, ये मतलब ऑन द स्पॉट एकदम बढ़िया राइम बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। चलिए फिलहाल
0: बैक टू शायरी ना।
1: चलिए फिलहाल हम अपनी शायरी पे वापस आते हैं
0: जी।
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है। यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, आपसे ही तो हमारी शो की जान है, आपसे ही तो हमारी शो की जान है।
0: तो आज शो की जान तो पूनम है ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, आप पूनम जी आप हमारी शो की जान है।
2: नहीं, हमारे श्रोता शो की जान है बिल्कुल, हमारे जो लिसनर है जो दिल के करीब है और हमेशा साथ निभाते हैं एफएम मुरादाबाद का, सभी हमारे श्रोता इस शो की जान है।
1: वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरजी
0: पूनम जी,
1: पर
0: आप
1: जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो हमारा शो और
0: पहले प्राची की बात पूरी हो जाए फिर मैं पूछूंगा क्या कह रहे हो, स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं।
1: पर जब आरजी पूनम जी जैसे स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं तो हमारे शो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ना।
0: एब्सोल्युटली गॉट इट। नहीं मैं पूछना चाह रहा था कि पूनम जी इतनी अच्छी आवाज लेके घूम रही है, खाती क्या है, पूछेंगे इनसे कौन सी चाय का ये कमाल है या कौन सी रोटी ये खाती है, पूछेंगे जरूर।
2: मैं बता दूं, मुझे दाल चावल जो देसी खाना है ना, दाल चावल वही मैं खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है।
0: हम भी जो है पूनम जी देसी खाना खाते हैं, हम चाइनीज बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम भी इंडियन खाते हैं। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल, पर आपकी बात तो मैं ऐसा क्या है,
2: आपकी बात तो मैं ऐसा क्या है बिल्कुल, प्राची जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बताइए।
0: आपकी बातों में, मेरी बातों में ऐसा कुछ होना हो, लेकिन आपकी बातों में है दाल चावल का स्वाद और मेरी बातों में है लाल मिर्च का स्वाद।
2: ये तो आनंद जी ने बात को टाल दिया प्राची जी ने।
1: हाँ, पर उसमें तो आनंद जी एक्सपर्ट है
0: बिल्कुल। देखो यार ऐसा है, एक्सपर्ट की जो है बहुत टांग खिंचाई हो रही, तो हम गाना सुन लेते हैं पहले है ना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तो प्यारा सा गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम कौन से स्टेशन सुन रहे हैं?
1: हम सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद
0: 89.6 रेडियो, बजाते रहो गुनगुनाते रहो। बहुत ही बढ़िया, चलिए मिलते हैं गाने के बाद।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे, आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
5: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
4: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
5: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
6: हेलो जी, हाय, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद।

0: तो हमारे साथ कौन है आज हमारे शो में, वही आपका वेलकम करेंगी। जी मैम
1: जी, वेलकम है आप सभी लिसनर्स का। आप सब सुन रहे हैं FM मुरादाबाद, आरजे प्राची और आरजे आनंद के साथ।
0: और अपना भी तो बता दो नाम।
1: मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम सिंह, कानपुर से।

0: दो चम्मच वो प्राची को खानी है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो प्राची जी इसीलिए तो बुला नहीं रही किसी को, हमको भी नहीं बुला रही ना आपको बुला रही है, अकेले अकेले खिचड़ी खा रही है, क्या बात
2: नहीं
1: हुई।
2: नहीं मैं तो नहीं खा रही हूँ खिचड़ी अभी फिलहाल। हमारे स्टूडियो में खिचड़ी है पर वो अभी हम ज्यादा नहीं है तो
1: अच्छा, आप खा नहीं रही, आप खिचड़ी पका रही है प्राची जी, है ना।
0: हाँ ये है मेन बात, सच तो यही है। तो वैसे तुम
2: तो
0: क्या
2: आप
0: अच्छा
1: ये
0: पकाती
1: बताओ,
0: हो?
1: खिचड़ी पकाई जा रही है।
2: तो अभी तो हाँ मैं खिचड़ी अच्छा पकाती हूँ, देखो अभी हम लोग कितनी अच्छी खिचड़ी पका रहे हैं।
1: अब 3 लोग
2: तो आपने
1: खिचड़ी
2: घर
1: मेरे
2: की
1: घर
2: देखी जो
1: पका
2: अब
1: रहे हैं
2: खिचड़ी
1: तो
2: अभी
1: बहुत
2: हम
1: अच्छी
2: अभी अभी
1: खिचड़ी बन
2: पका
1: रही
2: रहे
1: है।
2: हैं।
0: देखो तुम लोग मिलके खिचड़ी पकाओ, मैं सुबह ब्रेकफास्ट में देसी घी डाल के खाऊंगा।
2: नहीं हम लोग तो शायद खिचड़ी पका देते हैं पर आप उस पर देसी घी मसा
1: और
2: से उसको
1: एक
2: बढ़िया
1: और
2: बना
1: दही
2: देते
1: बड़ों
2: हैं।
1: के साथ अगर खाएंगे ना, दही बड़े जब होंगे खिचड़ी के साथ, वाह फिर तो क्या टेस्ट आएगा।
0: यार क्या कर रही है तुम, मतलब कौन से एक्चुअल फर्स्ट ना फ्रॉम ला एक्चुअल फर्स्ट बना ना, कौन सी डिश थी ये, नहीं कौन सी है? हाँ खिचड़ी विद दही बड़ा, ओ भाई मुझे मारो। ये कनपुरिया ये कानपुर वाले कब से खाने लगे, कृष्ण वर्षाम लवश्यमी।
1: जी आप खा के देखिए,
2: प्राची अच्छा दही
1: बहुत
2: बड़ी के
1: मजा
2: साथ
1: आएगा
2: खिचड़ी, अरे
1: जी,
2: वाह हम जरूर ट्राई करेंगे पूनम जी।
1: बिल्कुल ट्राई कीजिएगा आनंद जी, ये बहुत अच्छी डिश मैंने बताई है, देसी
0: और
1: घी
0: हमारे
1: है
0: लिसनर अगर ट्राई करेंगे तो वो बहुत जूते मारेंगे, ध्यान रखना
2: ना।
0: ठीक है।
2: और ठीक है पूनम जी,
1: नहीं
2: आज आपने
1: नेक्स्ट
2: हमें
1: हमारे जो ट्राई करेंगे ना वो भी तारीफ करेंगे, आनंद जी ने क्या खिचड़ी पकाई है आज।
2: अच्छा पूनम जी आपने आज हमें इतनी अच्छी ये मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हमें डिश बताई है, तो कुछ और भी ऐसी हमें डिशेस बताइए जो हाँ आपको लगता है कि हम लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि हम मुरादाबादी भी तो जाने कि मतलब कानपुर के जो लोग होते हैं उनका टेस्ट और कैसा होता है।
1: कानपुर का टेस्ट और मुरादाबाद का टेस्ट एक जैसा ही होता है, क्योंकि हम और आनंद जब खिचड़ी पकाते थे ना तो
0: हाँ
1: टेस्ट बहुत अच्छा लगता था खाने में,
0: सही बात
1: है
0: है।
1: ना।
0: हाँ
2: हाँ कुछ और बताइए इंटरेस्टिंग सा, जैसे आपने अभी बताया ना खिचड़ी के साथ दही बड़े, कुछ और इंटरेस्टिंग सा है और
0: तू बता दे यार उसको मुरादाबाद के बारे में।
1: मुरादाबाद में और क्या खाया जाता है, सही ये बताइए,
0: हाँ
1: फिर हम
0: मुरादाबाद
1: कानपुर
0: से
1: वाले
0: वो
1: को
0: बिलोंग नहीं
1: बताएंगे।
0: करती है, तो यहाँ की क्या चीजें फेमस है बताओ कानपुर की स्पेशल।
2: मैं आपको बताऊं तो मुरादाबाद की मुझे अपने मुरादाबाद की मुझे दाल बहुत बहुत पसंद है, इवन मुझे ना जो दाल है वो मुझे ऑल
0: कौन
2: टाइम
0: सी वाली
2: फेवरेट
0: दाल,
2: है।
0: खिचड़ी में जो डालते हैं
2: नहीं, मुरादाबादी मूंग दाल
0: मूंग दाल, ओके ओके वो
2: वो
0: शादी में
2: मुझे
0: खा।
2: ऑल टाइम फेवरेट है, वो अल्टीमेट फूड है मेरे लिए।
1: क्या बात है,
0: तो पूनम आप जब
1: तो
0: भी कभी कानपुर से यहाँ मुरादाबाद की ओर रवाना हो तो हम आपको मुरादाबादी दाल सर्व करेंगे वेलकम पे, है ना।
2: हाँ अरे बाबा, फिर ये
0: और
2: तो
0: क्या फेमस है पूनम को ये भी बताओ यार।
2: और वैसे तो यहाँ बहुत कुछ सारी चीजें अच्छी मिलती है।
0: लेकिन मैं आपको बताऊं पूनम जी यहाँ पे बिरयानी भी बहुत फेमस है।
1: हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, चिकन बिरयानी मुरादाबाद की बहुत ज्यादा फेमस है, वहां के
0: यार
1: बारे में
0: हम
1: मुझे
0: लोग तो
1: थोड़ी सी
0: वेज
1: पता
0: हैं तो हम लोग को वेज
1: है।
0: बिरयानी का पता है यार।
1: लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं वो जो कि नॉन वेज खाते होंगे, उनके लिए मैं बता रही हूँ
0: हाँ
1: कि चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है वहां
0: हाँ
1: की, और जाके श्रोता खा भी सकते हैं। वैसे
0: बिल्कुल
1: हम लोग तो नहीं खाते हैं, हम लोग तो वेजिटेरियन है, तो हम लोग को
0: हाँ
1: क्या मालूम कितनी
0: हाँ हाँ
1: टेस्टी है कितनी नहीं है ना।
0: बिल्कुल
1: लेकिन हम सब तो बस वेज बिरयानी ही खा सकते हैं, और वेज खिचड़ी जो कि हम लोग पका रहे हैं वो खा सकते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सच में पूनम जी आपको मुरादाबाद के बारे में, मुरादाबाद की पीतल बहुत फेमस है पता है यहाँ की।
2: हाँ, हमारी
1: यहाँ पर जो
2: सिटी
1: पीतल का कारोबार होता है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पीतल के नाम से ही मुरादाबाद फेमस है।
0: राइट राइट राइट, तो मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है यहाँ शो पे बोलने से पहले ना, तभी इतना
1: बिल्कुल,
0: अच्छा।
1: मुझे मुरादाबाद के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि हमारे
0: मुरादाबाद में एक चीज
1: रीजनल
0: और बहुत फेमस है यहाँ पर जो है ना, खाने पीने की डिशेस तो है ही फेमस, लेकिन यहाँ के पार्क, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है पूनम, यू नो क्यों प्राची। बाकी तो
2: हाँ
0: मुझे भी यहाँ का इतना आइडिया नहीं है बिकॉज पूनम मैं बताऊँ तो प्राची यहाँ से है तो ज्यादा जानती होगी
1: हाँ
0: लोकल के
1: जी
0: बारे
1: बिल्कुल,
0: में।
1: तो मुरादाबाद से प्राची जी थोड़ा और बताएं कुछ मुरादाबाद के बारे में
0: एक
1: कि
0: यहाँ
1: और
0: पे
1: हमारा
0: कैसा
1: ये।
0: पार्क बना है जिसके अंदर 7 अजूबे हैं बता ना यार।
2: हाँ, यहाँ एक ऐसा पार्क बोला है जहाँ 7 अजूबे है, 7 नहीं मतलब जितने भी जो भी अच्छे
0: 7 वंडर
2: मॉन्यूमेंट,
0: पार्क है
2: हाँ जितने भी मतलब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो सारे यहाँ है, और वो वेस्ट से बने हैं, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो इधर बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं मुरादाबाद में, तो उसका जो भी
1: तो
2: वेस्ट आता है उससे इतना वो पार्क बना है, और मैंने और आनंद ने उसे विजिट भी किया था, तो वो बहुत ही खूबसूरत है।
0: और
2: और
0: हमने वीडियो भी बनाया था गाइस, वो भी बहुत खूबसूरत।

0: जलाई कर देना आप,
1: हाँ,
0: है ना।
1: और उसको मतलब, और जब रात में जब वो जो व्यू आता है ना, जो रात में जो व्यू बनता है वो बहुत ही खूबसूरत है। और रात में अगर हम जाएंगे तो हमें लगता है अगर हमने वेस्ट ऑफ वंडर अगर हमने विजिट कर लिया तो हमने हमारी कंट्री के जितने भी स्पेशल मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनका हिस्टोरिकल अपना इम्पोर्टेंस है, वो सब हमने विजिट कर लिए। तो वो जो पार्क है वो मुझे
0: बिल्कुल,
1: बहुत पसंद है, स्पेशली उन लोगों को जो लोग हिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए तो वो बहुत खास है। तो जब भी आप आए पूनम जी, तो वेस्ट ऑफ वंडर जरूर विजिट करिएगा।
2: बिल्कुल। चलिए, अभी तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है अपने शहर के बारे में, मुरादाबाद के बारे में, और स्पेशनर को पता भी हो गया और उस मुरादाबाद जाने लायक, और जाएंगे तो क्या क्या वहां देखने लायक है, जरूर से सभी लिसनर जाएंगे देखने के लिए, घूमने के लिए, है
1: जी
2: ना
1: बिल्कुल पूनम जी।
2: जी।
0: चलिए, तो
2: तो हाँ
0: बातचीत तो चलती रहेगी पूनम से, और हमें इजाजत भी लेनी है। हमारे श्रोताओं को ज्यादा
2: जी,
0: और बोर नहीं करेंगे, ज्ञान दे देंगे।
2: ज्यादा खिचड़ी नहीं
0: गाना,
2: पकाएंगे क्योंकि ज्यादा
0: हाँ,
2: पक
0: एक
2: जाएगी
0: गाना
2: तो फिर
0: लेते
2: खाएंगे
0: हैं,
2: बहुत।
1: जल भी तो सकती है
0: म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आते हैं लौट कर पूनम के साथ सुनेंगे और शायरी शायरी। चलो अभी लाइन पे रहिएगा आप लोग गाइज।

0: हूँ जीरा, और थोड़ी सी मैं जीरानी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा हींग डालती हूँ, और अच्छी सी फ्रेश की हुई दाल जो रहती है उड़द की, वो मैं डालती हूँ, और इसमें मूंगफली के दाने रहते हैं वो मैं डालती हूँ, और थोड़ा सा कटा हुआ पनीर है वो भी डालती हूँ, और साथ साथ थोड़ी सी पालक जो होती है वो भी मैं थोड़ी सी डालती हूँ। इसके बाद जब बढ़िया से वो पकने लगता है तो जो चावल रखे होते हैं थोड़े से वो मैं डाल देती हूँ उसमें। इसके बाद पक जाता है बढ़िया से तो उसमें नमक और थोड़ा सा घी उसको डालने के बाद फिर मैं देसी घी से 1 चम्मच देसी घी से थोड़ा सा हींग डाल के मैं उस खिचड़ी को फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करने के बाद फिर उस खिचड़ी को घी डाल के बाद में खाया जाता है तो बहुत टेस्टी लगती है, मजा आ जाता है खाने में।
1: अरे वाह, थैंक यू सो मच पूनम जी कि आपने भी एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बताई। आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत पसंद आई होगी।
2: डेफिनेटली। और अब हमारे जाने का समय हो रहा है, तो पूनम जी थैंक यू सो मच, रेसिपी बताई, शेरो शायरी सुनाई। जाते जाते क्या कहोगी मुरादाबाद के लिसनर को, कौन सी शेरो शायरी सुनाओगी?
0: चलते चलते बस मैं सभी लिसनर से एक शायरी बोलूंगी। वहां पर बस आपका नाम है, जो वहां
2: वाह
0: पर बस आपका नाम है, कितनी सुहानी ये शाम है। दूर से भेजा है इन हवाओं ने पैगाम, दूर से भेजा है इन हवाओं ने पैगाम, बना रहे आप सभी लिसनरों का साथ, यही है दिल से हमारा सलाम।
1: थैंक
2: वेरी
1: सो
2: नाइस
1: मच
2: वेरी
1: पूनम जी,
2: नाइस वेरी
1: आपने कितनी सुंदर शायरी हमें सुनाई है।
2: नाइस।
1: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही पूनम जी।
2: जाते
0: जी बहुत बहुत
2: जाते
0: शुक्रिया।
2: जाते जाते कोई संदेश जो मुरादाबाद को देना चाहती हो अपनी आवाज में?
0: फिर मैं मुरादाबाद के हमारे जितने लिसनर सुन रहे हैं सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आसपास सफाई बना कर रखे हैं, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, अपना पर्यावरण बचाना है तो आसपास हमें सफाई करनी है, पेड़ लगाने हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो हमें तरोताजा हवा ऑक्सीजन पेड़ देते हैं उन पेड़ों को कटने से बचाना है, और अपना ध्यान रखना है, साथ साथ जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनको दाना पानी भी खिलाते रहना है, और सभी का ध्यान रखना है, और सुनते रहना है, सुनाते रहना है, और सुनते रहना है FM मुरादाबाद, सुनते रहो और सुनाते रहो सभी के साथ।
1: थैंक यू सो मच पूनम जी।
2: थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, एंड जल्दी मिलेंगे आपको फिर इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे
1: नेशन
2: एक
1: पे
2: नए शो में, है ना?
0: बिल्कुल, बहुत जल्दी मुलाकात होगी, श्रोताओं आप सभी से, और इसी के साथ मैं अब चलती हूँ, मुझे आप सब दे जाने की इजाजत, कुछ कब मिलेंगे आनंद जी ये तो आनंद जी ही बताएंगे।
2: प्राची आप बताओ जाते जाते क्या कहोगी लिसनर्स को?
1: पूनम जी हम आपको बस हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आपसे फिर से एक प्यारी सी मुलाकात हो, और हमारे लिसनर से हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज अपना पर्यावरण को बचाने की, अपने एनवायरनमेंट को बचाने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमें ट्रीज सेव द ट्रीज, हमें ट्रीज बचाने हैं, हमें पेड़ों को बचाना है, स्पेशली जो बड़े पेड़ हैं हमें उन्हें बचाना है, हमें उन्हें नहीं कटने देना है, क्योंकि अगर वो कट गए तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे फॉरेस्ट जो है, बहुत जंगल जो है वो कट रहे हैं, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, तो प्लीज आपके आस पास आप मेक श्योर करिए दोस्तों, ध्यान रखिए कि जो बिग ट्रीज है, बड़े पेड़ है, वो बिल्कुल भी नहीं कटे, क्योंकि ये हमारा दायित्व है, क्योंकि हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा अगर बड़े वृक्षों को काटा गया, क्योंकि सबसे पहले किसी का जीवन जो है संकट में नहीं आता, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका जीवन सबसे पहले खतरे में आता है। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करती हूँ कि पेड़ बचाइए, और खासकर बड़े पेड़ों को कटने से बचाइए।
2: थैंक यू सो मच पूनम एंड प्राची, लवली टॉकिंग टू यू। अभी हम लोग लेते हैं जाने की इजाजत, एक अच्छा गाना छोड़ के जा रहे हैं गाइस आपके लिए। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहिए,
2: गुनगुनाते रहिए। बाय बाय बाय
1: बाय
2: पूनम,
1: बाय बाय पूनम जी,
0: बाय बाय,
2: टेक केयर, बाय बाय।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

to Birmingham, New Delhi City, shout out, baby. My heart.

सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मुफ्त किफायती रेट्स पर स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ,
2: आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
0: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
1: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।